मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 46 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

सुबह की सुंदर भोर एक ऐसा मधुर पल जब संपूर्ण प्रकृति शांत और सौम्य रूप में दिखाई देती है। हल्की ठंडी हवा, आसमान में फैली गुलाबी रोशनी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सम्मिलकर मन को शांति और सुकून से भर देते हैं। नमस्ते, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, अब समय हो रहा है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना।

0: है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। समय है हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनिए जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की ये जानकारी।
1: शुभ प्रभात। ऐसा पाया गया है या देखने में बहुतायत से आता है कि सामान्य रूप से हम किसानों के खेत पर नहरों द्वारा सिंचाई की दक्षता 35-40%, जिसे दक्षतापूर्ण जल प्रबंधन अपनाकर 60-70% तक बढ़ाया जा सकता है तथा भूजल की उपयोग दक्षता लगभग 60% है, जिसे बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है। इसके लिए कई उपाय करने होंगे अगर इस तरह से हम इसकी जो संभावना है उसको साकार रूप देना चाहते हैं। तो पहली बात तो यह कि भूमि की सतह समतल न होने से खेत में समान रूप से सिंचाई नहीं की जा सकती है। आजकल उपलब्ध लेजर प्रणाली से खेत को पूर्णतया समतल किया जा सकता है, जिसके कई लाभ होते हैं। इसलिए इस समतलीकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिक समतल सतह हो जाती है, इससे सिंचाई में लगने वाले पानी और समय में भी बचत होती है। खेत में पानी का समान वितरण होगा, इसलिए सिंचाई जल की भी बचत हो सकती है। फसलों में समान नमी की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है, साथ ही साथ फसलों का समान अंकुरण एवं अच्छी वृद्धि भी होती है, क्योंकि वायु संचार भी उसी अनुपात में बेहतर हो पाता है। खेत में आने जाने की सुगमता भी रहती है। तो ये कई फायदे हैं भूमि के समतलीकरण करने से। और सिंचाई का प्रबंधन अगर हम देखें तो इसमें फसल की क्रांतिक अवस्थाओं, जैसे कि फसल में वृद्धि एवं विकास के लिए पानी की जो अधिकतम आवश्यकता है, उस संदर्भ में अगर हम इसे ध्यान में रखते हुए सिंचाई की सारणी या जो एक शेड्यूल होता है, कार्यक्रम बनाना जिसे कहते हैं, वह अगर बना लेते हैं तो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो पारंपरिक क्षमता है उसमें भी सुधार की तमाम संभावनाएं हैं। इसलिए पानी के स्रोत से फसल तक पहुंचने में रिसने या फिर चूने से पानी की जो क्षति होती है, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाकर न्यूनतम किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे 3-4

0: प्रतिशत जमीन की बचत भी होगी जो खेती के काम आ सकती है। उन्नत सिंचाई का ढंग भी आवश्यक है, इसलिए नालियां और बेड बनाकर बेड पर बुआई करना और उनके मध्य बनी नालियों में पानी देना, जैसे गेहूं में या दूर बोई जाने वाली फसलों जैसे मक्का, गन्ना, आलू और सब्जियों में मेड़ों पर बुआई व नालियों में पानी का प्रयोग करने से 30-40% तक पानी की बचत हो जाती है। चाहे वह खरीफ के लिए हो, जायद के लिए हो, रवी के लिए हो, इन सब में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। खरीफ में ज्यादा पानी लगने की जब स्थिति बनती है तो इन्हीं नालियों के माध्यम से उसे बाहर भी निकाला जा सकता है, जो हमारी फसल के लिए लाभदायक स्थिति पैदा करता है। सूक्ष्म सिंचाई भी होती है, इसके लिए यह देखा जाता है कि प्रवाह विधि से सिंचाई करने पर पानी के अपव्यय के साथ फसल उत्पादकता प्रभावित होती है और जल भराव, लवणीकरण, भूमि की दशा में गिरावट, तमाम ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं जो नुकसानदेह होती हैं। सतही एवं भूजल के दक्ष प्रयोग के लिए स्प्रिंकलर या फिर बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, जिसे हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, इनकी जो जाल बिछाने की होती है पाइप के द्वारा, उसे भी कर लिया जाता है तो महत्वपूर्ण स्थिति बनती है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की बचत के साथ उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। विशेष रूप से बागवानी का क्षेत्र, जिसमें हम सब्जी उत्पादन भी शामिल करते हैं, उसको इसके तहत लिया जाता है। खेत में पानी रोकना भी जरूरी होता है। यदि खेत के चारों ओर 20 से 22 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बना दी जाए तो वर्षा का पानी खेत में रुकेगा, विशेषतः धान के खेत में। इससे धान की खेती में सिंचाई की आवश्यकता कम होगी और साथ ही साथ भूजल भी रिचार्ज होता रहेगा, जिससे नमी बनी रहेगी, भूजल का जो स्तर है वह भी मेंटेन रहेगा। मल्च का प्रयोग करने से जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है, जिससे कम वाष्पोत्सर्जन व कम खरपतवार उगते हैं और साथ ही साथ भूमि संरचना में सुधार होता है। नए विकसित यंत्र हैप्पी सीडर, जो मल्चिंग एवं बुआई दोनों ही कार्य एक साथ करता है, इसका प्रयोग सुविधाजनक ढंग से कर सकते हैं और इस तरह बेहतर से बेहतर स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं।
1: अभी आप जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर नगेन सिंह रघुवंशी द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 41.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। सुविचार हमें स्मरण कराते हैं कि परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे सुविचार से करें तो धीरे धीरे वही विचार हमारी आदत बन जाते हैं। तो आज के सुविचार में सुनिए गंगा दशहरा के बारे में। स्वर प्रेम नारायण मेहरोत्रा का है।
2: गंगा दशहरा। गंगा माता भारत भूमि की पवित्र नदी और जनमानस के कल्याण के उद्देश्य से हिमालय में गोमुख से निकलकर गंगोत्री, ऋषिकेश, हरिद्वार, सुखताल, कानपुर, बिठूर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, बलिया और कलकत्ता होते हुए गंगा सागर में समाहित हो जाती हैं और अपने मार्ग में लाखों श्रद्धालुओं को स्नान के लिए अपने तन और मन को पवित्र करने का अवसर प्रदान करती हैं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में माँ गंगा का भगीरथी के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गंगा के स्थान पर यथाशक्ति दान पूर्ण करते हैं। इस दिन के स्नान को स्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि के योग के साथ मनाया जाता है। पूजन की विधि। गंगा दशहरे के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में खड़े होकर ओम नमः शिवाय, नारायणाय, दशहराय, गंगाय नमः का 10 बार जाप कर नदी में डुबकी लगानी चाहिए। अगर आपके पास कोई नदी नहीं है तो घर में स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद हाथ में फूल लेकर ओम नमो भगवते यम ही श्री हिली हिली मिली मिली गंगे माँ पाव्या स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें और फिर फूल को पानी में

0: समर्पित कर दें। इसके साथ ही अपने पितरों, सभी संबंधियों और इष्ट मित्रों के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। स्नान पूजन की विधि। स्नान के समय 10 दीपों का दान करना न भूलें। वहीं नदी में 10 डुबकी लगाने से पितरों को मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। उसी दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसीलिए इसे महापूर्णकारी पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस दिन मोक्षदायिनी गंगा माता की पूजा होती है। गंगा दशहरे के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन दान में सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दोगुना फल प्राप्त होता है। गंगा दशहरे के दिन किसी भी नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए हुए कम से कम 10 पापों का नाश होता है। इन 10 पापों के हरण होने से ही इस तिथि का नाम गंगा दशहरा पड़ा है। गंगा दशहरा व्रत और पूजन की विधि। गंगा दशहरे का व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कुछ लोग इस व्रत को निर्जला भी करते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते वो वैसे ही व्रत करते हैं तो भी उसको उतना ही लाभ होता है। एकादशी की कथा सुनते हैं और अगले दिन और दान पुण्य करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, जल भरी सुराही, हाथ का पंखा आदि चीजें भक्त दान करते हैं।
1: आज के सुविचार में आप सुन रहे थे गंगा दशहरा के बारे में, स्वर प्रेम नारायण मल्होत्रा का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

मन जब श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से भर जाता है, तब वही मन एक पवित्र मंदिर बन जाता है। सच्ची आराधना बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि हृदय में बसे ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण में है।

कन्याओं का सम्मान करना वास्तव में देवी स्वरूप का सम्मान करना है। लता मंगेशकर जी की मधुर और श्रद्धामयी आवाज इस भजन में वात्सल्य, भक्ति और पवित्रता का अद्भुत भाव भर देती है।

जब मनुष्य अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथों में सौंप देता है, तब चिंता और भय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हम मनुष्य सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, इसीलिए अपने अहंकार, अपनी इच्छाएं, अपनी व्यथा, सब कुछ प्रभु को अर्पित कर देनी चाहिए।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 182।

श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को वन की मात्र एक झलक दिखाकर लौटा लाने में जैसा राजा दशरथ ने चाहा था सुमंत्र सफल नहीं हुए। शोक और संताप की मूर्ति सुमंत्र महाराज के सम्मुख उपस्थित होकर उस करुण दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम ने कहला भिजवाया है कि पिता के अनुग्रह से वन में उन्हें सभी प्रकार से सुख मिलेगा। पिता की आज्ञा का पालन कर वे सकुशल वापस लौट आएंगे। नगरवासियों के लिए उन्होंने विनयपूर्वक अनुरोध किया है कि वही लोग उनके परम हितैषी होंगे जो सब प्रकार से महाराज को सुखी और संतुष्ट रखेंगे। प्रिय अनुज भरत के लिए संदेश है कि राज्याभिषेक हो जाने के बाद भी वे नीति के मार्ग पर चलकर मन वचन और कर्म से प्रजा का पालन और माताओं का सम्मान करें।

अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारंगावकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारंगावकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को है। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मोल्लाः तृतीयस्थाने, अपरतः तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खानः चतुर्थस्थाने अवर्तताम्। पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदानकाले बृहत्स्तरे दुराचारस्य आरोपानन्तरं निर्वाचनायोगः फाल्टानगरे पुनः मतदानस्य आदेशं प्रदत्तवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके पुनः मतदानम् अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मूः अद्य राष्ट्रपतिभवने 26,000 प्रथमे नागरिकालङ्करणसमारोहे 660 पद्मपुरस्कारान् प्रदास्यति। अत्र उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः, अन्ये च सम्मान्यजनाः उपस्थिताः भविष्यन्ति। देशस्य मध्योत्तरपश्चिमीय दिग्विभागेषु अतितापकारणात् जनजीवनं पर्याकुलितम् अस्ति। अत्र क्षेत्रेषु प्रायः समाना एव स्थितिः आगामिभ्यः 6 दिवसेभ्यः प्रवर्तिष्यते इति भारतीयर्तुविभागेन सूचितम्। क्रीडावार्तासु आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं 30 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: मीडियम वी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। स्वस्थ शरीर में ही सपनों को पंख मिलते हैं और स्वस्थ मन से ही जीवन की राहें आसान बनती हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे ORS एक फायदे अनेक विषय पर नीना सोनकर की ये जानकारी।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है ऐसा कुछ जो देखने में जितना साधारण है उतना ही प्रभावशाली भी। हम बात कर रहे हैं ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की, एक ऐसा घोल जो शरीर को निर्जलीकरण से बचाकर जीवन रक्षक बन सकता है, विशेषकर गर्मियों और बरसात के मौसम में जब डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी और नमक की कमी एक आम समस्या बन जाती है। शरीर का लगभग 70% हिस्सा जल से बना होता है। जब हम पसीने, उल्टी या दस्त के कारण अधिक मात्रा में पानी और जरूरी लवण खो देते हैं तो शरीर की सामान्य क्रियाएं प्रभावित होने लगती हैं। ये स्थिति डिहाइड्रेशन कहलाती है। डिहाइड्रेशन सिर्फ प्यास लगने या होंठ सूखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये स्थिति गंभीर रूप लेकर बेहोशी, लो ब्लड प्रेशर, चक्कर और यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है। ऐसे समय पर ORS का सेवन करना न केवल आवश्यक होता है बल्कि ये एक जीवन रक्षक कदम भी बन सकता है। ORS में ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम, पोटेशियम जैसे लवण होते हैं जो शरीर में खोई हुई ऊर्जा और जल की कमी को बहुत तेजी से पूरा करते हैं। इसकी खूबी ये है कि ये आसानी से घर में भी बनाया जा सकता है और बाजार में भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होता है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित है और इसका उपयोग दुनिया भर में दस्त या डिहाइड्रेशन के मामलों में प्राथमिक उपचार के रूप में किया जाता है। गर्मियों के दिनों में जब सूरज सिर पर होता है, शरीर अधिक पसीना छोड़ता है और यदि आप अधिक समय तक धूप में रहते हैं, मेहनत करते हैं या छोटे बच्चे हैं जो लगातार खेल में लगे रहते हैं तो शरीर में पानी और लवण की मात्रा तेजी से कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में केवल पानी पीना काफी नहीं होता क्योंकि शरीर को सिर्फ तरल नहीं बल्कि नमक और ऊर्जा भी चाहिए होती है। यहाँ ORS सबसे अच्छा विकल्प बन जाता है क्योंकि ये न केवल पानी की कमी को पूरा करता है बल्कि शरीर की अंदरूनी प्रणाली को भी संतुलन में रखता है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ORS और भी जरूरी हो जाता है। छोटे बच्चों का शरीर बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो सकता है और उन्हें दस्त या उल्टी की स्थिति में तुरंत ORS देना जरूरी होता है। इसी तरह बुजुर्ग जिनका पाचन और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो चुकी होती है उनके लिए भी ये घोल जरूरी राहत का काम करता है। माताएं जो छोटे बच्चों को संभालती हैं, उन्हें ORS की महत्ता और इसका सही उपयोग जरूर आना चाहिए ताकि समय पर दिया गया एक

0: घोल किसी गंभीर बीमारी को टाल सके। आजकल बाजार में कई फ्लेवर्ड ORS पैकेट मिलते हैं जो पीने में बच्चों को पसंद भी आते हैं और शरीर को फायदा भी पहुंचाते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश पैकेट ना हो तो आप घर पर भी ORS बना सकते हैं। 1 लीटर उबले हुए ठंडे पानी में 6 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक मिलाएं और अच्छे से घोल लें। ये घोल पूरी तरह से सुरक्षित है और शरीर के लिए उतना ही प्रभावी भी। इस समय जब गर्मी का मौसम अपने चरम पर होता है और साथ ही बरसात के समय जल जनित रोगों की संभावना भी बढ़ जाती है, ORS को अपने घर के प्राथमिक उपचार बॉक्स में जरूर शामिल करें। जब भी किसी को कमजोरी, चक्कर, बार बार पसीना आना या दस्त और उल्टी जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत ORS देना चाहिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले ये पहला और बेहद असरदार कदम होता है। श्रोताओं, भारत जैसे देश में जहां गर्मी और दस्त जैसी बीमारियां आम हैं, ORS ने अनगिनत लोगों की जान बचाई है और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये बेहद सस्ता, सुलभ और सरल है। जागरूकता की कमी के कारण कई बार लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि ये वो समाधान है जो समय पर लिया जाए तो अस्पताल की जरूरत ही न पड़े। तो आइए इस गर्मी हम सब ORS को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बच्चों, बुजुर्गों, खेत में काम करने वाले लोगों, दफ्तर में दिन भर मेहनत करने वालों, सभी के लिए ये एक जरूरी साथी है। ये सिर्फ एक घोली नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप ORS एक फायदे अनेक विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दी। आज शाम 5 बजे नागरिक अलंकरण समारोह भाग एक का सीधा प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे विमल किशोर श्रीवास्तव से सुनिएगा काव्य पाठ। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाध फरमाइएगा आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश। सुनिएगा नगमगी प्रोग्राम। सदाकार हैं आसिफ इकबाल। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व फुटबॉल दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर नरेश मल्होत्रा का ख्याल गायन प्रसारित होगा। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10:30 पर विदुषी गिरिजा देवी का ख्याल गायन श्रोता सुनेंगे। दिन में 1:15 पर घर आंगन कार्यक्रम में रश्मि शील की कहानी बहने सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर विनोद कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता का विषय है जायद फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर सरोकार में सुनेगा ओबी पर आधारित कार्यक्रम पत्थरों में तब्दील होती धरती और हमारा सरोकार। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम का प्रसारण होगा। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर पशुओं में गला घोटू कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी से की गई भेंटवार्ता सुनेगा। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें विश्व थायराइड दिवस पर थायराइड ग्रंथि की समस्याएं विषय पर डॉक्टर सुभाष यादव से की गई भेंटवार्ता श्रोता सुनेंगे। भेंट करता है आशीष चतुर्वेदी। साथ ही चक्कर आने का कारण और कान की समस्याएं इस विषय पर डॉक्टर मनीष चंद बताएंगे। भेंट करता है आशीष चतुर्वेदी। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर शशि लेखा सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आप आनंद ले सकते हैं।

हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर कैलाश जोशी की गायी गजलें पेश की जाएंगी। पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत का आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात 9:30 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहे सुनना न भूलिएगा सुबह 11 से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विश्व फुटबॉल दिवस। प्रिय श्रोताओं, जब मैदान में हजारों दर्शकों की गूंजती आवाजें, खिलाड़ियों की तेज कदम, गेंद की रफ्तार और गोल होते ही उठता उत्साह एक साथ मिलते हैं, तब जन्म लेता है दुनिया का सबसे रोमांचक खेल फुटबॉल। आज विश्व फुटबॉल दिवस केवल एक खेल का उत्सव नहीं, बल्कि जुनून, अनुशासन, टीम भावना और संघर्ष की उस कहानी का प्रतीक है जिसने दुनिया के करोड़ों दिलों को एक धड़कन में बांध दिया। फुटबॉल एक ऐसी भाषा है जिसे बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मैदान में दौड़ते खिलाड़ी, पास होती गेंद और जीत के लिए बहता पसीना अपने आप सब कुछ कह देता है। यही कारण है कि फुटबॉल आज केवल यूरोप या लैटिन अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया के युवाओं के दिलों में अपनी खास जगह बना चुका है।

फुटबॉल का इतिहास भी बेहद रोचक रहा है। माना जाता है इसकी शुरुआत सदियों पहले विभिन्न देशों में अलग अलग रूपों में हुई, लेकिन आधुनिक फुटबॉल को संगठित स्वरूप देने का कार्य इंग्लैंड में हुआ। आज यह खेल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में गिना जाता है। हर चार वर्ष में आयोजित होने वाला फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध देता है। जब विश्व कप का रोमांच शुरू होता है तो सीमाएं, भाषाएं और संस्कृतियां सब पीछे छूट जाती हैं और केवल एक भावना शेष रहती है, अपने पसंदीदा देश और खिलाड़ियों को जीतते देखने की भावना। फुटबॉल केवल एक ताकत का खेल नहीं, यह बुद्धिमत्ता, धैर्य और तालमेल का अद्भुत संगम है। मैदान में खिलाड़ी केवल गेंद को नहीं दौड़ाते बल्कि अपने सपनों को भी गति देते हैं। एक छोटी सी गलती हार में बदल सकती है और एक सही पास पूरी टीम को जीत दिला सकता है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। फुटबॉल हमें सिखाता है कि जीवन में अकेले नहीं बल्कि टीम बनाकर आगे बढ़ना जरूरी है। जब खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी जीत संभव हो पाती है।

आज के युवाओं के लिए फुटबॉल की सार्थकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आधुनिक समय में जहां युवा मोबाइल, इंटरनेट और आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगे हैं, वहीं फुटबॉल उन्हें मैदान से जोड़ता है। यह खेल शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति भी बढ़ाता है। फुटबॉल खेलने वाला युवा अधिक सक्रिय, अनुशासित और आत्मविश्वासी बनता है। खेल के दौरान तेज निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में सहायक होती है।

फुटबॉल युवाओं को हार से सीखना भी सिखाता है। हर मैच में जीत संभव नहीं होती, लेकिन हार के बाद फिर उठ खड़े होना ही असली खिलाड़ी की असली पहचान है। यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश भी है। आज की प्रतिस्पर्धा भरी दुनिया में जहां छोटी असफलताएं कई युवाओं को निराश कर देती हैं, वहां फुटबॉल उन्हें संघर्ष करना और निरंतर आगे बढ़ना सिखाता है। दुनिया के महान खिलाड़ी की कहानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। लियोनेल मेसी ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपनी प्रतिभा को दुनिया से चौंका दिया। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अनुशासन और अथक मेहनत के बल पर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। इन खिलाड़ियों की सफलता बताती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता।

भारत में भी फुटबॉल धीरे धीरे युवाओं के बीच नई पहचान बना रहा है। इंडियन सुपर लीग और विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं ने इस खेल को नई ऊर्जा दी है। गांवों और छोटे शहरों के युवा अब फुटबॉल को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि करियर के रूप में भी देखने लगे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का बढ़ता उत्साह ये साबित करता है कि आने वाला समय भारतीय फुटबॉल के लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है।

0: विश्व फुटबॉल दिवस हमें याद दिलाता है कि खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को जोड़ने की शक्ति भी रखते हैं। फुटबॉल मैदान में जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक स्थिति का कोई महत्व नहीं, वहां केवल प्रतिभा, मेहनत और टीम भावना की पहचान होती है। यही संदेश आज दुनिया की सबसे अधिक आवश्यकता है, एकता और सहयोग का संदेश। आज विश्व फुटबॉल दिवस हमें इस अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में खेलों को महत्व देंगे, युवाओं को मैदान से जोड़ेंगे, उन्हें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की ओर प्रेरित करेंगे, क्योंकि खेल केवल शरीर को नहीं बल्कि व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाते हैं। आइए फुटबॉल की इस ऊर्जा, अनुशासन और उत्साह को अपने जीवन में उतारे और यह संदेश फैलाएं कि जो मैदान में संघर्ष करना सीख जाता है वह जीवन की हर चुनौती को जीतना भी सीख जाता है। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।
1: भारत की इस टीम को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि इसके 7 से 8 खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली बार खेल रहे हैं।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राजस्ववाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS और CM हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन मूवमेंट

0: और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान ये तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_ भी उपलब्ध है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। इस दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PSC, फ्लड PSC, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
3: जैसा कि पिछले दिनों में गर्मी का असर है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में भी गर्मी का असर बनेगा। उसके बाद जैसा कि

0: होने की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में, अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनी नरेश मल्होत्रा का राग गुणकली में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं डमरू हरकार बाजी। द्रुत 3 ताल में निबद्ध है, तबले पर संगत नंद किशोर मिश्रा ने की है।

अभी आप नरेश मल्होत्रा का राग गोड़कली में खयान गायन सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे नंद किशोर मिश्रा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।

0: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
0: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
4: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम

0: अवधि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद दो दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series, People's Padma, on Akashwani.
4: We launched our environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
5: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
6: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
2: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune into 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 a.m. onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said,

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं। इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ में दिए जाते हैं जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: पद्म अवार्ड्स अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोग रोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरु जी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
0: अपनी इन नशियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं।

0: ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड यूसीसी के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि यूसीसी से कोई कबाइली हकूक खत्म नहीं होंगे।
1: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर अजम ने कहा कि इस जीत से बीजेपी के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी कारकुनों की उनके गैर मामूली काम पर सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए सभी लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत में आज 2.61 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। यह इजाफा 2 हफ्ते में चौथी बार है, लिहाजा अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल की कीमत 95.20 रुपए फी लीटर होगी। इम्तिहानात मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने इस माह की 28 तारीख को होने वाले यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दाखिले के मुश्तरका इम्तिहान 2026 को मुलतवी कर दिया है। एनटीए ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। एजेंसी ने बताया कि अब इस इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। एनटीए ने उम्मीदवारों को ताज़ा जानकारी के लिए उसकी बाज़ाब्ता वेबसाइट देखने का मशवरा दिया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबात के पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपीज हासिल करने की आखिरी तारीख में 1 दिन की तौसीख कर दी है, जो कल तक थी। CBSE ने कहा कि यह फैसला इस मकसद से किया गया है कि तलबा को अपनी दरखास्तें दाखिल करने के लिए पूरा वक्त मिल सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल को की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतीज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालदेन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा कि IITs के माहिरीन की यह टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने, नीज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारदगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए करेगी। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल माली और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से बातचीत की। ये बातचीत CBSE के बाद के नतीज और जवाबात के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल के दौरान तलबा को दरपेश तकनीकी और अदायगी से मुतालिक मामलात के बारे में की गई है। वजारत तालीम ने बताया कि इस बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE को इसकी अदायगी के निज़ाम और इम्तहानात के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल को लाजमी तौर पर मरबूत किए जाने में मदद देंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से शदीद तौर पर लड़ना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में अमेरिका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाजह रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि

0: दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को खत्म करने और दुनिया को मजीद मौके फराहम करने में है। वजीर खारजा ने कहा कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं जिनसे दोनों मुल्कों को बहुत से मैदानों में मौसर दिफाई शराकत दार बनने के मौके मिलते हैं। अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो के दौरे का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से मौजूदा दौर में भारत अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों की पायदार शराकत दारी को मजीद फरोग देने का एक रास्ता कायम किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर को फोन किया। उन्होंने ये फोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमरीका की आजादी के 250 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहां तक कि उन्होंने खुद को वजीर आजम मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सर्गियो गोर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह राजधानी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के चार रोजा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और ये मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई मुआहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा मुआहदा तेहरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा और ये मुआहदा साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तरफ से किए गए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आजमीन हज सऊदी अरब में मक्का मौजमा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क्याम के बाद कल सुबह वकूफ़ अरफा के लिए मैदान अरफात जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज़ इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी

0: से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर कस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म होता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजिए और सुनिए अपने पसंद के गीत।

श्रोताओं, हमारे पास पहला मेल आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता कर्ण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई का। ये सुनना चाहते हैं शागिर्द फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और हमारे पास अगला मेल है दतरंगी से भागवत वर्मा शांति देवी लीलावती और विनीता वर्मा रुद्र वर्मा का। आप सभी सुनना चाहते हैं शागिर्द फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए सुनते हैं।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश जी, और जनपद हरदोई से विजयलक्ष्मी कुशवाहा, जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र चंसोलिया, आदर्श सार्थक आलोकिक चंसोलिया, आप सभी सुनना चाहते हैं नंगीना फिल्म का गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पोंडवाल की आवाजों में।

श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। हमारे पास अगला मेल आया है मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर और डॉक्टर अमनदीप का। कालका से शुभचंद्र बजाज, सहेल बजाज और बिट्टा बजाज का। और हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर राही, मेहराज जहां का। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगेजा, पूनम गंगेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। आप सभी सुनना चाहते हैं द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाज़ों में।

श्रोताओं, हमारे पास मेल आया है जगराओं से। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक का। और अगला मेल है हमारे पास बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जयपाल, जयहिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त परिवार। एक मेल है हमारे पास संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, जसवी यादव का। और जिला रायबरेली से रामराज, राजभानु, रामशंकर, पत्रकार भाई वाले, रक्षा मोर, मिराज दुर्जा बेग, तुराग बेग और पप्पू पासी, आप सभी सुनना चाहते हैं क्रांति फिल्म का गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में।

अब जो मेल हमारे पास है वो है लखीमपुर खीरी से विजय पाल यादव जी का। ये लिखते हैं, अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। बहुत खूबसूरत बात लिखी है विजय जी ने आप। और ये लिखते हैं, ये आकाशवाणी के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, ये यहाँ के नियमित श्रोता हैं बिल्कुल, और नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी रोज़ सुनते हैं और इन्हें यहाँ के सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। आज का विविधा कार्यक्रम भी इन्हें बहुत अच्छा लगा, तो ये सुनना चाहते हैं लव स्टोरी फिल्म का गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में। इसी के साथ एक मेल हमारे पास और है, पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा का, और राजकोट गुजरात से रश्मि झरना भरत कुमार,

अंबाला से रोव कुमार, रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह राहुल, आप सभी सुनना चाहते हैं ये गीत, तो आइए सुनते हैं।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 41 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए शासन ने बजट आवंटित किया है। इस धनराशि से प्रशासन ने जिले के तीनों रोडवेज बस स्टॉप पर दो दो कूलर लगवाए हैं। इसके साथ ही गुड़ और ORS की व्यवस्था भी की गई है। आम जनता की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट में भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहाँ भी लोगों को शीतल जल के साथ साथ गुड़ पेठा और गट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी दोस्त मोहन अग्नोत्री ने बताया कि लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
3: जनपद कन्नौज में रोडवेज बस स्टैंड कन्नौज, गुरसाहेगंज और छिबरामऊ तीन जगहों पर हम लोगों ने दो दो बड़े कूलर लगवाए हैं। साथ ही साथ इन जगहों पर गुड़, पानी और ORS के पैकेट भी रखे गए हैं। नगर निकाय की ओर से इसमें कर्मचारी भी लगाए गए हैं। 24 घंटे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जो नागरिक आते हैं वो बुला करके और हम लोग देख करके उनको स्वच्छ पेयजल भी देंगे, साथ ही साथ उनको ORS के पैकेट भी रहेंगे। इस समय चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, नागरिक सुरक्षित रहें, वो जागरूक रहें और उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए इस प्रकार की की जा रही है।
2: कन्नौज जिले में इंस्प्राय अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जनपद के 11 चयनित विद्यार्थियों में निहित वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को सराहा जा रहा है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को मॉडल और प्रोजेक्ट के रूप में साकार कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। जिला प्रशासन विद्यार्थियों के अभिनव मॉडल और प्रोजेक्ट को पेटेंट कराने, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। कन्नौज जिले में संसाधनों का सम्मान अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पर अंकुश लगेगा। अभियान के तहत लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पाने पर सूचना कमांड सेंटर 1077 पर दें। दिन में जलती हुई स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थानों पर बहता पानी, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिसरों में अनावश्यक रूप से जल रही लाइटें, जागरूक नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा ताकि समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना मजबूत हो सके। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि संसाधनों की बचत केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जन सहभागिता से ही जिले को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। कन्नौज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शिवरामऊ में 100 और उमरदा में 116 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब तकनीक से सशक्त होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाएं मात्र शिशु पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सेवाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचा सकेंगी। यह पहल सहायिकाओं के उत्साहवर्धन के साथ आंगनबाड़ी सेवाओं के डिजिटलीकरण और सुदृढ़ क्रियान्वयन की दिशा में एक सार्थक सिद्ध होगी। कन्नौज जिले में वेटलैंड के संरक्षण के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में इस्माइल पुल, रोंसा और निघो खास में एवं असेह में स्थित वेटलैंड को अधिसूचित किए जाने का काम शुरू हो चुका है। आर्द्रभूमि शक्तिशाली कार्बन सिंक है, जो किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद मिलती है। जनपद में 100 वेटलैंड चिन्हित किए गए हैं। इन वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने वेटलैंड के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। कन्नौज जिले की 499 ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू होगी। योजना को साकार करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वर्तमान में करीब 1,00,000 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें नई व्यवस्था के तहत रोजगार और आजीविका से जोड़ा जाएगा। नई योजना के तहत मनरेगा की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार स्थायी आजीविका और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। योजना के तहत श्रमिक परिवार की महिला सदस्य को जॉब कार्ड में शामिल कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद में 25,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी है। मजदूरी का भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT के

श्रोताओं, कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। हमारे पास मेल और भी हैं, आप इसी तरह अपने मेल भेजती रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। अब दीजिए मुझे यानी अंजलि श्रीवास्तव को इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: माध्यम से किया जाएगा, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। पुराने 100 दिनों के प्रावधान के बजाय अब हर ग्रामीण परिवार के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की जगह अब नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीकी विशेष सुविधा होगी। हर गांव में विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार होगा। ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर विकसित कार्य होंगे। कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 51 परिवारों को 1,97,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता को शासन ने स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त बजट के सापेक्ष पात्र दावेदारों को जल्द आर्थिक सहायता मिलेगी।
1: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
2: पीलीभीत जिले में इस समय भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है। इसके चलते स्कूल कॉलेजों में अवकाश कर दिया गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गर्मी से बचाव हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाए हैं और पानी की व्यवस्थाएं की हैं। जितने वाटर कूलर थे नगर पालिकाओं के टाउन एरिया के, वो हम लोगों ने सही कराए हैं और निर्देशित किया सभी ईओ को कि वो एक बार चेक करा लें जो वाटर कूलर शहर में लगे हुए हैं उनमें प्रॉपर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और खासतौर से बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्थाएं कराएं। और ग्राम प्रधानों से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो गाँव में भी देख लें कि कोई भी जानवर प्यासा न रह जाए, इसलिए जो भी तालाब है हमारे और सार्वजनिक स्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों उनकी भी व्यवस्था की गई है।
2: गर्मी का असर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। बाघ हिरण आदि जीव जंगल से बाहर खेतों व सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्य जीवों की प्यास बुझाने हेतु सभी ताल पोखरों को नहर व नालों के जरिए भरवाने की व्यवस्था की है। प्रभागीय वनाधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि जंगल के बीच कई तालाबों को सौर ऊर्जा चालित पंपों से भी भरा जा रहा है। पीलीभीत में एक जनपद एक नदी योजना के तहत गोमती व खन्नौर नदियों का पुनरोद्धार कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक बाबूराम पासवान, स्वामी प्रवक्तानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इसने कार्य में योगदान दे रहे हैं। बाघ और बांसुरी के साथ पीलीभीत की पहचान बासमती उत्पादन के लिए भी है। जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से अब बासमती की महक और बढ़ने जा रही है। जिले में बासमती बीज उत्पादन शोध व निर्यात केंद्र की स्थापना करोड़ों की लागत से कराई जा रही है। इस केंद्र को 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित कराने के अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा,
4: ये जो बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शन का फार्म जो बनेगा, ये इस क्षेत्र के लिए मेरे लिए कहने की मुझे गर्व महसूस होता है कि ये पीलीभीत जनपद बांसुरी के लिए जाना जाता है। ये पीलीभीत जनपद यहाँ के प्राकृतिक धरोहर जंगल है, यहाँ के शेर है, उसके लिए जाना जाता है। मगर आने वाले समय में ये बासमती चावल का जो कटोरा है उसके लिए जाना जाएगा।
2: पीलीभीत जिले में डीजल पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने जिले की आपूर्ति व वितरण व्यवस्था को सामान्य व नियंत्रण में बताया है। उन्होंने लोगों से डीजल पेट्रोल व कुकिंग गैस की अनावश्यक खरीद व भंडारण से बचने को कहा है। पीलीभीत जिले में पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत भजन कीर्तन यज्ञ व भंडारों जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तकिया दीनारपुर स्थित महाकाली मठ व पीताम्बरा पीठ पर महंत बाबा सूरजगिरि जी द्वारा सचंडी महायज्ञ कराया गया। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर मंदिरों पर सुंदर हनुमान चालीसा व भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। पीलीभीत में इस समय साठा धान व गन्ने की फसल खेतों में हरियाली बिखेर रही है। गन्ने की उपज का सर्वे गन्ना विकास विभाग द्वारा शुरू करा दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशीराम भार्गव ने बताया,
5: वर्तमान में गन्ना सर्वे का काम चल रहा है। पूरे जनपद में 144 टीमें बनी हुई हैं और ये 144 टीमें जनपद की चीनी मिलें और जो जनपद से बाहर की चीनी मिले हैं उनका गन्ना सर्वे कर रही हैं। गन्ना सर्वे का काम गन्ना पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा और मझोला के द्वारा की जा रही है। सभी जो किसानों का सर्वे होना है वो 30 जून तक सर्वे होना है। 1 मई से सर्वे की शुरुआत हुई थी और 30 जून तक गन्ना सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाना है।
2: पीलीभीत जिले में जनगणना 2027 के तहत इस समय मकानों की गिनती का कार्य तेजी से चल रहा है। 7 से 21 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से सुगणना की गई और अब गणना कर्मी घर घर जाकर गणना कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कई जगह इसका निरीक्षण भी किया है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
7: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है

0: शान का। अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

0: 1.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे

शकील ने लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आपको उर्दू, हिंदी और अरबी फारसी का अच्छा इल्म था। दिल्ली में शुरू में सरकारी नौकरी करने के बाद आप मुंबई चले गए, जहां आपकी मुलाकात मौसीकीकार नौशाद से हुई और यहीं से शकील का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। शकील ने दर्द, बैजू बावरा, मदर इंडिया, गंगा जमुना, मुगल आज़म और मेरे महबूब जैसी फिल्मों के लिए तराने लिखे। 20 अप्रैल 1980 को आप इस दुनिया फ़ानी से विदा हो गए।

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद आकर रह गईं।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। ये अशार हैं उस फिराक गोरखपुरी के जिन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की।

आप उर्दू में लिखते रहे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे। सोचिए ऐसे शख्स की जहानत का आलम क्या होगा। आप आज़ादी की मुहिम से भी जुड़े रहे। फिराक गोरखपुरी की शायरी में गुले नगमा, मशाल, रूह कायनात, नगमाए साज, गज़लिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज व कायनात, चिरागां, हज़ार दास्तान, जुगनू, आधी रात, परछाइयां और तराना इश्क जैसी खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयों की तख्लीक फिराक साहब ने ही की है। उन्होंने कई कहानियां भी लिखीं। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर हुए। आपको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला।

इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नश्र किया जा रहा था।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज इसमें सुनी शशिलेखा सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। इनके स्वर में सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं ये पचरा।

0: अभी आप शशिलेखा सिंह के स्वर में ये मुंडन गीत सुन रहे थे। संगत कर रहे थे नाल पर अवध विवारी वर्मा, ढोलक पर थे शशांक शर्मा, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर थी अलका सिंह और साइड रिदम पर बालकृष्ण शर्मा। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग अब समाप्त हुआ।
1: हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, गंगा तेरा पानी अमृत फिल्म से। आवाज है मोहम्मद रफी और साथियों की।

फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों से ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करने को कहा। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव के बीच आज से 5 दिवसीय हज की शुरुआत और नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से ओस्लो में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और उन पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्गियो गोर को फोन पर बातचीत में ये बात कही। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तैयार है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
1: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो की यात्रा को उल्लेख करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यात्रा समसामयिक संदर्भ में अमेरिका और भारत के संबंधों का महत्व उजागर करती है।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी। ये समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए समझौते से पूरी तरह अलग होगा। श्री ट्रंप ने ओबामा काल के ईरान परमाणु समझौते की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते से ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोका जा सकेगा।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तुर्की की दंगा पुलिस ने

0: मुख्य विपक्षी दल के मुख्यालय में आंसू गैस के गोले दागे और जबरन अपदस्थ नेतृत्व को बाहर कर दिया। इससे तुर्की के लोकतंत्र के केंद्र में संकट गहरा गया है। एक रिपोर्ट।
1: रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP की इमारत के अंदर आंसू गैस के बादल छा गए और अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये विवाद तब शुरू हुआ जब तुर्की की एक अदालत ने चुनाव में गड़बड़ी का हवाला देते हुए CHP के मौजूदा नेता ओजगुर ओजेल को पद से हटा दिया और 2023 के उस चुनाव के नतीजों को भी रद्द कर दिया गया जिसके जरिए वे चुने गए थे। इसके बाद रविवार को अंकारा के गवर्नर ने मुख्यालय को खाली कराने का आदेश दिया। अदालत ने ओजेल की जगह पार्टी के पुराने अध्यक्ष कमाल किलिक दराग्लू को फिर से पद पर बहाल कर दिया जो 2023 के राष्ट्रपति चुनाव में तैयब अर्दोगान से हार गए थे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
0: अमेरिका में दक्षिण कैलिफोर्निया की एक एरोस्पेस फैक्ट्री में प्लास्टिक बनाने वाले खतरनाक रसायन का टैंक क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इस हादसे की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का आदेश जारी किया गया है। पिछले सप्ताह GKN एयरोस्पेस कंपनी में करीब 22 से 26,000 लीटर मिथाइल मेथिक्रिलेट केमिकल से भरा टैंक बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। इससे शहर की हवा में जहरीली गैस फैलने लगी थी। इस बेहद ज्वलनशील रसायन का इस्तेमाल प्लास्टिक और नकली दांत बनाने में होता है। इससे फेफड़ों, आंखों और त्वचा में जलन की समस्या हो सकती है। 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। स्पेन में कल मध्य मैड्रिड में हजारों लोगों ने आवास की तेजी से बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन बढ़ती कीमतों के कारण देश में हाल ही में हुई आर्थिक प्रगति के बावजूद कई नागरिक प्रॉपर्टी मार्केट से बाहर हो गए हैं। 2027 के आम चुनावों से पहले आवास संकट प्रधानमंत्री पेत्रो सांचेज के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभरा है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ते किराए को नियंत्रित करने और किफायती आवास तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए सरकार से और अधिक कड़े कदम उठाने की मांग की है। यूरोपीय संघ के सांख्यिकी कार्यालय यूरोस्टेट के अनुसार 2025 के अंत तक स्पेन में आवास की कीमतों में साल दर साल आधार पर लगभग 13% की वृद्धि हुई है। कांगो के पूर्वी हिस्से में चल रहे इबोला के प्रकोप में अब संदिग्ध मामलों की संख्या 900 से अधिक हो गई है। कांगो के संचार मंत्रालय ने कल सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 904 संदिग्ध मामले मिले हैं और 119 लोगों की मौत हुई है। इनमें अधिकतर मामले इटुरी प्रांत से हैं जहां ये प्रकोप सबसे ज्यादा फैला हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये प्रकोप अब कांगो के लिए अधिक जोखिमपूर्ण हो गया है लेकिन इस बीमारी के दुनिया भर में फैलने का जोखिम अभी भी कम है। बांग्लादेश में वर्ष 2022 से कार्यरत भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कल अपनी विदाई के अवसर पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात की। भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री रहमान ने दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए प्रणय वर्मा को धन्यवाद दिया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। श्री प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत दोनों देशों के लोगों के हित में बांग्लादेश के साथ काम करने को तैयार है। दोनों पक्षों ने भविष्य में सहयोग के लिए नए क्षेत्रों के बारे में भी चर्चा की। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रही है। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार यह प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंडमास्टर मौजूद हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिनिधियों से ईरान के साथ किसी भी समझौते में जल्दबाजी न करने को कहा। पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय तनाव के बीच आज से वार्षिक 5 दिवसीय हज की शुरुआत और नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का आज से ओस्लो में शुभारंभ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे

0: हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
1: डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
3: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
2: एक ऐसा कार्यक्रम
3: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
2: विकास की बातें, संगीत की मिठास
3: और एक नए भारत की आवाज़।
2: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
3: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत, हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का पहला गीत इशाद कामिल के इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है धुरंधर, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की।

आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह और अफसाना खान को। फिल्म का नाम है स्काई फोर्स। इस गीत को लिखा है शाद कामिनी, संगीत तनिष्क बागची का।

अभी आप सुन रहे थे जीनियस फिल्म का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, और अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में अब हम आपको सुनवाते हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म का ये गाना।

0: सत्यमेव जयते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं आतिफ असलम और तुलसी कुमार की। इस गीत के साथ ही आज का ये चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बज चुके हैं और शुरू हो गया है हमारे श्रोताओं का पसंदीदा फिल्म संगीत का फोन एंड इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8825 यानी 0522-22-38-825। और इसी नंबर पर हम स्वागत करते हैं आप सभी श्रोताओं की कॉल्स का। तो सबसे पहले मिलते हैं जयपुर राजस्थान से हमारे नियमित श्रोता पूरन वर्मा जी से।

0: हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। कैसे हैं आप?
1: बस मैडम बढ़िया हूँ, और कार्यक्रम में पहला ही कॉल लग गया तो और भी अच्छा हो गया।
0: बहुत बहुत बधाई आपको
1: मैडम।
0: चलिए,
1: तो कैसे हो मैडम आप?
0: बहुत बढ़िया है। तो कैसे गुजार रहे हैं गर्मी का मौसम?
1: बस मैडम गर्मी का आनंद ले रहे हैं और आपका कार्यक्रम का भी आनंद ले रहे हैं, दोनों का ही।
0: ये बड़ा अच्छा है ना, हमारा आकाशवाणी जो है इस मामले में बहुत बड़ा सहारा है कि गर्मियों में आप जैसे दिन में सुबह जो लोग खेतों में काम करते हैं या वो लोग अपना काम कर आए और बस उसके बाद 11 बजे से हमारा लगा लें। वैसे तो पहले के भी कार्यक्रम सुने, लेकिन ये कार्यक्रम भी आप जो है अपना मज़े से सुन सकते हैं गर्मी में, अपना घर के अंदर बैठ के, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका पूरा मनोरंजन आपके साथ में है ना?
1: जी मैडम, क्योंकि मैडम यह है कि अगर जिसका रेडियो पे लगाओ है ना, तो वो मैडम ये भी कार्यक्रम नहीं छोड़ सकता, वो चाहे अपना काम
0: तो
1: कैसे भी करेगा पर वो रेडियो अपने पास रखेगा।
0: ये तो है, बात सही है। चलिए, खुशी हुई आपसे बात करके। तो आप सुनना चाहते हैं कौन सा गीत, एक बार हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: जी मैडम, फिल्म का नाम है आशिकी और गाने की बोला है जाने जिगर जाने मन।
0: ठीक है, तो सुनवाए आपको
1: और कुछ
0: जरूर
1: मित्रों,
0: बिल्कुल याद करिए, बिल्कुल याद करिए।
1: आप है,
0: धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है राकेश, भगवान सिंह परवान जी, अभिनाथ जी, रमेश प्रजापति भैया जी लाइव सुन रहे हैं, और तमाम श्रोता गोल्डी भाई है, वो जितने कॉलर लाइव इटावा से वो कॉलर है वो भी सुनना चाह रहे हैं, दिनेश है और राहुल है।
0: ठीक है, तो सबके लिए आपकी पसंद का ये गीत प्रस्तुत है। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।
1: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।

0: और हमें मिल गई हैं अयोध्या से हमारी अगली कॉलर। हेलो,
1: नमस्ते मैम। थैंक
0: नमस्ते। कितनी प्यारी आवाज है आपकी।
1: यू मैम।
0: क्या नाम है आपका? गुंजन,
1: मेरा नाम गुंजन तिवारी है मैम।
0: आपकी आवाज भी बहुत अच्छी सी गुंजन सुनाई पड़ रही है ना? तो गुंजन तिवारी जी, आप अयोध्या से बोल रही हैं।
1: जी मैम।
0: कैसी हैं? बढ़िया।
1: जी मैम बढ़िया हूँ।
0: क्या करती हैं गुंजन जी?
1: जी मैम मैं घर का काम करती हूँ।
0: वाह, बहुत अच्छा। क्या क्या

0: काम कर लिया आपने?
1: मैम सारा कर लिया मैंने।
0: सब काम हो गया सुबह से?
1: जी मैम।
0: अरे वाह, बड़ी
1: सुबह कर लेते हैं, नहीं तो धूप निकल जाती है।
0: हाँ ये तो बात सही है, नहीं तो घर के अंदर ही तो करती होंगी काम। तो घर के अंदर तो धूप कहाँ आती है?
1: लेकिन बाहर तो है मैम।
0: हाँ बाहर तो है, गर्मी भी बढ़ जाती है तो अच्छी बात है। तो क्या खाना वाना बना लिया सब?
1: जी मैम।
0: क्या क्या बनाया आज खाने में?
1: मैम दाल चावल रोटी सब्जी।
0: अच्छा सब्जी कौन सी आजकल खाते हैं गर्मियों में ये बता दीजिए सबको।
1: जी भिंडी वगैरह, करेला।
0: हाँ
1: कौन
0: कौन,
1: सी सब्जी, मतलब मसालेदार नहीं।
0: हाँ थोड़ा सा इस मौसम में सबको ये ध्यान देना चाहिए कि बहुत मसाले नहीं खाने चाहिए, है ना? तो थोड़ा सा सिंपल सब्जियां होनी चाहिए। और जैसे आजकल तो जो सब्जियां भी इतनी बढ़िया आती है ना, लौकी है, तुरई है, कद्दू, इनमें कितना पानी होता है, वाटर कंटेंट जिसको कहते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना?
1: जी मैम।
0: तो इस गर्मी में ज़रा ध्यान रखें, खूब अच्छे से फल खाएं। फल खाती हैं आप?
1: जी मैम।
0: हाँ, और अब तो आम भी आने लग गए हैं।
1: जी मैम।
0: चलिए बढ़िया, तो खूब अच्छे से सबको भी खिलाइए, आप खुद भी खाइए और अपनी सेहत बनाइए, ठीक है?
1: थैंक यू मैम।
0: हाँ चलिए, तो आप सुनना कौन सा चाहती हैं गाना?
1: जी मैम, हमको हमी से चुरा लो।
0: हाँ चुरा लिया, चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत
1: जी मैम,
0: मोहब्बतें
1: कुछ
0: फिल्म
1: वक्त
0: से।
1: के नाम
0: हाँ
1: ले
0: हाँ बिल्कुल,
1: सकती
0: ले
1: हूँ।
0: लीजिए ले लीजिए ले लीजिए।
1: जी मैम, भगवान सिंह परमार हो गए, रिंकी पिंकी हो गई, कानपुर से पूनम दीदी हो गए, अमित तिवारी जी हो गए, विजय पांडे जी हो गए, और आप हो गई। नमस्ते
0: थैंक यू, ठीक है सुनिए सबके लिए आपकी पसंद का
1: मैम,
0: गीत।
1: बाय
0: नमस्ते,
1: बाय।
0: बाय बाय।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे अगले कॉलर से, जो कि हैं अयोध्या से ही। तो अयोध्या वाले बड़े जागृत हो गए हैं, और या फिर रामचंद्र जी की कृपा है ना। हेलो।
1: हेलो
0: जी, बोलिए।
1: जी जी मैडम, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप रमेश जी बोल रहे हैं अयोध्या से?
1: जी जी, यूपी अयोध्या से।
0: स्वागत है आपका रमेश जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, और आप बताइए।
0: हम भी बढ़िया हैं। तो बताइए, क्या कर रहे हैं अयोध्या में अभी आप?
1: मैं कुछ नहीं, बैठे हैं, रेडियो सुन रहे हैं।
0: नहीं, अभी तो रेडियो

0: सुन रहे हैं। वैसे आप क्या करते हैं?
1: मैं बताया मैडम, दृष्टि बाधित हूँ, बस लोगों के लिए दुआएं करता रहता हूँ।
0: वो तो बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए दुआएं भी करना चाहिए, और उसके अलावा ईश्वर ने आपको और भी चीजों से नवाजा है तो उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए।
1: हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैडम।
0: क्या क्या, जैसे बताइए क्या कोशिश कर रहे हैं?
1: कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने के लिए, जैसे जो
0: जैसे
1: करने लायक हो।
0: जैसे आपका क्या रुचि है, क्या आपका इंटरेस्ट है, किस चीज में बताइए।
1: जैसे लिफाफे बनाना हुआ,
0: बहुत अच्छी बात है।
1: या और भी जैसे लिफाफे जो आते हैं,
0: हाँ हाँ
1: लिफाफा बनाना है।
0: हाँ बहुत अच्छी बात है। कोई भी काम, देखिए कोई भी काम छोटा नहीं होता है, और आपको जो भी, आपको आपके पास शक्तियां हैं, जो नहीं है उसके लिए
1: जी
0: तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो दी है ईश्वर ने उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको
1: जी
0: खाली नहीं, आपको ये नहीं कहना हम खाली बैठे हैं या सिर्फ दुआएं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप लिफाफे बना रहे हैं जो कि बहुत काम की चीज़ होती है ना।
1: जी मैडम,
0: तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसे ही जितने भी और लोग सुनते हैं तो उससे आप ये बात बताते हैं ना, तो उससे प्रेरणा मिलती है उनको भी कि हाँ हम भी ये सब काम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है। और एक चीज़ और है कि जब आप काम करते हैं ना तो आपका जो आत्मबल है आपका, वो स्ट्रांग होता है, बढ़ता है ना। तो इसलिए कभी भी अपने को ये मत सोचिए कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। अरे जो आप कर सकते हैं वो करिए, और पूरी मेहनत से करिए, लगन से करिए, ठीक है।
1: जी मैडम, इस
0: बताइए।
1: महीने में हमारी तीसरी बाल खोल लगी।
0: ओह क्या बात है, अब देखिए कॉल भी आप लगा लेते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। तो ये बहुत अच्छी बात लगी आपकी बात सुन के कि आप कुछ काम कर रहे हैं, और ऐसे ही आप दूसरों को भी प्रेरित करते रहिए, ठीक है। तो अब आपकी पसंद का गीत सुनवाएं।
1: मैडम, उसको सुझाव देना चाहता
0: हाँ
1: था,
0: हाँ बिल्कुल दीजिए।
1: जैसे कि सुबह के टाइम जो 7:30 बजे आज सुबह आता था डेली,
0: वो रोज नहीं आता है, अब थोड़ा
1: वो बहुत
0: चेंज हो
1: अच्छा
0: गया है।
1: लगता था। अगर
0: हाँ,
1: चाहे तो उसे डेली करने
0: तो
1: की
0: ये बात
1: प्रयास
0: हम
1: करें।
0: ऊपर पहुंचा देंगे अधिकारियों के पास
1: और
0: में।
1: क्रिकेट कमेंट्री जो आती थी वो बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो भी जब भी आए क्रिकेट तो कमेंट्री प्रसारित करने की कोशिश करें।
0: अच्छा ठीक है, ये भी आपकी बात हम पहुंचा देंगे। सही बात है, क्योंकि रेडियो में जो हम लोग सुनते हैं, हालांकि रेडियो में भी आती है लेकिन दूसरे किसी चैनल पर आती है, ठीक है ना। तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे जब भी ऐसा होगा। तो और तो अब आपको सुनवाते हैं गीत। आपने बहुत अच्छा गीत चूज़ किया है, अंकुश फिल्म का गीत है,
1: फिल्म का नाम है अंकुश, गाने के बोले ये
0: इतनी
1: शक्ति
0: शक्ति
1: हमें देना
0: हमें
1: दाता।
0: देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना हो, बस यही चीज़ हम
1: ये
0: चाहते
1: गीत
0: हैं।
1: आपको और आपकी पूरी आकाशवाणी टीम को और
0: बहुत
1: जितने भी सुनने वाले हैं
0: बहुत
1: सभी
0: बहुत
1: को।
0: धन्यवाद, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि शक्ति हमको जो ईश्वर दे कि हमारा जो आत्मविश्वास है ना वो कभी कमज़ोर ना हो, हमेशा हम आगे बढ़ते रहें, अपना काम करते रहें, और कुछ भी हो जो भी हो मन से, और जो विपदाएं आए जो परेशानियां आए उनका हम डटकर सामना कर सकें। तो सुनिए अपनी
1: जी
0: पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल
1: जी
0: करने के
1: मैडम,
0: लिए।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: कार्यक्रम में स्वागत करते हैं महाराष्ट्र से हमारे अगले कॉलर गंगाधर जी का। हेलो।
1: हेलो, हमारे दीदी को प्यार बड़ा नमस्ते।
0: आपको भी नमस्ते जी।
1: दीदी, कई इंतजार के बाद आपसे फोन से बात हो रही है।
0: चलिए,
1: 40 दिन हो गए,
0: आपका इंतजार पूरा हुआ।
1: हाँ, बहुत खुशी मालूम है, आज हमारे दीदी की बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कैसे हैं आप? हमें भी बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके। कैसे
1: जी,
0: हैं?
1: दीदी
0: ठीक है, बढ़िया
1: बढ़िया। दीदी, गर्मियों के दिन मैं घर में ही रह रहा हूँ,
0: हाँ।
1: फिर भी कार्यक्रम सुन रहा हूँ, मगर जरा कुछ काम की वजह से मैं फोन नहीं लगा रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: आज हमारी दीदी की आवाज सुना, चलो लगाएंगे। बोल, लगा दिया, लग गया दीदी।
0: अच्छा। तो क्या काम में आप मसरूफ हैं, किस काम में बिजी हैं, थोड़ा बताएंगे?
1: थोड़ा वो हमारे बच्चे के दुकान है,
0: अच्छा,
1: थोड़ा उनको जरा मदद कर रहा हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। किस चीज की दुकान है?
1: ये कटलरी की जनरल स्टोर है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो दुकान आप
1: जी
0: ही ने एस्टैब्लिश की होगी?
1: जी जी
0: हाँ, तो अपनी विरासत आपने बच्चे को दे रहे हैं और उसको सिखा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है
1: ओ
0: ना?
1: दीदी, बिल्कुल सही है बात है आपका,
0: बहुत खुशी होती है।
1: और राजेश्वर साहब भी बहुत बढ़िया आपके जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं कि श्रोताओं को ज्यादा से सहभाग ले रहे हैं,
0: कोशिश
1: और
0: हाँ उनकी भी
1: हाँ
0: यही रहती
1: बहुत
0: है।
1: अच्छा मालूम रहा मुझे भी।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा। और
1: हाँ
0: ऐसे
1: दीदी,
0: ही हाँ हाँ बताइए।
1: हमारे तो दिल चाहता है कि आपको लखनऊ आके मिलना है
0: जरूर।
1: ऐसा।
0: अरे कब भी,
1: हाँ
0: जब भी आप आए लखनऊ, आपका स्वागत है, बिल्कुल मिलेंगे।
1: बिल्कुल आऊंगा दीदी, मैं आपको मिले बगैर नहीं रहूंगा, मेरा एक
0: बिल्कुल
1: खास
0: मिलेंगे।
1: क्लास से।
0: बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। चलिए, अच्छी बात
1: हाँ,
0: है।
1: क्योंकि
0: तो
1: विजय पांडे साहब हमारे मिल चुके हैं आपको,
0: हाँ,
1: बोला
0: उनसे
1: हमारा दीदी की
0: मुलाकात।
1: फोटो भेजो, बोला मैं तो
0: अरे
1: उन्होंने फोटो वहीं छोड़ के आ गए लखनऊ में।
0: चलिए, कोई
1: ठीक
0: नहीं,
1: है, बोला
0: आपसे
1: मैं कभी जाऊंगा तो दीदी के साथ बिल्कुल फोटो सारंगा
0: जरूर जरूर, हमारा
1: वहां।
0: सौभाग्य। ठीक है,
1: अच्छा दीदी,
0: चलिए।
1: मुझे
0: आप
1: एक मुझे
0: हाँ
1: फिल्म का
0: हाँ हाँ
1: मेरे जीवन साथी प्यार किए जाए ये गाना सुना है दीदी?
0: जी,
1: और हमारे
0: सुनवाते।
1: साथ में खास दोस्त हमारे हैं, जैसे सच्चाई दोस्त है हमारे भगवान सिंह जी परिवार
0: वाह, बहुत बढ़िया।
1: हीरापुर के। हाँ, और हमारे संगीता बहन जी है,
0: हाँ, त्रिपुरा
1: आशुतोष जी
0: की,
1: है,
0: त्रिपुरा के।
1: गजराज जी है, और हमारे लोकेंद्र वर्मा जी है, तुकाराम जाधव जी है, ये सभी दोस्तों को
0: ठीक है,
1: प्यार बड़ा नमस्ते। आपको भी दीदी ये
0: बहुत बहुत
1: गाना
0: धन्यवाद,
1: डेडिकेट है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, आप गुनगुना रहे थे थोड़ा सा।
1: हाँ, मेरे जीवन साथी प्यार किए
0: वाह। बहुत
1: जाए।
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सुनिए अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: धन्यवाद दीदी।
0: नमस्कार।

0: चोर
1: भूल गए
2: जानी मेरा नाम
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
1: बंडल बान
2: लड़के मिलन गीत गाता चल
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम
1: बेशरम

0: चाचा।
1: कार्यक्रम में मिलते हैं हरदोई से रामप्रसाद जी से। हेलो
2: जी, हाँ नमस्ते।
1: नमस्ते रामप्रसाद जी, कैसे हैं आप?
2: हम अच्छे हैं सर, आप कैसे?
1: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
2: धूप से आए, कहीं ठंडा मत पिए।
1: धूप से आए हैं?
2: नहीं धूप से नहीं आए, लेकिन कोई धूप से अगर आए हूँ
1: हाँ
2: तो ठंडा
1: एकदम से ठंडा पानी ना पिए। सही कहा बिल्कुल आपने, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तापमान में एकदम से बदलाव आता है, जब हमारा शरीर जो है ना उतना तैयार नहीं होता एकदम से, धूप में गर्म हो जाता है, तो जब आप आते हैं और एकदम से ठंडा पानी पीते हैं तो वो नुकसान करता है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने को एक्लिमेटाइज कहते हैं इसको, कि हमें थोड़ा सा अपने शरीर के तापमान को ठीक कर लेना चाहिए, नॉर्मल ले आना चाहिए। और छाँव में बैठिए, थोड़ी देर सुस्ताइए, थोड़ा सा गर्मी निकले, और थोड़ा बहुत ठंडा पानी नहीं लेकिन हल्का ठंडा पानी पीजिए, जिससे कि शरीर की हाँ बस। ये तो बहुत बड़ी, मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही है और बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं ये जो ठंडे गर्म की वजह से। हाँ, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। और धूप में भी जब निकलें तो थोड़ा सा गमछा डाल लें या अपना छाता एक ले लें, थोड़ा बचाव करें कि डायरेक्ट आपको धूप ना लगे, आपके शरीर को नुकसान ना हो, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अब आपकी पसंद का गीत सुनवाए।
2: एक मित्र आ रहे हैं।
1: हाँ हाँ,
2: पुसट के राजेश विद्यार्थी
1: जी,
2: ये दो कल्प है, और यहाँ नाचलार एक प्रभु दयाल हैं
1: जी,
2: उनका फोन नहीं लगता है।
1: कोई बात
2: उनको भी जलिए करेगा आपको भी।
1: ठीक है, चलिए तो हम लोग सब सुनते हैं आपकी पसंद। आप सुनना चाहते हैं कर्तव्य फिल्म का गीत, छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला। ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम में कुछ बहुत कुछ कहने आ रहे हैं हमारे श्रोता, जो कि सबके बहुत पसंदीदा हैं और सबके जो बातें होती हैं उसमें उनका जिक्र ज़रूर होता है, विजय पांडे जी। जी तो स्वागत है आपका।
1: जब महफिल सजती है तो किसी के आने का इंतजार रहती है, जब दीप्ति जोशी हंसती है तो कार्यक्रम में बाहर आ जाती है।
0: वाह वाह।
1: हर श्रोता होता है खुश, स्टूडियो जब आती है आप, खिल उठते हैं फूल चमन में जब मुस्कुराती हैं आप।
0: ओह
1: आदरणीय दीप्ति जोशी साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार। हम क्या करें,
1: हम शायरी के माध्यम से आपके तारीफ के कसीदे पढ़ता हूँ।
0: अरे हमें बहुत शर्म आती है, आप जो है इतना बात करते हैं ऐसी।
1: उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है।
0: अरे
1: क्योंकि श्रोताओं के दिलों की गहराइयों पर मेरी नजर होती है।
0: अच्छा।
1: सभी श्रोता आपको दिल से चाहते हैं, उन्हीं के चाहत पर मैं कुछ शेर आपके लिए लिखता हूँ, सुनाता रहता हूँ।
0: ये तो सब प्रभु की कृपा है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं हमको, वरना ऐसी कोई बात नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन क्या होता है कि काम करते करते आप लोगों से जुड़ाव हो जाता है और आप लोगों से बात करते करते इतना अच्छा लगता है कि अपने दिल की सब बातें बाहर आ जाती हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कहाँ पर अपने को, तो वो जो एक कंट्रोल होता है ना वो नहीं हो पाता है। चलिए, लेकिन अच्छा लगता है आप लोग इतना प्यार देते हैं हमको, बहुत खुशी होती है।
1: अब कुछ मुस्कुराहट पर मैं बात करूं।
0: हाँ, जरूर कर लीजिए।
1: कितने अजीम है वो लोग जो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखते हैं, जो हर मुकाम पर खुशियां बांटते फिरते हैं, जो हर एक दामन में चाहतों के फूल बिखेरते हैं और आंखों में प्यार की जोत जगाए रखते हैं, मगर कोई नहीं ये जानता कि उनके अंदर कितने दर्द और कितने गम छुपे होते हैं। वो अपनी पलकों पर आई हुई नमी को छुपाए रखते हैं। कोई नहीं जानता कि दूसरों में मोहब्बत बांटने वाले अंदर से किस कदर तन्हा होते हैं, और अंदर की तन्हाई तो इंसान को दीमक की तरह चाटती रहती है। चांद सितारों के झुरमुट में, सूरज किरणों के बीच, फूल कलियों के बीच और इंसान अपनों के बीच कितना हसीन और खूबसूरत लगता है। लेकिन ऐसे इंसानों के मुकद्दर में हुस्न, खूबसूरती, मोहब्बत, चाहत, अकीदत और उल्फत कहाँ, जो अपनों के होते हुए भी तन्हाइयों में घिरे रहते हैं। ऐसे इंसान काबिले तारीफ होते हैं जो अकेले अपनी तन्हाइयों से लड़ते रहते हैं। मुझे ऐसे इंसानों से मोहब्बत है जो तन्हाई को गले लगाकर जीते हैं, मगर अपने ओठों पर मुस्कुराहट भी सजाए रखते हैं, जैसे कि हमारे बाबा प्रेमदास जी हैं।
0: ओह, मैं यही सोच रही थी कि आप किसके लिए ये बात कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा अपना ख्याल वो है कि मैं तो बिल्कुल भी तन्हाई में नहीं रहती हूँ, और हम जो है जैसे मैं हम जब इस कार्यक्रम में आते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें इतनी जगह से सारे श्रोताओं से मुलाकात करने का, बात करने का मौका मिलता है। ऐसे ही हम अपनी असली ज़िंदगी में भी हैं कि हम तन्हाई हमारे साथ नहीं है, हम पूरा सबके साथ में, परिवार और रिश्तेदारों और जो है जितने भी हमारे मित्रगण हैं सबके साथ में हम खुश रहते हैं और खुशियां बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, आपका कहना भी सही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं और वो बहुत महान होते हैं कि जो तन्हाई में रह के अपने गमों से, अपनी तकलीफों से जूझ के भी अपने चेहरे पर मुस्कान रखते हैं और लोगों के साथ वो मुस्कान शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है और उनके लिए हम भी सलाम करते हैं ऐसे लोगों को। जी
1: जी, आज जो गीत आप सुनाएगी वो गीत सभी के लिए है।
0: जी, पतिता फिल्म का गीत आपने पसंद किया है लता मंगेशकर की आवाज में, ठीक है। तो
1: धन्यवाद,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के। आप इतना अच्छा लिखते हैं, ऐसे ही लिखते रहिए, सुनाते रहिए और सबके भावों को, सबके विचारों को

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में आप सुन रहे हैं अपने श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गाने और उनसे हमारी बातचीत। कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपको फ़ोन नंबर बता दें 0522-223-8825 यानी 0522-2238825। मिलते हैं हमारे कार्यक्रम के एक और नियमित श्रोता से, श्रीपाल जी से, जो कि हरियाणा से बोल रहे हैं। हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है श्रीपाल जी।
1: जी धन्यवाद मैम।
0: बताइए क्या कहना चाहेंगे
1: मैम। दो लाइनें हैं। जी, कसर किसी ने नहीं छोड़ी जख्म देने में, बस तेरा कुरेदना बाकी है, से जाने के बाद मेरा बिखरा हुआ दस मिटना बाकी है। मैं सोचा इसे ज्यादा बर्बाद में क्या हो सकता, फिर याद आया अभी उसे किसी और के साथ देखना बाकी है।
0: अरे बाप रे, इतना दुख भरी, इतनी तकलीफ भरी आपने शायरी करी है। ओ हो। ऐसा कुछ जी, नहीं होना चाहिए किसी की जिंदगी में, ठीक है ना। हम तो यही मनाते हैं, सब अपने अपनों के साथ में प्रेम से रहें और अच्छे से जिंदगी बसर करें, खुश रहें सब। तो आप सुनना चाहते हैं ये जो गीत, ये है नरेंद्र चंचल और लता मंगेशकर की आवाज में।
1: हाँ जी मैम, गीत मैम बहुत प्यारा है मैम, और मैम कहीं भी मतलब जो है नहीं जो बसता, ये कहीं भी नहीं बसता, लेकिन आपके पास ये गीत मिल गया है,
0: हम इसके लिए आपका धन्यवाद है इसमें। लेकिन फिल्म का नाम हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, इसको ढूंढेंगे, ठीक है। तब तक सभी लोगों के लिए हम प्रस्तुत करते हैं ये गीत जो है आपकी पसंद का, ठीक है।
1: धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में अब मिलते हैं मजनू दीवाना जी से। हेलो।
1: अरे नमस्कार दीदी जान। नमस्कार। मैं बता दूं, उड़ाते हैं नींदें
0: जी,
1: दिखाती हैं सपने
0: जी,
1: जगाती हैं जादू बनाती हैं अपने, कहते हैं बातों ही बातों में अपना बनाना, और दीप्ति जोशी दीदी जान ये हुनर आपने सीखा कहाँ से?
0: अरे वाह, ये समझिए आप ही से सीख लिया है।
1: ये मान के चलिए दीदी जान, आपसे बात करने के लिए इतना बेताब बेचैन कमजोर हो गए थे हम और आपकी भाभी जान।
0: ऐसा
1: मुझे कहते हैं ग्राम कल्पा जिला सतना से हाउस हाफ पेंट, ये आपकी भाभी जान कहा करती हाफ पेंट?
0: अच्छा
2: मैडम जी, हम इनको हाफ पेंट बोलते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, हाफ पेंट बोलती कोई बात नहीं।
1: दीदी जान हाउस हस्बैंड कहा करते हैं तो ये हाफ पेंट नाम रख लिया, हम इसी में खुश रहते हैं।
0: नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, प्यार से जो भी कहा जाए उसको अपना लेना चाहिए, है ना, और प्रेम बना रहना चाहिए।
1: पता नहीं बता पाया, ईडन गार्डन अशोक वाटिका से चांद मोहम्मद मजनू कहते हैं आपकी चाहत के आपकी चाहत के दीवाने हो गए, और क्या होना था ना जाने क्या हो गए, चांद मोहम्मद से अब तो मजनू दीवाने हो गए। दीदी जान की क्या कर दू, उड़ने लगू, इतनी खुशी मुझे मिल रही है की आज मुझे पूरी जो है दुआ कबूल हो गई मेरी।
0: बहुत गर्मी है अभी, उड़िए नहीं, सूरज बहुत पास में है, है ना, तो जल जाएंगे।
1: एक बात बता दूं कि जिसको गर्मी से निजात लेना है तो कल्पा आ जाइए, मजा आ जाएगा। ईडन गार्डन चारों तरफ से नदी नाले, और समझ लो कि पल्ली उड़ना पड़ेगा दीदी जान।
0: सच्ची में? अरे वाह बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये आपका, अब आपने रेडियो में ये बात बता दी है ना, अब देखिए कल्पा सब पहुंचेंगे और वो बन जाएगा एक टूरिस्ट स्पॉट, ठीक है। और एक चीज और, अरे रुकिए,
1: फोन न कर जाए तो अरे टोटे टोटे हो जाए। और आज एक भाभी जान ने जो है तो 5 फुग्गे तोड़े हैं एयरगन से।
2: मैडम जी हमने 5 फुग्गे फोड़े हैं।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया, आपका निशाना ऐसे ही बढ़िया रहे, और
1: मुझे हरा दिया दीदी जान इन्होंने।
0: हम ये कह रहे हैं कि आपने टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है अब कल्पा को, तो आप तैयार रहिए, आपके पास बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और आपको उनकी मेहमान नवाजी भी करनी पड़ेगी।
1: मैं स्वागत करूंगा, दिल बिछा दूंगा।

0: दुपट्टे बिछा देंगे, बिछा देंगे।
1: अरे खाना खिलाएंगे कि नहीं ये बताइए, खाना भी खिलाना पड़ेगा।
0: गाना बता दूं, गुनगुनाएंगे दोनों लोग तब तो मजा आएगा। प्रेमदास बाबा जी के साथ में खुली नंबर वन का गाना।
1: आप आइसक्रीम खिलाएंगे?
0: रास्ते से जा रहा था मैं तो आइसक्रीम खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी।
1: अच्छा
0: मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं।
1: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।
0: आपको नमस्कार। लग रहा फोन ना रखूं पर क्या करूं, बेवकूफ।
1: नहीं नहीं,
0: आपको
1: और लोग भी हैं
0: पूरे आकाशवाणी परिवार को।
1: नमस्कार, धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्ते, अपना परिचय दे दीजिए।
1: मैम। मैं नरेंद्र नांगी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर तहसील शामपुर से,
0: जिला सीहोर,
1: एमपी मध्य प्रदेश।
0: एमपी, मध्य प्रदेश से। स्वागत
1: जी
0: है आपका। कैसे हैं आप नरेंद्र जी?
1: मैम, बढ़िया, भगवान की कृपा है। जी
0: बिल्कुल, सब पर कृपा बनी रहे, यही हम भी
1: जी
0: चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: मैम, बस यही कहना चाहते हैं कि अभी गर्मी बढ़ गई है, तो इसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जो भी काम है अपने समय पे ठंडे में निपटा लें, और दोपहर से बचाव करें धूप से, जहाँ
0: आप
1: तक
0: तो
1: हो सके ठंडा पदार्थ ले पीने में। मैम,
0: आप क्या काम करते हैं नरेंद्र जी?
1: हम खेती किसानी करते हैं।
0: अच्छा, तो आप कितने सालों से मध्य प्रदेश में हैं, सीहोर
1: मध्य
0: में?
1: प्रदेश मैडम, यहाँ तो प्रॉपर ही है, हम यहाँ पर।
0: अच्छा, आप वहीं के हैं। अच्छा अच्छा
1: जी जी
0: अच्छा तो आपके मतलब
1: गांव में रहते हैं मैम, सीहोर जिले में गांव है
0: सीहोर
1: हमारा।
0: में। अच्छा,
1: जी
0: तो खेती वेती करने के लिए तो सुबह ही निकल जाते होंगे खेत
1: हमें,
0: में।
1: हम तो खेती पर ही मकान है, वहीं पर रहते हैं, सुबह काम कर लेते हैं 10 बजे, इधर शाम को 5 बजे के बाद में, अपना रूटीन का काम है ये।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आप जो है अच्छे पर्यावरण में रहते हैं, बिल्कुल प्रकृति के बिल्कुल पास में, कितना अच्छा लगता होगा ना।
1: जी जी मैम, कुछ
0: थोड़ी
1: मूंग लगा रखे, हरी सब्जियां, तो पानी चलते रहे, टंकी बनी रहती है, उसमें लगे रहते हैं काम काज में। जी
0: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, भगवान
1: जी
0: आपकी सेहत भी अच्छी कर रखेंगे, क्योंकि आप मिट्टी से जुड़े हैं, है ना? तो
1: जी हाँ,
0: मिट्टी से,
1: मेहनत का काम है मैम,
0: हाँ,
1: बस।
0: मेहनत का काम है ज़रूर, लेकिन ये कि उससे आपको एक अच्छा संतोष मिल रहा है, आप जो काम कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना?
1: हाँ
0: मेहनत,
1: मैम, काम तो कोई से ही करो, अगर उसको खुशी और लगन से करेंगे तो काम में थकावट भी नहीं होगी, और काम भी अच्छे से होगा।
0: वाह, आपने कितनी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा। चलिए, तो सुनवाएं आपकी पसंद का गीत।
1: जी ठीक है मैम, नमस्कार।
0: आप सुनना चाहते हैं, ये कुली नंबर 1 का गीत है, जेठ की दोपहरी।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं प्यारी प्यारी रिंकी पिंकी से। हेलो
1: हेलो मेरी प्यारी सी क्यूट सी दीप्ति, मेरे को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: अरे क्यूट तो आप हैं, आप लोगों को हमारा नमस्कार।
1: और चुलबुली भी है।
0: अच्छा
1: जी, मैं दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई, काफी अंतराल के बाद आपसे बात हो रही है।
0: हाँ ये तो है, बहुत दिन हो गए।
1: रिंकी मेरी शिकायत है, आप हम लोगों से प्यार नहीं करते।
0: अरे हम
1: आपके कार्यक्रम में हमारी कॉल नहीं।
0: अच्छा ये बताइए आज कैसे मिल गई, लड़ाई करनी है क्या हमसे?
1: आज करती है मैम, पहले नहीं करती।
0: अच्छा अरे ऐसे तो कितने ही लोग हमसे शिकायत करेंगे कि लो।
1: आज मेरी फर्स्ट कॉल पे लगी थी लेकिन मेरी कॉल रिसीव नहीं हुई। मैं रोज प्रयास करती वो 10:45 से कि आज दीप्ति मैम से बात हो जाएगी, आज हो जाएगी, लेकिन बड़े मुश्किल हो गया मैम।
0: चलिए कोई नहीं, आज बात हो गई तो और बातें करते हैं। अब ये क्या है ये सब शिकायतें, छोड़ो।
1: रोटी एक्स्ट्रा खाऊंगी। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल, हमारी तरफ से एक और
1: गलका के साथ।
0: अरे वाह, आजकल तो यही मजा है ना गर्मियों में।
1: मैम मेरा फेवरेट खाना है, लेकिन मेरे मुंह में छाले पड़े ना तो मैं खा नहीं पा रही।
0: ओ हो, तो अभी तो गलका हमने भी बनाया पता है आपको, और बड़ा मजा आया। और
1: अपनी बहन से बोल रही थी कि मत बनाओ हम खा नहीं पाएंगे, लेकिन बोली कि हम बनाएंगे जरूर।
0: चलिए तो अपना जल्दी से छाले ठीक करिए ताकि ये सब चीजें खा सके आप, है ना।
1: और आइए हमारे घर भी कभी, हमसे भी मुलाकात कर जाइए, हम आपको बहुत इंतजार।
0: जरूर जरूर जरूर, अपना पता बता दीजिए एक बार जरा, सभी लोग आएंगे।
1: दीवानों के शहर जिला रायबरेली से बात कर रहे हैं। ये मेरे गांव का नाम है मैम जगदीशपुर, ये शिवगढ़ के पास।
0: अरे बिल्कुल पास में ही है लखनऊ के, और क्या। जी, बिल्कुल आ जाएंगे। जरूर आएंगे।
1: आपका बचावा और शिवगढ़ के पास आना हो तो हमारे घर जरूर
0: आए। अरे हम और कहीं क्यों आएंगे, हम आप ही के घर आएंगे सीधे, ठीक है
1: जी। हो सकता है बहुत जल्दी हम आपको इनविटेशन भी देंगे।
0: अच्छा अरे वाह, किस चीज का इनविटेशन है जरा हमें बता दीजिए।
1: मैम अभी तो हमें खुद भी नहीं।
0: अच्छा चलिए, हम भी इंतजार करेंगे ठीक है। चलिए
1: वैसे तो मेरी भाभी आने वाली है।
0: अरे बधाई, बहुत बहुत
1: हो सकता है,
0: बहुत बहुत बधाई आपको। तो बढ़िया है, तो खूब एंजॉय कीजिए ये टाइम, आप सारी तैयारियां करिए, इसमें तो बड़ा मजा आता है, रौनक।
1: मैम हम आपको जरूर बुलाएंगे।

0: जरूर जरूर आप बुलाएंगे और हम जरूर आएंगे, ठीक है?
1: जी, और मैम
0: चलिए,
1: हो सकता है कि मैम हम लोग भी आपसे
0: लखनऊ,
1: मिलने आए।
0: बिल्कुल आइए आइए मिलने, स्वागत है आपका,
1: जी बिल्कुल
0: जरूर आइए।
1: मैम आएंगे।
0: तो ठीक है, तब तक आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।
1: जी अब मैम मूवी का नाम है जिगर और
0: जिगर,
1: गीत के बोले प्यार के
0: ठीक,
1: कागज में दिल की
0: वाह,
1: कलम से पहली बार सलाम लिखा मैंने महबूब के
0: बिल्कुल नाम
1: नाम लिखा।
0: लिखा,
1: मैम ये सॉन्ग
0: हाँ
1: सुनना है
0: सुनवाते हैं।
1: और डेडिकेट करते हैं मैम आपको और हमारे भाई हैं दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही और मेरी दोस्त हैं गुंजन तिवारी, पूनम दीदी, साहिब अंसारी, साजी अंसारी और ममता दीदी और समपल।
0: और जो होने वाली भाभी हैं उनका नाम तो आपने लिया नहीं।
1: मैम उनके लिए स्पेशल सॉन्ग बजवाएंगे पहले वो आए तो हमारे
0: ठीक है,
1: घर।
0: चलिए बढ़िया, ठीक है, तो सुनिए अपनी पसंद का गीत। धन्यवाद
1: जी
0: कॉल
1: मैम
0: करने के लिए,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत अच्छा लगा बात करके।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं रामबाबू शर्मा जी से। हेलो
1: जी, दीदी को नमस्कार।
0: नमस्कार रामबाबू जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं एक बार बता दीजिए।
1: जी दीदी, मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से रामबाबू शर्मा बात।
0: स्वागत है आपका। तो क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: दीदी कुछ प्रोग्राम सुन रहा था और खाना खा रहा हूँ अभी। दीदी के पास आया हुआ हूँ विदिशा।
0: अच्छा,
1: और प्रोग्राम सुन रहे थे तो ये बच्चे लोग कह रहे थे कि फोन लगता भी है कि वैसे ही लगे रहते हो। मैंने उनका लगता है फोन।
0: चलिए तो बच्चों को दिखा दीजिए, सुना दीजिए कि हाँ हमारा फोन लगता है। और आज ही नहीं लगा है आपका, कई बार लगा है फोन।
1: हाँ दीदी, और बिल्कुल सुनने के चक्कर में बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं अभी वो। बिल्कुल एक से एक बात नहीं कर रहे हैं कि बात हो रही है, चलो सुनते हैं।
0: चलिए बढ़िया है, अब हमारे कार्यक्रम में और श्रोता जुड़ जाएंगे वहाँ विदिशा के भी, है ना?
1: दीदी बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए अच्छी बात है, तो वहाँ पर कैसा है? विदिशा में भी गर्म तो होगा?
1: जी दीदी बिल्कुल, 45 के लगभग टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पर, गर्मी सभी में है।
0: ध्यान रखिए सब लोग अपना, और बच्चों को तो स्पेशली ये कहना है कि बहुत ख्याल रखना है इस समय में। बहुत ज़्यादा ठंडा वो नहीं, बर्फ़ वगैरह में बच्चे चाहते हैं ना कि एकदम से वो चाहिए, तो थोड़ा सा अपना कंट्रोल करें और तबीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए।

0: और धूप में खेलने से बचें, है
1: हाँ
0: ना?
1: जी जी हाँ जी हाँ जी
0: तो ठीक है, चलिए तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
1: लेकिन दो
0: हाँ
1: तीन
0: बताइए,
1: मित्रों को याद करना
0: जरूर
1: चाहूंगा।
0: याद करिए।
1: जी दीदी जी, केसरी सिंह राजपूत जी हैं, गजराज सिंह लोधी जी और मिंटू तिवारी जी और पूनम जी हैं कानपुर से। तो दीदी आपके लिए रहेगा और बच्चों के लिए रहेगा, ज्यादा है नाम लूंगा तो ज्यादा समय लगेगा।
0: सारे बच्चों के लिए, ठीक है ना?
1: हाँ जी हाँ जी
0: सब बच्चों तालियां बजा दो।
1: जी
0: ठीक है, चलिए तो आपकी पसंद का गीत आप सुनना चाहते हैं, चरस फिल्म का गीत, आजा
1: हाँ जी
0: तेरी
1: दीदी
0: याद
1: हाँ जी
0: आई। ठीक है, सुनवाते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।

ठीक है, चलिए तो आपकी पसंद का गीत आप सुनना चाहते हैं, चरस फिल्म का गीत आजा तेरी याद आई। ठीक है, सुनवाते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम में चलते चलते मिलते हैं एक और कॉलर से। हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, शमा परवीन जी बोल रही हैं। कहाँ से बोल रही हैं जरा बता दीजिए।
1: जिला सीतापुर पचानापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं, और सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी। जल्दी से
1: मैम, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है।
0: अरे हमारी आवाज कम कहाँ आ रही है, इतने सारे लोगों ने हमसे बात करी है।
1: मैम आप कैसी हैं?
0: हम बहुत बढ़िया हैं, और आप जल्दी से जो कहना है कह दीजिए, क्योंकि समय कम है और गाना भी आपका थोड़ा तो जाएगा ही जाएगा।
1: गाना सुना दो, दिलबर दिलबर, और गाना डेडिकेट करना है।
0: जल्दी से करिए, जल्दी से।
1: सबसे पहले आपको
0: धन्यवाद।
1: फिर बाबू अंसारी भाई, जावेद अख्तर भाई, वकील अहमद भाई, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, शबनम अब्बासी।
0: ठीक है, तो सबके लिए ये गाना जल्दी से
1: सुन रहे हैं उन सभी सुनने वालों को।

आज कार्यक्रम में बस इतना ही। तो कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
0: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
1: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी आगे लिखते हैं।
1: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
0: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
1: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
0: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहाँ से कहाँ तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन

0: देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने? हम जिनसे आशा भी नहीं करते, वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व

0: साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
1: जवानों,
2: जी सर,
1: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
2: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
1: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
3: जी सर।
1: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
3: जी जनाब।
1: हाथ गोला हाथ में लो।
3: ले लिया जनाब।
1: अब पिन रिलीज करो।
4: फेंको।
3: फेंको जनाब।
4: अरे ये क्या हुआ?
3: ये क्या हुआ? अरे बचो,
4: फटने जाओ,
3: सभी साथ पीछे हटो,
4: जमीन पर लेट जाओ, बाहर निकल जाओ, धुआं निकल रहा है, बाहर निकल
5: रहा। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
3: ये आदि क्या कर रहा है?
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
6: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
3: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
7: सही में
3: बहादुर सैनिक हो तुम। हाँ।
5: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
8: May I come in, sir?
6: Yes, come in.
8: Sir.
6: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
8: सर।
6: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
8: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
6: हाँ हाँ, कहो।
8: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
6: ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
8: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
6: गो अहेड यंग मैन।
8: सर।
5: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
5: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
8: साथियों,

0: खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
1: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
0: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
2: जी जनाब।
3: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
4: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर।
5: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
6: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
7: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
6: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ

0: सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
1: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
0: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए, किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
6: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIRLakhnau@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सदाबहार नगमे।

महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम सच्चा झूठा। गीतकार इंदीवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, और आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

बात करती। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गीत से। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, आवाजें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की।

0: फिल्मी गाने आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोकगीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। फिल्म का नाम है जंजीर। गुलशन बावरा के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने और आवाज़ दी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के गाए मेला फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: बदल रहा है भारत, तेज है रफ्तार,
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
1: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज़।
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर,
4: 8700001-4242।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष

0: 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो।
4: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

हम 7:31 पर स्वास्थ्य मैगजीन स्वास्थ्य वार्ता में आज आप सुनेंगे थायराइड ग्रंथि की समस्याएं। इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष यादव से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता। इसके अलावा चक्कर आने का कारण और कान की समस्या विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर मनीष चंद्र और उनसे भेंट करेंगे आशीष चतुर्वेदी। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में विमल किशोर श्रीवास्तव का कविता पाठ प्रसारित किया जाएगा। कैलाश जोशी की गाई गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर।

आज रात 9:30 पर पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर विदुषी गिरिजा देवी का गाया राग अभोगी कानड़ा में ख्याल सुनवाया जाएगा।

शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी से डॉक्टर सुशील कुमार राय की गई भेंटवार्ता। विषय होगा पशुओं में गलाघोंटू, कारण और निवारण। श्रोताओं, आज शाम 5 से आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से नागरिक अलंकरण समारोह का पहला भाग का सीधा प्रसारण। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 से।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासत के अमन व अमान और इंतज़ामी कामों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने हर तरक्याती ब्लॉक की सतह पर हफ्ता वाराना चौपाल मुनक़िद करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि इन चौपालों में रेवेन्यू के तनाज़ात, घरेलू तशद्दुद, गैर क़ानूनी वसूली और मकामी सतह की शिकायात का मौके पर ही हल यकीनी बनाया जाए। IGRS और CM हेल्पलाइन के ज़रिए मौसूल होने वाली शिकायात के मेयारी और तसल्ली बख्श निपटाने पर ज़ोर देते हुए जनाब योगी ने कहा कि शिकायात में किसी भी सतह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि गंगा दशहरा और बकरीद के सिलसिले में मज़ीद चौकस रहें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल एक आला सतही जायज़ा मीटिंग में रियासत के पुलिस निज़ाम को मज़ीद महफूज, जदीद और तकनीकी बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को मजबूत करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस के मकाम नकलो हरकत और मवासलाती सरगर्मियों की राजदारी अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा कल शाम महकमा आयुष की एक जायज़ा मीटिंग में वज़ीर आला ने आयुष, सेहत और फलाह बहबूद की पॉलिसी 2026 को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने कल लखनऊ में वाक़े पार्टी सदर दफ्तर पर सभी सीनियर अहदेदारों, कोऑर्डिनेटर्स और ज़िला सदूर के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इस दौरान BSP सरबराह ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि रियासत में एक बार फिर BSP

0: की हुकूमत बनाने के लिए कारकुन अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नए नए चैलेंजेस के दरमियान जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों की हर सतह पर और भी चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद बनाने की ज़रूरत है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा त्यौहार का इनेकाद हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस इंतजामिया ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला इलाके में सख्त चेकिंग की। वहीं अमरोहा में भी कौमी शाहराह पर कल से ही रूट डायवर्जन नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएसी फ्लड पीएसी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में यह गुज़िश्ता 2 हफ्ते में चौथा इजाफा है। अब लखनऊ में पेट्रोल 101.89 रुपए और डीजल 95.36 रुपए फी लीटर मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को मुजव्वज़ा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 मुलतवी कर दिया है। NTA के मुताबिक बकरीद की छुट्टी की तारीख में तब्दीली को देखते हुए ये फैसला किया गया है। 5 रोज़ा सालाना हज मगरबी एशिया में तनाव के दरमियान आज से शुरू हो रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया से 10,60,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से हज का सफ़र शुरू करेंगे और मिना में क़याम करेंगे। मिना में रात गुजारने के बाद आज़मीन हज कल अलसुबह अरफात के लिए रवाना हो जाएंगे। इस साल हज में भारत से तकरीबन 1,75,000 हाजी शिरकत कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने रियासत में शदीद गर्मी और लू का असर जारी रहने का इंतबाह जारी किया है। लखनऊ के मौसम साइंस मरकज के सीनियर साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि रियासत में गर्मी का कहर बढ़ने का इम्कान है।
2: जैसा कि पिछले दिनों

घर आंगन कार्यक्रम के सभी श्रोता पंचन का प्रतिभा त्रिपाठी के नमस्कार। आशा करी थन हमारे सभी श्रोता पंच सपरिवार स्वस्थ और प्रसन्न हुई हैं और साथ ही गर्मी से बचाव के हर प्रयास अपनाए रहे हुई हैं। काहे कि देखो इतनी बखत गर्मी अपने चरम पे आए और हम सभी का पता है कि आज उसे नौतपा शुरू हुई गवा है और भाई ऐसे में तापमान तो बढ़बे करी। अच्छी बात देखो यह है कि यह जो संचार युग है, संचार के माध्यम हम सब है के पास है, हम सब कोनो कोनो माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो यही से कहा है कि हम सब जागरूक भी बन रहे हैं और नौतपा के बारे में काफ़ी लोगों का जानकारी है। और जानकारी भाई देखो सबका यह है कि यह जो नौतपा के समय है या वही समय है जब सूरज देव जौन है वही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो यही से होता है कि सूरज की किरणें जौन है वही सीधी पड़ती हैं और जौनों के कारण तापमान में बहुत तेज़ी से वृद्धि होते, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जब समस्या के कारण पता होते तो वही के समाधान भी आसान हो जाते हैं। और पंचों खगोलीय और पौराणिक मान्यता की बात करी, साथ ही साथ अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो यू

नौतपा के तपन जौन है ना, वो बहुत जरूरी आए, और या कह सकित हन कि एक तरह से यह हमारे पर्यावरण का संतुलित करे के भी काम करत है। अब देखो ये कि पीछे जो कारण है वही का ऐसे समझा जा सकते हैं कि जो बढ़त तापमान के कारण बहुत से ऐसे कीड़ा मकोड़ा जो का कि वायरस भी कहा जाते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य खातिर खेती पाती बदे जनजीवन का नुकसान पहुँचावत हैं, तो उनकी वृद्धि पर रोक लग जाते हैं, वही नष्ट हो जाते हैं इतने तापमान में। हाँ तो भाई देखो पर्यावरण का संतुलन हो जाते कि नहीं ऐसे। और यू तापमान जो है अच्छे मानसून माने कि अच्छी बरखा के संकेत भी देते हैं। तो देखो यू गर्मी जोन है हमारे प्रकृति हमारे पर्यावरण के हिस्सा है, बस जरूरत है कि हम यही से तालमेल बैठाए के चली। गर्मी से जो होए वाले वही के दुष्प्रभाव हैं तो वही से बचे बदे अपन खान पान सही रखी, हल्का सुपाच्य ताज़ा भोजन करी, हल्के और सूती वस्त्र पहनी। हाँ इतनी वक्त देखो बहुत ज़्यादा जो है ना वही गाढ़े रंग के या बहुत चमका चमकी वाले कपड़ा जोने से कि पसीना नहीं भाई सूख पावत है, ऐसे वस्त्र जो है पहनने से बचे का चाहिए। हाँ ये के साथ बहुत खड़ी धूप में बाहर ना निकले के चाहिए और खाली पेट बाहर ना निकलो। कोशिश करो कि भाई जब बाहर निकले का हो तो अच्छे तरह से अपन शरीर जो है मूड़ वूड ढांक ढूंक करके तब है बाहर निकले का चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि देखो अपन बचाओ तो हमका कर ही का है, मगर हर को बच सके या गर्मी से वही के लिए ज़रूरी है कि भाई हम अपने आसपास जितना संभव हो सके उतना बिरवा जरूर लगाई है। और या तो भाई प्रयास हम बार बार कहबे करते हैं सबका करे के चाहिए, और भाई मानसून देखो आवे वाला है तो बिरवा लगावे की तैयारी हमका पहले है से कर लेवे का चाहिए। तो चलो या तो बात भाई भाई आज के गर्मी और नौतपा के बारे में, और साथ ही साथ आपका बतावा चलिए कि आज जो उन्हें गंगा दशहरा भी आए, और पौराणिक मान्यता यह कहती कि यह दिन जो उन्हें गंगा मैया स्वर्ग से धरती पर अवतरित भई रही, तो यह से यही का गंगा अवतरण दिवस भी कहा जाते। और आज के दिन बहुत से लोग जो उन्हें वही गंगा माँ स्नान करत हैं, दीपदान करत हैं, गंगा मैया के पूजन करत हैं। तो देखो हमका भाई अपनी आस्था के साथ साथ अपने पर्यावरण के भी ध्यान रखे का है। हम यह सब कुछ करी मूल ध्यान रखी कि कोनो भी ऐसा काम न करी जोने से गंगा के पवित्र जल जन है वही दूषित हो, और गंगा के नहीं बल्कि कोनो भी जल स्रोत जो है उनका दूषित हमका नहीं करे का है। हमका यह प्रयास करे का चाहिए, और यह प्रयास के साथ यह संकल्प के साथ आज गंगा दशहरा के भाई पर्व पर चलो हम सब पहले सुन लीजिए एक बढ़िया से गंगा गीत। स्वर है विंध्यवासिनी त्रिपाठी।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: इंडियन पोटाश लिमिटेड IPL जरवल रोड बहराइच
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया
1: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर
0: मानिक बेकर्स इंडस्ट्रियल एरिया बस्ती
1: UPSRTC देवरिया
0: बलरामपुर चीनी मिल बभनान गोंडा
1: कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर
0: ग्राम्य विकास विभाग विकास भवन कुशीनगर
1: चंद्रकला एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट सेंट मैरी इंटरनेशनल स्कूल 167 सिद्धवर फरिंदा महाराजगंज
0: पटेल हॉस्पिटल भुजैनी संत कबीर नगर
1: राजा वीरेंद्रनाथ सिंह डिग्री कॉलेज भिंडगा श्रावस्ती
0: गंगा नेशनल पब्लिक स्कूल परसा भदवारिया सिद्धार्थ नगर।
2: श्रोता बंचो देखो हम अपने आसपास समाज में परिवार में कई बेर देखी थन कि कुछ मनई ऐसे होते हैं जो उन हर हाल में खुश रहते हैं और वह दूसरी तरफ कुछ मनई ऐसे होते हैं जो उन्हें कह कि भाई हमेशा जो उन्हें अपने दुख के रोने रोवत रहते हैं। तो आपका आज हम बताई थन कि अगर हम चाहिए थन कि हम सुखी रही हैं तो वही के भाई द्वी मूल मंत्र हैं। तो आज हम अपने कार्यक्रम में देखो ये द्वी मूल मंत्र आपका बता रहे हैं जो ने हमने सब श्रोता पर जो ने वही हमेशा सुखी रहें खुश रहें। तो वही कहा है कि न कौनो से भाई अपेक्षा करो और न कौनो के उपेक्षा करो। होत का है ना कि हम पंचन अपने जीवन में कऊ बेर बहुत सारी उम्मीद सपने अपेक्षा पाल ली थे ना और जब वही हमार पूर्ण नहीं होते है कि भाई हम मान लो कोनो रिश्ता है उसमें हम वही के लिए कुछ कर रहे हैं तो बस हमका ये उम्मीद होते है कि भाई वह हमारे लिए कुछ करे। तो यह जो अपेक्षा है ना और जब ये पूर्ण नहीं हो तो बहुत दुख होते बहुत कष्ट होते मैंने ही कहा और यह दुख के मूल कारण है। तो यह से भाई देखो हम सबका यह कोशिश करे का चाहिए कि हम हमेशा निस्वार्थ भाव से अपन कर्म करी अपन फर्ज पूरा करी और बिना कोनो उम्मीद के वही के बाद अगर हमका कुछ मिल जाते तो वही से बहुत खुशी होती। कहा ऐसे कि भाई देखो हम उम्मीद तो करें नहीं बिना उम्मीद के जब कुछ मिल गया तो खुशी खुशी होती और वहाँ जब हम पहले से भाई आशा पाले रही थे और पूर्ण नहीं हो तो फिर दुख तो होबे करते और साथ ही साथ रिश्तन में खटास भी आ जाते हैं। तो यह से हमका यह कोशिश करे का चाहिए कि हम कौनों से भी कौनों अपेक्षा ना करी और यही के साथ एक और बात कहा चाहिए थन कि भाई हमका कौनों के उपेक्षा भी न करे का चाहिए। जो भी रिश्ते हैं हमारे घर परिवार में है चाहे समाज में है तो हर रिश्ते के एक उचित मान सम्मान और स्नेह होते तो हमेशा वही का कोशिश करे का चाहिए कि हम दे कौनों मनई हमरे वजह से उपेक्षित ना महसूस करे। कहे से कि पता है यह उपेक्षा जो उन्हें ना एक तरह से अकेलापन ही है और यही से एक दीमक के तान समझो जो मनई का अंदर ही अंदर जो उन्हें खोखला कर दे थी और वही हमेशा दुखी ही रहा थे। तो अपनी तरह से यह कोशिश करे का चाहिए कि भाई हम कौनों का भी उपेक्षित ना महसूस करवाई। और आज हम अपने कार्यक्रम में अपने श्रोता पंचन का एक कहानी सुनवावे जा रहे हैं और यह कहानी कुछ ऐसे है ताना बाना का लय के बुनी भई है। तो चलो आपका बता रहे हैं कि यह कहानी के शीर्षक आए खारिज दाखिल और कहानी है रश्मि शुक्ला बहनी के। तो चलो सुना जाए।

0: या कहानी खारिज दाखिल।
1: प्रधान काकी रामा देवी पंचायत भवन पहुंची और हुआ मौजूद सब मनईन ते कहन कि आज यह सभा यही बड़े बुलावा है कि सब जन जान लें कि इतने दिन ते जौन कोशिश करित रहे वही माँ हम सफल हो गए हैं। सुनके सब मनईन के मुंह अचरज ते फैलिए कि प्रधानिन का का बतावेक है। को कुछ पूछत वही ते पहले है हुई कहन हम कईयों साल ते प्रयासरत रहन कि यहाँ बिटियन के बड़े इंटर और डिग्री कॉलेज खुल जाए। हम शासन का लिखा रहे कि यही जवार में हाई स्कूल तक तो बिटेवन के बड़े स्कूल हैं मुला आगे पढ़े बड़े उनका कम ते कम 10 कोस दूर जाए पड़त है। यही ते ज़्यादातर बिटिया पढ़ी नहीं पाती हैं। लड़कन केर तो कौनी बात नहीं उनके बड़े दूसरे गांव में कॉलेज हैं मुला बिटियन के बड़े एक कॉलेज चाहिए। सरकार हमरी अर्जी पर मौका मुआयना करवाए रहे और वही के बाद यहाँ इंटर और डिग्री कॉलेज खोले के अनुमति मिली गई है। अब खाली जगह के व्यवस्था देखे है। सुन के हुआ मौजूद रामधनी कहन कि जो सब जने माने तो हमार सलाह है कि इंटर कॉलेज तो हाई स्कूल जहाँ पर है हुए और कमरा बनवाए के खोल दिन जाए और डिग्री के बड़े हम सड़क किनारे वाले अपन 2 बीघा ख्यात दे दिया। देखते द्याखत कुछ औरों मनई अपन जमीन दई दिन है यही तरह कॉलेज के बड़े जरूरत भर के जमीन मिल गए। फिर बड़ी देर तक आगे कैसे कार्यवाही की जाए का जरूरी है गांव में कौन मनई का करी इस सब बातन में चर्चा है। यही बीच में रामधनी चिनौटी ते तमाखू और चून निकारन और फिर वही का बाई हथेली में धर के दाए अंगूठा ते रगड़न और फिर फटकार के एक चुटकी अपने मुँह में धरन और फिर काकी ते कहन ल्यो भौजी खैनी ले लो। रामा देवी खैनी लेके वाठन के नीचे दबा लिन्हें। उनके साथ उनके पोता मोहन रहे वो कहस अरे अजिया तुम तम्बाखू खाती हो यह आदत खराब है एका छाड़ दो। तू ही बोली बबुआ यह एक ऐब है जो नहीं छूटत है यो जान लियो कि हम लड़कई ते खैनी खा रहे हैं हमरे भौजी खौती रहे तो उन्हें तेमहू सीख लीन। जब ब्याहे के बाद हियाँ ससुरे आयन तो तम्बाखू के तलब ला गए तो वही समय ससुर की चुनौती तो चुरा के खाइत रहे। एक दिन बड़ा बवाल भा कहे थे कि हमका तम्बाखू चुरावत देख लीन रहे। जब तुम्हारे बाबा का मालूम भा तो फिर वही हमका चून तम्बाखू ला दीन रहे और फिर एक चांदी के चुनौती खरीद दीन रहे वह बहू हमरे लगे है। मोहन पूछेस तो का बाबा तम्बाखू न खात रहे ना ही वही पान में जर्दा खात रहे और हमका खैनी माने जो नहीं पसंद रहे। अपने मनई की याद में उनकी आंखी भरी आई। वही समय मोहन पूछिस हाँ तो को तुमका रोकेस नहीं किया नुकसान करते है। रोकेस तो रहे मुला यह लत बड़ी खराब होती है जब परी गए तो लाख कोशिश करे बदियू न छूटी। मुला बबुआ तुम न खायो अब हमार तो उम्र गुजर गए है खात खात अब का नुकसान करी। सुन के रामधनी हंसी करें कि लड़काई का प्रेम अब कहो कैसे छूटे। सुन के सब मनई हंसे लाग तो काकी बनावटी गुस्सा जाहिर कीने। यही तरह राजी खुशी पंचायत समाप्त हो गई। रामा देवी जब ते गांव केरी प्रधान बनी रहें तब ते हुई गांव के विकास के बारे बहुत काम कीन्हन रहे। गांव के किनारे पक्की सड़क गाँव में खरंजा चापाकल पानी के टंकी अस्पताल आंगनबाड़ी राशन बुजुर्ग पेंशन विधवा पेंशन सब योजना व व्यवस्था उनके प्रयास से लागू भई रहे और सही मनईन का वही का लाभ मिला रहे। यही ते गांव वाले उनते बहुत खुश रहे। यही ते हुई दूसरी दफा फिरते प्रधान बनी रहे। पहली बार तो उनके मनई नारायण काका के ना रहे पर गांव वालन के जोर दे पर लड़ी रहे। दूसरी बार महिला सीट रहे तो वही फिर लड़ी और प्रधान बनी गई। आगे जब पौरुख घटिगा तो प्रधानी तो नहीं लड़ी मुला उनके हेत व्यवहार से पूरा जवार खुश रहत रहे और उनका वही तरह सम्मान देत रहे। मुला कहा जात है ना कि ऊपर वाला बड़ा चमत्कारी हवे जही के चलते राजा का रंग और रंग का राजा बनत द्यार नहीं लागत है। जीवन के पन्ना इतने धूसर रहती हैं कि वही के बड़े कुछ पहले ते अनुमान नहीं लगावा जा सकत है कि वही में लिखा का है। विधाता इतनी कुशलता ते समय का पहिया नचावत है कि पता नहीं चलत कि कही की गाड़ी कहाँ अटक जाई। रामा देवी के सथ्यो यह कुछ भा कि जौन गांव जवार का मने उनके आगे पाछे घूमत रहे वह उनके भलाई और उपकार का भुलाए के आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे सबकी जिंदगी से हुई बेदखल हो गई। भा का कि काकी माने रामा देवी के स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरे लाग। पहले तो हुई उम्मीद

केर तकाजा समझन। मुला जब उनका खाए पिएम तकलीफ होए लाग, कुछो खाएं तो मुँह कल्लाए लागे, तो फिर वही गांव के अस्पताल में डॉक्टर का देखन। डॉक्टर देखेस कि काकी के मुँह में घाव रहे। डॉक्टर दवाई दीनेस और कुछ और जाँच करे के लिए शहर भेजेस। और जस डॉक्टर का अंदेशा रहे वह भा उनका कैंसर रहे। डॉक्टर कहेस कि शुरुआत है, सही ते दवा पानी करियो तो सब ठीक हो जाए। मुला आप खैनी छोड़े परी। खैर काकी के खैनी छूट गए और बहुत कुछ छूट गया रहे। उनकी बीमारी के चलते मनई उनका छूत है समझे लाग रहे। अब गांव का मनई उनते कन्नी काटे लाग। गांव तो छोड़ो, घर के लड़का बहुरिया तक उनका दिन रात कोसे लाग। अपने लड़का बच्चा उनके लगे न जाए कि कहूँ वह बीमारी उनका न हो जाए। जब ते काकी यही घर में ब्याह के आई रहे, घर का बड़ा कमरा और सिरहाने वाला पलंग उनके कब्जे में रहे, जहाँ उनके हर चीज करीने ते हर जगह पर रखी रहत रहे। मुला यही बीमारी के चलते हुई घर के बाहर चबूतरा में एक कमरा जिमा कबो घर का नौकर रहत रहे, वही में एक तखत डार के रह लागी। उनके ख्यातन के देखभाल करे वाले हरिया के दुल्हिन मऊहा के हाथे सुबह शाम उनका खाना भिजवा दिन जात रहे, मटकी में पानी भरा रहत रहे, जहते हुए खुदे निकाल के पी लेती रहे। जब कबो ई दर्द ते कराहे तो को उनका दर्द न बटावे, उल्टा हंसी करे कि लड़काई क्या प्रेम है तो अब वही का फल भुगतो। सबके ताना सुन सुन के उनकी आँखिन ते आंसू निकल आवे। मुला को धीर धरैया न रहे। वही घर माँ उनके पोता एक मोहन रहे, जौन उनका चाहत रहे। मुला अब वहो शहर में वकालत पढ़त रहे और उनके लगे न रहत रहे। हाँ जब वो आवत रहे तो काकी के जीव थोड़ा बिलम जात रहे, वही की आस में उनके दिन गुजरत रहे। वही बस भगवान ते एक विनती दिन रात करती रहे कि हे दीनानाथ, हमार दुख हरो, हम पर बड़ी भारी विपदा आ पड़ी है, अब तुम ही कष्ट निवारो। और फिर शायद सही में भगवान उनके सुन लीनेस रहे और उन पर दया भय। भाइयो कि एक दिन महुआ की जगह उनके बिटिया राधा काकी के बरे खाना लेके आई। उनके हालत देख के तो वही का करेज बाहर आ गया कि पूरे गांव की काया पलट करे वाली काकी के इतनी बुरी हालत है, कितना एहसान फरामोश है यो जमाना। वह धीरे पुकारे, काकी, ओ काकी। बहुत दिन बाद यही तरह मीठी आदर भरी आवाज सुन के तो वे कुछ बोल ही न सकी, उनके गला रुंधिगा। राधा कहस, काकी तुम्हार यह हालत, तुम यहाँ अंधेरे में काहे बैठी हो। काकी बड़ी मुश्किल से जवाब दीन, बिटिया यो तो दुनिया का दस्तूर है कि मनई उगत सूरज का अर्घ चढ़ावत है और हमार सूरज तो अब अस्त हो चुका है, चंद सांसे हैं, जाने कब चुक जाए। कहत कहत तुई खांसे लागी तो राधा दौड़ के उनका पानी लाई और कहस, अब ज्यादा ना बोलो, लो खाना खा लो। जब तक काकी खाना खाएन उतनी देर में राधा पूरा कमरा साफ कर दीनेस। कमरा का झाड़ पहुँच के बिस्तर के चदरा बदलेस, उनका दूसर धोती पहनाएस। आधा घंटा के मशक्कत से पूरा कमरा जगमगा उठा। काकी वही का खूब आशीषिन। राधा फिर 2 महीना केरी गर्मी के जो छुट्टी रहे वही माँ हर दिन उनके लगे आवे लाग। उनका ख्याल रखे, समय पर दवा और खाना दे। खान पान और दवाई ते 2 महीना में उनके हालत में काफ़ी सुधार आवा। दरअसल काकी के सबसे बड़ा रोग तो उनके अकेलापन रहे, निराशा के मारे हुए अंदर अंदर घुटती रहे। राधा के आवे और बोले बतियाए ते मन में जिए के आशा लागे लाग, मन के खिन्नता दूर हो लाग। राधा के प्रयास ते हुई कमरा ते बाहरों निकले लागी। धीरे धीरे काकी केर आत्मसम्मान वापस आवे लाग। यही बार जब मोहन छुट्टी में घरे आवा तो अजिया के हालत देख के बहुत खुश भा। रामा देवी वही का बताएन कि यह सब राधा बिटिया के कारण हो पावा है, बहुत सुघर बिटिया है, रूप गुण सब मा अब्बल है, भगवान वही का सब तरह ते सुखी करे, यह कामना है। वही समय राधा काकी के बरे खाना लेके आई तो मोहन तो वही का दिखते रहेगा, वही का रूप आखिन के रस्ते वही के मन में उतरेगा। अब राधा जब रामा काकी के लगे आवे तो मोहन कौनो न कौनो बहाने हुए पहुंच जाए। धीरे धीरे वे दोनों बातें करे लाग और फिर घर के बाहरों मिले लाग। ऐसी काकी ठीक हो लागी तो मन इनके समझ में आ गा कि उनके बीमारी कौनो छूत के बीमारी ना आए, तो फिर मनई उनते मिले जुले लाग। घर वाले उनके जो उन दयावर जाठ रहें, लड़का बहुरिया रहें, फिरते उनका आदर सम्मान दे लाग, जही का उन पर बहुत नीक असर भा और पहले

0: ले वाली रौनक उनके मुंह पर लौटी आई रहे। एक दिन घर में सब जने अंगने में काकी के साथे बैठी रहे, हंसी ठिठोली हो ही रही रहे। वही समय मोहन राधा के साथे घरे आए और सबते कहन कि हम राधा ते शादी करा चाहिए थे। सुन के सबका सांप सूंघेगा। कुछ देर तक तो को कुछ न बोला, फिर मोहन के बापू रमन कहन, का कहा थो राधा ते ब्याह करी हो? यो संभव नहीं, गली के धूर सिर माथे नहीं लगाई जात है। तुम्हार ब्याह हम अपनी बिरादरी और बराबरी में करब, समझ लियो। बापू के बात सुन के मोहन के जवान खून खौल उठा, बोला तो ठीक है, हम यो घर छोड़ के जा रहे हैं और राधा ते ब्याह कह के लखनऊ में रहब और हुए वकालत करब। अब जहिका हम ते संबंध राखे खो वो हमरे लगे खुद आवे, नहीं तो जयराम जी की। इस तरह की बातें सुन के काकी कहन, चुप, सब जने चुप हो जाओ। हम थोड़ा बीमार का परिगन कि तुम समझने हमका मरा मान लीने हो? मुला, अबे हम जिंदा हन और यो घर हमारा है, तो यही मा फैसलो हमार चली। देखो रमन, अब मोहन बालिग है तो वही का अपनी मर्जी ते शादी करे को रोक नहीं सकत है। फिर राधा पढ़ी लिखी गुण ढंग में सब तरह ते मोहन के काबिल है, तो उचित है कि दूनहन क्या ब्याह राजी खुशी कह दो। मगर अम्मा जवार में मनई का कही और बिरादरी में नकटई हुई सो अलग। सुन के काकी कहन, का कही, अरे थोड़े दिन हो हल्ला कह के सब अपने अपने काम में लाग जाइए। हमका अपने लड़िका के सुख देखे खे, मन इन क्यार तो काम ही आए। जरत मड़ई महात तापो, यो जान लियो कि अपने मोहन का राधा ते बड़ी के बिटिया ना मिली। सुन के रमन काकी के आगे हथियार डाट दीन है और धीरे कहन, ठीक है अम्मा, जस तुम कहो। काकी तुरते राधा मोहन का आखिन ते इशारा करें तो दोनों फौरन उनके पैरन में झुकी गए। काकी मगन हुई के गावे लागी तो उनके दोनों बहुरिया ढोलक मंजीरा उठा लाई। अंगने में बोल गूंजे लाग कि सुईता कौन से पुण्य करे तूने, रघुबर श्री बनरा ब्याहन आए। फूल बगिया फूल चुनन को गई, श्री राम ते नयन मिले तबही। शिव गौरा आशीर्वाद दियो, रघुबर श्री बनरा ब्याहन आए। रघुबर श्री बनरा ब्याहन आए। घर में एक बार फिर ते हंसी ठट्ठा केर माहौल बनेगा। रामा देवी के जिंदगी ते खारिज सुख फिरते दाखिल हो गए रहें।
1: तो अभय श्रोता पंचन सुनिन रश्मि शुक्ला बहनी के कहानी खारिज दाखिल। तो आपका यह कहानी कई लाख हमका जरूर बतायो ईमेल और पाती के माध्यम से। और भाई देखो, कहा जाता है ना कि अगर परिवार में मनई समझदारी से काम ले तो पूरे परिवार में हमेशा हंसी खुशी के माहौल बना रह सकते हैं और कोनो भी समस्या हो वही कर सही और अच्छा समाधान भी निकल आवत है। हाँ, तो देखो अब भाई ब्याह तो अच्छी बात है कि अंत भला तो सब भला, उनका ब्याह भी तय हुई हुआ। मतलब आजकल तो देखो लगन बंद है, लेकिन नकटा के लिए तो भाई कोनो समय नहीं देखे का है। तो चलो बस यह है बात पर हम अपने सब श्रोता पंजन का सुनवा रहे हैं बढ़िया से नकटा। स्वर है अलका चतुर्वेदी बहनी के यार।

0: तो भाई देखो यार, लोकगीत सुन के हमरे तो बहुत हंसी आवत रही और हमरे श्रोता पच भी जरूर भाई प्रसन्न भाई हुई है। और ये लोकगीत वाले जो बलमा रहे सच्चे बहुत किफ़ायती है ना, कि बत्तियों नहीं जरूरत अपने गाड़ी में मोमबत्ती से काम चलावत रहे। लेकिन देखो भाई, या तो खैर लोकगीत की बात होगी, लेकिन हम तो अपने सब श्रोता पंचन से यह कहा चाहते कि पानी जो है वही की बचत जरूर करो, वही का किफ़ायत से इस्तेमाल करो। काहे से कि जो जल है ना वह जीवन है, जब उई रही तब हमार काल रही। तो पानी हम सबका जरूर बचावे का है और यही के लिए बस छोटे छोटे से कुछ प्रयास हमका भाई करे के चाहिए। जैसे कि मान लो हमारे घर सभी के घर में देखो दोनों बखत भोजन बनत है, तो वही में जौन कुछ भी पानी निकलत है, दाल चाउर हम धोए रहे हैं, तरकारी धोए रहे हैं, तो वही का नाली में बहावे से बढ़िया है कि वही का भाई कोनो बर्तन में इकट्ठा कर लियो और जौन आपके बिरवा हैं, पेड़ पौधा हैं, चाहे वो क्यारी है, वही में डाल दो। तो वही से एक तो पानी भी भाई पेड़न का मिल जाए और बहुत पौष्टिक होते हुए पानी। यह तरह से देखो एक बात और भी कह सकते थे कि जैसे हम पंचन कपड़ा खंगाली थन कचारी थन, तो जौन सबुनहा पानी निकले थे वह का ना बहाओ। वही से जौन हराहा गोरू है जहाँ रहते हैं वही जगह की साफ सफाई में काम आ सकत है। यह तरह से आजकल देखो घर घर में भाई, अब तो गांवन में भी एसी है, फ्रिज है और वही जौन पानी साफ करे वाली कौन मशीन होती जो का कि आर ओ कहा जाते ना, तो उन सब में से भी कुछ पानी निकलत है। तो वह पानी का भाई हम इकट्ठा कर सकी थन बजाय बहाए के कोनो बर्तन में इकट्ठा कर लो। और घरे के जौन काम है बर्तन साफ करे का है या धोवा पोछा करे का है, तो वही पानी के इस्तेमाल कीन जा सकत है। तो इन सब तरीके से भाई हम या पानी के बचत करी और जब यह पानी का हम अपने खेतन में देव ना, तो भाई देखो कितने बढ़िया करेला निकली है और फिर वही करेला से चटनी बनायो। और यह कुछ भाई तरह के लोकगीत सुनवावे वाले हैं मुलेक अंतराल के बाद।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 अप्रैल 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
2: इंडियन पोटाश लिमिटेड, IPL, जरवल रोड, बहराइच,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, बलिया,
2: बलरामपुर चीनी मिल, बलरामपुर,
1: मानिक बेकर्स इंडस्ट्रियल एरिया, बस्ती,
2: UPSRTC, देवरिया,
1: बलरामपुर चीनी मिल, बभनान, गोंडा।
2: कार्यालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
1: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन, कुशीनगर,
2: चंद्रकला एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट, सेंट मैरी इंटरनेशनल स्कूल, 167 सिद्धवर फरिंदा महाराजगंज,
1: पटेल हॉस्पिटल भुजैनी संत कबीर नगर,
2: राजा वीरेंद्रनाथ सिंह डिग्री कॉलेज भिंडगा श्रावस्ती,
1: गंगा नेशनल पब्लिक स्कूल परसा भदवारिया सिद्धार्थनगर।

तो भैया देखो, हम तो आप सबका यह कहबा कि करेले की चटनी बनाओ, मोलू आजकल के जो मौसम चल रहा है तो हिमा तनुक पुदीना जरूर डालो, है ना। काहे कि पुदीना जो है वही अपने भाई शरीर का तनुक ठंडा राखत है। और यह के साथ हमारे कार्यक्रम की बिरिया भी समाप्त हो रही है, लेकिन चले से पहले आप सबसे इतना जरूर कहबे कि भाई आप अपन प्रतिक्रिया हमका मेल के द्वारा जरूर भेजो। और मेल भेजे के लिए हमारे मेल आईडी भी लिख लियो, हमारे मेल आईडी है gharanganairlko@gmail.com। और यह के साथ आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी का देव अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

बहनें अभी सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

भुज, द प्राइड ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। सुनना चाहते थे गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक। सरोज चौक अमरावती से कमरुला ठेकेदार मोहम्मद सईद, नसीम बेगम, शाहिद भाई, आसिफा परवीन। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शूरवीर से, गायिका कविता कृष्णमूर्ति। सुनना चाहते हैं सांडी जनपद हरदोई से प्रिंसी सिंह और विजय लक्ष्मी कुशवाहा। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

कविता कृष्णमूर्ति के साथ आपने सुनी मोहम्मद अजीज की आवाज. फिल्म का नाम था शूरवीर. कार्यक्रम के लिए अगला पत्र, अगला ईमेल आया है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से. विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी का. आपने एक संदेश भी लिखा है, अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी. बहुत सुंदर विचार है. आप सब सुनना चाहते हैं साथी फिल्म का गीत जिसे गाया मुकेश और सुमन कल्याणपुर ने.

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए। इस कार्यक्रम में अगला ईमेल आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आपने एक संदेश लिखा है, जय हिंद भारत के रखवालों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना और रक्षा प्रणाली में जुटे हुए सभी जवानों को शत शत नमन। हम सुकून से रह रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। फौजी गुरमीत सिंह, कोट सदर खान मोगा के साथ साथ सभी फौजी भाइयों को संगीत समर्पण। आप सब सुनना चाहते हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म का गीत जिसे गाया श्रेया घोषाल ने।

कार्यक्रम में अगला ईमेल आया है किशन कुमार का हरदोई उत्तर प्रदेश से। आपने संदेश भी भेजा है। सभी लोगों से निवेदन है कि गर्मियों में पानी खूब पिए, ठंडी चीज़ों का सेवन करें, हो सके तो दिन में सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक घर से बाहर न निकलें। अपना ख्याल रखें और पशु पक्षियों का भी ख्याल रखें, उनको भी दाना पानी देते रहें। बहुत अच्छा संदेश है आपका। और आप सुनना चाहते हैं शेषनाग फिल्म का गीत, जिसे गाया अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर ने।

ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। आप सब सुनना चाहते हैं जख्म फिल्म का गीत, जिसे गाया अलका याग्निक ने।

आप सुन रहे थे अलका याग्निक का गाया फिल्म जख्म का गीत, और इस गीत के साथ ही आज का जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 2:15 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है।

0: बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंत राय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय

0: बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में जायद फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और उनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय जायद की फसलें आपके खेत में खड़ी हैं, जैसे मक्का है, मेंथा है, मूंगफली है, उर्द मूंग की फसल है, ढेर सारी सब्जियां हैं। फसल की भूख मिटाने के लिए नैनो उर्वरकों का प्रयोग कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ क्षेत्र प्रबंधक इफको रायबरेली डॉक्टर विनोद कुमार सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो नए जमाने की खाद है, स्मार्ट खाद है, नैनो उर्वरक हैं, इनका

0: लोग जो जायद की फसलें हैं सब्जियों में कितना फायदेमंद है।
1: किसान भाइयों बहनों नमस्कार। नैनो उर्वरक जो स्मार्ट उर्वरक हैं वो इसलिए स्मार्ट उर्वरक कहे जाते हैं कि ये साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं। जो अवधारणा है कि जहां पोषक तत्वों की जरूरत होती है वहीं पर ये जाकर के पहुंचते हैं और इस तरह से फसलों को फायदा पहुंचाते हैं।
0: जो पारंपरिक उर्वरक हैं उनसे ये अलग कैसे?
1: उनसे अलग इस मायने में है कि पारंपरिक उर्वरक खेतों में बिखेर कर दिए जाते हैं और उसमें पोषक तत्व के अलावा भारी धातुएं भी मिली रहती हैं जो कि जमीन में DAP पोटाश के माध्यम से पोषक तत्व तो पौधा ले लेता लेकिन भारी धातुएं जमीन में रह जाती हैं। और यूरिया की बात करें तो पोषक तत्व तो जितना 25-30% पौधा लिया वो तो पौधा ले लेता लेकिन बाकी जो है गैस बन करके वायुमंडल में या लीचिंग द्वारा हमारे पानी की गुणवत्ता को खराब करके आज खतरनाक स्तर पर हमारा प्रदूषण बढ़ चुका है। अलग इस मायने में है कि इसको हम पौधे को देते हैं और वो जमीन में बिखेरते हैं। दूसरे इसकी उर्वरक उपयोग दक्षता बहुत अधिक है, 90% है और जो हमारे परंपरागत उर्वरक हैं वह 20-25% उर्वरक उपयोग दक्षता है। इस मायने में नैनो उर्वरक परंपरागत उर्वरकों से अलग हैं।
0: इस समय चूंकि खड़ी फसल है तो खड़ी फसल जैसे मक्का है, मेंथा है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, इसमें इन नैनो उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें, कब करें, कितना करें?
1: जो जायद की फसलें हैं वो ऐसे समय में लगाई जाती हैं जबकि तापमान भी अधिक होता है और मिट्टी में हमेशा नमी की कमी बनी रहती है। ऐसे समय में नैनो उर्वरक वरदान है क्योंकि जमीन में डालने वाले उर्वरक जो डाले जाते हैं, हमारे यहाँ तापमान अधिक होने से भूमि में जीवांश कार्बन भी बहुत कम होता है क्योंकि बहुत जल्दी जो जीवांश मिलाए जाते हैं वह जो है बैक्टीरिया और एंजाइम की एक्टिविटी कारण वह खप जाते हैं और कम हो जाते हैं। हमारे यहाँ जीवांश की मात्रा बहुत कम है और रासायनिक उर्वरक जो हम भूमि में मिलाते हैं पौधा ले नहीं पाता। दूसरे तापमान अधिक होना, मिट्टी में नमी की कमी होना, उससे भी जब जीवांश भी कम है तो रासायनिक परंपरागत उर्वरक पौधे उपयोग नहीं कर पाते। ऐसी जगह पर नैनो उर्वरक जायद फसलों के लिए वरदान है क्योंकि उनकी ज़्यादातर जायद फसलों मूंग है, उड़द है, लोबिया है या कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, मूंगफली है, इसमें पत्तियों का क्षेत्रफल भी काफ़ी रहता है। और अगर हम छिड़काव करते हैं नैनो DAP 45 दिन की अवस्था तक DAP की आवश्यकता पौधों को पड़ती है
0: जी।
1: नैनो यूरिया फ्लावरिंग के पहले, फूल आने के पहले तक पौधों को आवश्यकता पड़ती
0: सभी
1: है
0: सभी फसलों में।
1: और खड़ी फसल में अगर जिंक की कमी है और कॉपर की कमी है खासतौर से तो वो हम नैनो उर्वरकों के द्वारा ही दे सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है। और जिंक हुआ जो कि क्लोरोफिल बनने से लेकर के ऑक्सीजन जो एक हार्मोन होता है जो अग्रभाग पौधों का बढ़ाता है उसके बनने में बहुत बड़ा योगदान जिंक का होता है, कई काम होते हैं। और कॉपर है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना या जो पौधों में ऊर्जा का केंद्र होता है किसी भी जीव में माइटोकांड्रिया उसका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। और कॉपर को हम नैनो कॉपर के माध्यम से अगर जायद फसलों में छिड़काव करते हैं इसका बहुत अच्छा लाभ किसानों को मिलेगा।
0: डॉक्टर साहब, नैनो उर्वरकों की बात चल रही है जायद फसलों में तो कौन कौन से उर्वरक हैं?
1: अभी इफको ने 4 उर्वरक किसान भाइयों के लिए लाए हैं। नैनो यूरिया प्लस, इसमें 20% नत्रजन है जो कि हम यूरिया के माध्यम से देते हैं। नैनो DAP है जिसमें कि नत्रजन 8% और 16% फॉस्फेट है। नैनो जिंक और नैनो कापर सूक्ष्म पोषक तत्वों में इफको इस समय किसानों के लिए उपलब्ध करा रही है।
0: डॉक्टर साहब, जैसे मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आपूर्ति के लिए आपने बताया कि जो भी जायद की फसलें हैं चाहे मक्का है, मेंथा है, गन्ना है, मूंगफली है, उड़द मूंग है या सब्जियां हैं
1: जी,
0: उनमें 45 दिन तक नैनो DAP का प्रयोग कर सकते हैं
1: जी,
0: और नैनो यूरिया तरल का प्रयोग फूल आने के पहले तक कर सकते
1: 65 दिन की अवस्था तक कर सकते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जब तक वो फसल ले रहे हैं, फसल की हर तुड़ाई के बाद फिर वो नैनो यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए।
0: आजकल जैसे भोजन में नमक की जरूरत है उसी तरह जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी फसल और खेत को आवश्यकता है
1: जी, जी।
0: तो ये जो जिंक है और कॉपर है
1: जी,
0: इसकी कमी कैसे पहचाने और इसका प्रयोग जायद फसलों में कैसे करें किसान
1: जी, जी। जिंक की कमी तो किसान भाई आसानी से पहचान सकते हैं। अभी खरीफ आ रहा है और धान का पौधा बता देता है, सारे किसान भाई जानते हैं कि

0: उनकी कमी में खैरा रोग लगता है। खैरा बेसिकली वो कोई रोग नहीं है मूलतः, वह तो एक लक्षण प्रकट करता है जिंक की कमी का, और उससे धान की पैदावार बढ़िया नहीं हो पाती, पौधे ग्रोथ नहीं होती, ये धान ही बता देता है। मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। और जहाँ तक कॉपर की बात है, फूल बहुत तेज झड़ता है, अगर जो कॉपर की कमी है फूल झड़ जाएगा, फल जो है उसमें बैठे सेट नहीं होगा, और बढ़वार भी होगी अगर उसकी तो टेढ़ा मेढ़ा होगा, जिस तरह से होना चाहिए एक सामान्य फसल जिसे बाजार में कीमत मिल सके तो वो नहीं होगा। कॉपर की कमी जो है फूल बनने से लेकर के और फल बनने तक बहुत महत्वपूर्ण है। और पोषक तत्व कोई भी हो, 16 पोषक तत्वों में किसी भी तत्व की अगर एक तत्व की कमी है तो पौधा अपना बीज से बीज का पूरा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है।
1: डॉक्टर साहब, जो भी जस्ता है यानी जिंक
0: जी
1: और कॉपर यानी तांबा, इसकी कमी जायद फसलों में भी जरूर होती होगी।
0: अभी हमारी भूमियों में जो जीवांश कार्बन है उसकी कमी तो है ही, हमारी भूमियों में फास्फेट की कमी है और पोटास हमारी भूमियों में मध्यम स्तर पर आ गया। इसके अलावा सल्फर जो कि गंधक बोलते हैं जस्ता की, तो सारी भूमियों में लगभग कमी है। और सब्जी वाले किसान भाई जानते हैं कि क्योंकि उनको लक्षण दिख जाता है, और धान गेहूं पैदा करने वाले किसान भाई उसको समझ नहीं पाते, कॉपर की भी कमी है, इसलिए नैनो जिंक और नैनो कॉपर का भी प्रयोग उनको करना चाहिए। और यह हानिकारक नहीं है क्योंकि हम पौधे पर ही दे रहे हैं, भूमि में नहीं जा रहा, किसी अन्य पोषक तत्व के अवशोषण को बाधित नहीं करेगा।
1: डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जायद फसलों में जहां भी नैनो उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, इसकी कितनी मात्रा कितनी लीटर पानी में या एकड़ का हिसाब क्या होगा?
0: नैनो यूरिया छिड़काव करने के लिए 4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी, किसान भाई के पास 15 लीटर का स्प्रेयर रहता है, उसमें 60 ml जो है
1: यानी ढाई ढक्कन
0: जो बोतल का नैनो यूरिया ढक्कन है, वो ढक्कन में 25 ml ढक्कन ढाई ढक्कन मिलाएंगे, उसमें सावधानी ये बरतें कि पानी साफ हो, पानी छारी ना हो, और पहले एक डब्बे में लेकर के स्टॉक सोल्यूशन बना लें, किसी 1 लीटर के डब्बे में
1: जितना रकबा हो उसके हिसाब से,
0: जितना रकबा हो, अगर 1 एकड़ में उनको 6 या 7 टंकी छिड़काव करना है तो किसान भाई को मालूम रहता है कितने में हमारा हो जाएगा, तो 7 टंकी अगर उनको छिड़काव करना 15 लीटर की, तो 7 डब्बा पानी ले लें, उसमें 60 ml 7 डब्बे के पानी के हिसाब से
1: 60-60
0: जी जी जी 60-60 ml
1: या ढाई ढक्कन
0: 7 बार उसको उसमें मिला करके स्टॉक सोल्यूशन बना लें। उस स्टॉक सोल्यूशन जब वो टंकी भरने आए तो 1 डब्बा उठाए उसमें उन्होंने डाल दिया, बाकी पानी डाल दिया, तो समांगी जो है वह घोल बनेगा और बढ़िया छिड़काव होगा।
1: नैनो डीएपी भी यही मात्रा,
0: नैनो डीएपी में भी समान मात्रा है, उसकी भी स्टॉक सोल्यूशन बनाने की विधि और छिड़काव की विधि समान है। और इसको यूं समझें 1 एकड़ में करीब 125 लीटर पानी लगता है, एक बोतल को भी वो अगर मिला दें तो भी ये ज्यादा उसमें बहुत जोड़ने घटाने की जरूरत किसान भाई को नहीं पड़ेगी।
1: और नैनो जिंक और कॉपर
0: को 100 लीटर पानी लें, 100 ml की ये बॉटल आती है, और 100 लीटर पानी में स्टॉक सोल्यूशन एक डब्बे में बना करके 100 लीटर पानी में मिला दें, नैनो जिंक और कॉपर दोनों के लिए
1: प्रति एकड़
0: छिड़काव के लिए 100 लीटर पानी का छिड़काव कर दें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जायद फसलों में नैनो उर्वरकों के प्रयोग के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाइयों, हमारा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें, 97-93-93-0777 97-93-93-0777।
1: डॉक्टर विनोद कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जायद फसलें जहां आपके खेत में हैं तो नैनो उर्वरकों के प्रयोग से कैसे फसल की भूख मिटाएं ताकि संतुलित पोषण मिले, अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा मुनाफा आपको मिले, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जायद फसलों में नैनो उर्वरकों के प्रयोग के बारे में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनोद कुमार सिंह और उनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अब आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
0: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज सुनिए शशिलेखा सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। सबसे पहले सुनते हैं सोहर।

आप सुन रहे थे शशि लेखा सिंह के गाए भोजपुरी लोकगीत। संगत करता थे नालपर अवध बिहारी वर्मा, ढोलक पर शशांक शर्मा, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर अलका सिंह और साइड रिदम पर बालकृष्ण शर्मा। अब आज का लोक माधुरी कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, अब हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। कल, क्षमा कीजिएगा, सायंकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, अब हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ हो रही है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है नागरिक अलंकरण समारोह भाग एक का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, कृपया

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने को है, अब हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ हो रही है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है नागरिक अलंकरण समारोह भाग एक का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
2: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
3: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: Shri Dharmendra served as a member of parliament in the 14th Lok Sabha, representing the Bikaner constituency in Rajasthan from 2004 to 2009. And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N.

0: आजम कला वायलिन।
1: 87 वर्षीय डॉक्टर श्रीमती एन राजम भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
0: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
1: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
0: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
1: भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
0: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
1: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ द इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
0: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
1: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
0: Ramaswamy Palaniswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
1: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form guidelines.
0: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
1: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
0: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य, उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
1: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खासतौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन, वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन सो ओवर 6 decades.
0: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
1: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खासतौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबियातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists.

0: judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
2: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain. Kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
0: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He
1: Sushri
0: got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
2: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko? Jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई
0: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth
1: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar Sahitya evam Shiksha
2: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं
0: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.
1: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
2: Kumar Bose Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है. आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे.
0: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award along with immense respect
1: Shri
0: within the artistic
1: Janardhan
0: community.
1: Shri Janardhan Bapurao Bothe, Samaj Seva.
2: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं
0: श्री बोथे कंपनी राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा राष्ट्रपति भवन मेजर कुंभ मेलास साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
2: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
0: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
2: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. Rashtrapati ji ke samne unhe abhivadan karte hue ye sant padmashri se sammanit hota hua.
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय
2: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है
0: इन द डिजिटल एरा श्री चैटर्जी सक्सेसफुली रीइन्वेंटेड हिमसेल्फ थ्रू हिंदी स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक जुबली स्कूप एंड खाकी
1: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा
2: वन उत्पादक हैं आप 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है वन दादी नाम से जानी जाती हैं 3000 से ज्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं
0: श्रीमती देवकी

0: I relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings, and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter, and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा
2: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले आप एक
1: डॉक्टर रामचंद्र सामाजिक
2: कार्यकर्ता हैं 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है
0: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Srimati Sunita Godbole.
2: ये भी कितना गौरव का क्षण है. उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले. एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ. आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है
1: श्री तेची गुबिन समाज सेवा
2: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए
0: श्री गोबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना म्यांमार एंड भूटान He also led a team of delegations to meet the vice president to report on the security needs.
1: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
2: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है राष्ट्रपति जी के एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए
0: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr. B.C. Roy
1: Award. Shri Gafruddin Mewati Jogi Kala Bhapang Vadan.
2: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं
0: वेल थ्रू हिज सस्टेन्ड आर्टिस्टिक प्रैक्टिस श्री गफरुद्दीन हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द प्रिजर्वेशन ऑफ नियरली 20 इंडेंजर्ड फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओरल नैरेटिव ट्रेडिशंस हिज वर्क हैज सपोर्टेड एकेडमिक रिसर्च इंक्लूडिंग पीएचडी लेवल स्टडीज
1: हाजी कासम कला ढोलक
2: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं 75 वर्ष के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं
0: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए यूके साउथ अफ्रीका कनाडा यूएई ओमान एंड सेवरल अदर्स He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya Puraskar.
1: Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
2: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं
0: ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट श्री

0: Speaker stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
2: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए. सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई.
0: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर. ही इज
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी.
2: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है. बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे.
0: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025.
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा.
2: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है.
0: वेल प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर and the academic bank of credits.
1: Shri Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
2: Aur ab bari is 23 varshiy khiladi ki T44 unchi kood mein vishw mein aap number 1 hain aur para olympic padak jeetne wale sabse kam umr ke bharatiya para athlete hain Praveen Kumar.
0: Shri Praveen Kumar went on to claim gold at the world para athletics Grand Prix with a leap of 2.05 meters, setting an Asian record. At Tokyo Paralympics, he won a silver medal.
1: Shri K. Vijay Kumar, Civil Seva.
2: Vijay Kumar ji, CRPF के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
0: As Commissioner of Chennai, Shri K. Vijay Kumar reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG Law and Order, he strengthened public safety strategies.
1: Deva Lord, Dada Lord, Krishi.
2: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है. परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म हैं, 79 वर्ष के हैं.
0: श्रीरंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन विच वॉज यूज बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल.
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा.
2: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है.
0: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
2: 69 वर्षीय Dr. Mandal, Interventional Cardiologist. आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है.
0: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Buddh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
2: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Buddh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke mahanideshak bhi.

0: रहे हैं और कहाँ कहाँ उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
2: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: Organ Man ke roop mein jaane jaate hain aur Donate Life Sansthan ke roop mein इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
1: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
2: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
1: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
2: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, कंथा एम्ब्रॉयडरी।
0: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
2: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
1: श्री
2: सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition, which has
2: Shri
1: been supplied to the Indian Army.
2: Pajanivel Khel Silambam.
0: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mammalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसन पर आकर श्री पंड्या का सम्मान।
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hue aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का

0: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
1: Shri Gari Mela Bal Krishna Prasad Marnoprant Kala Gayan. Unke putra Shri Gari Mela Anila Kumar.
2: Anila Kumar, unke behalf par legi ye puraskar. Gali Mela Bal Krishna Prasad 78 varsh ki umr mein ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप
0: ओवर अ करियर स्पैनिंग 6 डेकेड्स श्री प्रसाद प्रेजेंटेड मोर देन 6000 कॉन्सर्ट्स अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनली
1: प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा ट्यूबरकुलोसिस
2: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है
0: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
2: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है
0: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions. Srimati Deepika Reddy,
1: Kala Nritya.
2: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं
0: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी चिकित्सा ऑन्कोलॉजी
2: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है
0: वेल डॉक्टर रेड्डी हैज डिलीवर्ड ओवर 921 सीएमई लेक्चर्स ऑफर्ड 112 प्लस पब्लिकेशंस एंड ऑर्गेनाइज्ड न्यूमरस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस टू ब्रिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू इंडियन प्रैक्टिशनर्स His advocacy efforts
1: Shri
0: have
1: Hari Charan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
2: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur Hari Charan Shaikia ji, jo ki 94 varsh ke hain wheelchair par jate hue, aapne is kala ka na sirf sanrakshan kiya hai, balki ise logo tak bhi pahuncha hai, aur bahut sare logo ko satriya kala का प्रशिक्षण भी दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी माननीय गृह मंत्री जी उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हुई
0: श्री हरिचरण साइकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948
1: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री
2: 86 साल के शास्त्री जी
1: साहित्य
2: देश के
1: एवं
2: संस्कृत विद्वानों में से हैं आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं नमस्कार करते हुए अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हुए
0: प्रोफेसर वेम्पटी कुटुंब शास्त्री हैज ऑथर्ड एंड एडिटेड 15 बुक्स एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
1: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
2: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी अंग्रेजी हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है प्रोफेसर शफी शौक
0: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
1: Shri Baldev Singh Khel,

0: की कोच
1: बलदेव सिंह जी ने बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच है और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
0: Shri Yumnam Jatra Singh Marnopran Kala Nat Sankirtan unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh
1: aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratipadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे सम्मानित होते हुए युमनाम जात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
1: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: Dr. Singh has guided 34 PhD and 5 MSc students, making substantial contributions to human resource development and mentoring numerous young professionals.
0: श्रीमती शिव शंकरी साहित्य एवं शिक्षा।
1: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की, आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में और ख़ासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: Shrimati Shivshankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
0: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
0: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा।
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृहमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
2: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable

0: 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का, और राष्ट्रपति,
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please, pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of the ceremony. आकाशवाणी से उसका आंखों देखा हाल भी सुनना ना भूलें. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है अभी आप नागरिक अलंकरण समारोह का पहले भाग का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम नई उड़ान

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई उड़ान में। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग इंतजार में बैठे रहे होंगे कि आज प्रोग्राम अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ। फाइनली शुरू हो चुका है, आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है और आज हम सभी, या यूँ कह लें कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे। मासूम बच्चों की याद दिला देता है ये दिन, जो कभी भीड़ में खो जाते हैं, कभी परिस्थितियों के कारण, कभी समाज की बेफिक्री के कारण। दोस्तों, बच्चों का गुम होना केवल एक खबर भर नहीं होता, ये किसी माँ की अधूरी नींद, किसी पिता की टूटी हुई उम्मीद और घर के सूने आंगन की कहानी बन जाता है। भारत में हर वर्ष बड़ी संख्या में बच्चों के गुम होने के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में देश भर में लगभग 91,000 से अधिक बच्चों के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, यानी औसतन हर दिन करीब 250 बच्चे गुम हो रहे। इनमें बड़ी संख्या लड़कियों की भी रही है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर गुमशुदा बच्चा मानव तस्करी का शिकार हो, यह हमेशा नहीं होता है। कई बार बच्चे घर के तनाव, डांट फटकार, पढ़ाई के दबाव, आर्थिक तंगियां या तमाम पारिवारिक कलहों के कारण, अकेलेपन के कारण स्वयं को छोड़कर घर से निकल जाते हैं। कुछ बच्चे बहकावे में भी आते हैं, कुछ सोशल मीडिया के झूठे आकर्षण में फंसकर भी, और कुछ मासूम सचमुच अपराधियों के जाल में पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ बार बार कहते हैं, बच्चों को केवल सुविधाएं नहीं, संवाद भी चाहिए, उन्हें केवल अनुशासन नहीं, अपनापन भी चाहिए। भारत सरकार द्वारा ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड पोर्टल चलाया जा रहा है, जहां पे आप इन बच्चों की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, जानकारी वहां पे आपको मिल सकती है। और इसके साथ ही साथ खोया पाया पोर्टल भी है, जो लोगों की मदद के लिए उपलब्ध है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जैसे अभियान के माध्यम से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कई बच्चों को सुरक्षित बचाया गया है। ये प्रयास इसीलिए होते रहते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि देश भर में बच्चों की सुरक्षा सहायता के लिए काम हो रहे हैं, लेकिन हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सुनें, उन पर केवल उम्मीदों का बोझ न बांधें, उन्हें भरोसा दें कि गलती होने पर भी घर के दरवाजे और दिल हमेशा खुले रहेंगे।

0: याद रखिए, सुरक्षित बचपन ही सुरक्षित समाज की नींव है। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी और सरोकार है, लेकिन इसके अलावा सलोकार की अगर बात करें तो हमारी धरती के प्रति भी हमारे कुछ सरोकार हैं। हमारी धरती पत्थरों में तब्दील होती जा रही है और इसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। बस इसी बात का ख्याल रखते हुए हमारी साथी एंकर रीना श्रीवास्तव निकल पड़ी लोगों के बीच, जो कुछ पर्यावरण के साथ काम कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रयास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या समस्याएँ आती हैं, क्या समस्याएँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये सारी बातें हम जानते हैं आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग पर आधारित आज की श्रृंखला में, पत्थरों में तब्दील होती धरती और हमारे सरोकार।
1: साथियों, पहचाना आपने, हमारे घर गली मोहल्ले से लेकर बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसी ही आवाजें आती हैं। ये है विकास की नींव, यानी हर जगह खड़े होते कंक्रीट के जंगल। ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। हमारे सपनों का मकान इन्हीं में कहीं छुपा होता है।

0: साथियों, पहचाना आपने, हमारे घर गली मोहल्ले से लेकर बड़ी बड़ी जगहों पर ऐसी ही आवाजें आती हैं। ये है विकास की नींव, यानी हर जगह खड़े होते कंक्रीट के जंगल। ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। हमारे सपनों का मकान इन्हीं में कहीं छुपा होता है, जिन्हें सजाने के लिए हम अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा देते हैं। लेकिन फिर एक दिन हम जागते हैं और पाते हैं कि हमारा सपना तो आधा ही पूरा हुआ। मकान खड़ा हो गया, लेकिन आंगन, ठंडी हवा, जाड़े की धूप और गर्मियों की छत का आनंद उस तरह नहीं मिलता जैसे हमने अपने बचपन में पाया था। बढ़ती आबादी में भी परिवार और मकान दोनों छोटे हो गए। इसलिए इस शहरी कंक्रीट की दुनिया में हमें मिलता है अकेलापन और बहुत अधिक गर्मी का एहसास, क्योंकि सीमेंट के बने मकान हरियाली और पानी की तरह ठंडक नहीं लाते। ये कंक्रीट के जंगल बनाते हैं हीट आइलैंड्स। कंक्रीट के जंगल जो हमने बना लिए हैं और जिन पत्थरों को हमने अपने आसपास सजा लिया है, वो हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं प्रोफेसर SN पांडे सर के पास, जो कि पर्यावरण विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय के संयोजक भी हैं। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कॉन्क्रिटाइजेशन हो रहा है, ये जो शहरीकरण हो रहा है, इसका पर्यावरण पर क्या असर आप देखते हैं?
1: पर्यावरण को अगर हम महसूस करें तो गांवों के इलाके में जाएं और जहां पे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सीमेंटेड, वहां जाएं तो अपने आप ही फर्क महसूस हो जाता है। शहरों में क्या है कि धीरे धीरे बहुत सारी बिल्डिंगें बढ़ती जा रही हैं। उसका एक कारण है जनसंख्या का बढ़ना और लोगों की जरूरतें भी हैं कि उनको एक छत मिले, एक मकान मिले। इसी परिप्रेक्ष्य में तमाम बिल्डिंगें आजकल प्राइवेट और सरकारी बनती जा रही हैं, लेकिन जब पर्यावरण के दृष्टि से देखते हैं तो उनके ऊपर गर्मी के मौसम में तापमान एक तो वैसे भी बढ़ा रहता है, लेकिन जब इनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो गर्मी में और ज्यादा वृद्धि हो जाती है और वो एक पर्टिकुलर एरिया में, एक क्षेत्र में बहुत ज्यादा पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, जिसमें सभी तरह के जीव प्रभावित होते हैं। उनका रहन सहन, खान पीन, सभी कुछ के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। इवन उनके स्वास्थ्य पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसको उनको संभालने में, संजोने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि पहले जब इतनी जनसंख्या नहीं थी, ज्यादातर लोग गाँव में रहते थे, तो उस तरह गर्मी आती थी, गर्मी महसूस भी होती थी, लेकिन वो जीवन को एकदम से डिस्ट्रॉय कर दे, एकदम से लोग प्रभावित हो जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन अब जब शहरों में ऐसी स्थिति आ चुकी है तो एक जोन, कुछ किलोमीटर का एरिया ऐसा होता है जहां पे तापमान ज्यादा होता है, लेकिन जब उस एरिया से हम बाहर निकलते हैं तो जहां पे हरियाली, जहां पर खुली जमीन, तालाब, पानी के सोर्सेज मिलते हैं, वहां पे तापमान बिल्कुल फर्क होता है। लेकिन जब शहरों की बात करें तो एक पर्टिकुलर जोन जहां पे सीमेंटेड एरियाज होते हैं, रोड बने हुए हैं, बिल्डिंग्स बनी है तो उसके किनारे भी कंक्रीट के फर्श बने हुए हैं, उन सब की वजह से तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है।
0: हीट जोन की जब आप बात कर रहे हैं तो हमारे श्रोताओं के लिए ये भी बताइए कि ये हीट जोन क्यों बनते हैं और इसके पीछे क्या कारण है?
1: जहाँ भी आवासीय एरिया है, ज्यादातर कंक्रीट के बने हुए हैं, सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और वो खुद भी जो सीमेंटेड एरिया है वो खुद भी एक टेम्परेचर वहाँ पे ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। तो इस तरह से जो जनरल सामान्य टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है गर्मी के दिनों में, उससे ज्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है और वो एक उसका एक पर्टिकुलर एरिया है जहां तक उसका प्रभाव रहता है, तो उसको हम हीट जोन कह सकते हैं। लेकिन अगर उसमें ग्रीनरी रहे, खुलापन रहे, थोड़े जलाशय भी हों, ओपन एरिया रहे, तो इस प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
0: हमारी पृथ्वी पृथ्वी न रहकर पत्थरों का जंगल बन गई है, इसीलिए इस पृथ्वी की चिंता हमें करनी ही चाहिए और इसीलिए हम आ पहुंचे हैं प्रोफेसर ध्रुव सेन सिंह सर के पास, जो कि भू विज्ञान विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में HOD के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। आपसे सर जानना चाहेंगे कि हमारी पृथ्वी का जो कॉन्क्रिटाइजेशन हो रहा है, क्या शहर दर शहर बढ़ते जा रहे हैं, उनके पीछे आप क्या कारण देखते हैं और इसकी वजह से पर्यावरण को क्या नुकसान पहुँच रहा है?
2: देखिए, पिछले कुछ दशकों में जिस तरीके से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है और जनसंख्या का जो दबाव लगातार आता जा रहा है इस पृथ्वी के ऊपर, निश्चित रूप से वो बड़े ही चिंताजनक है, क्योंकि जो विकास हो रहा है

0: हुतायत ये देखा जा रहा है कि वो अनियोजित विकास है, जिसके कारण कि अगर 1950 में अगर आप देखें तो जो एक स्क्वायर किलोमीटर में 100 लोग निवास करते थे, आज 2025 में एक स्क्वायर किलोमीटर में करीब करीब 500 लोग निवास करते। 1950 में अगर 10 मकानों में लोग रह रहे थे तो 2025 में अब वो 100 मकानों में रह रहे हैं। तो कहां 10 मकान, कहां 100 मकान। और 1950 में वो जो 10 मकान थे उसमें भी 5 मकान मिट्टी के होंगे, 5 मकान ही पक्के होंगे। आज 2025 में अगर वो 100 मकान बन रहे हो तो 100 मकान पक्के हैं। धीरे धीरे ये पृथ्वी जो है, अगर हम अपने देश की बात करें तो एक कंक्रीट के जंगल के रूप में तब्दील होती जा रही है, क्योंकि हमने हरित पट्टी कम कर दी, सूर्य की किरणों को अवशोषित करने की शक्ति थी वो कम कर दी, हमने वायुमंडल का मॉइस्चर कम कर दिया, हमने जो जल संसाधन के स्रोत थे उनको कम कर दिया।
1: इस बारे में हमने लखनऊ मंडल के ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट इंजीनियर आदित्य कुमार पांडे जी से भी सवाल पूछा।
2: ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो शहर और गांव में किस तरह से है?
3: बारिश से पानी रिचार्ज होता है जमीन में रिफ्ट के। एक शहरों और गांव में बेसिक डिफरेंस ही ये है कि शहर कॉन्क्रीट होते जा रहे हैं, गांव में कच्ची जमीन होती है। तो अगर मैं लखनऊ के परिदृश्य में ही बात करूं तो लखनऊ ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार हमें वाटर लेवल जो है वो 5-6-7-8 मीटर तक भी मिल जाता है, लेकिन अगर हम लखनऊ शहर में बात करें तो शहर में ये 20 मीटर से लेकर के 50 मीटर 55 मीटर तक वाटर लेवल है। शहर में भी अलग अलग क्षेत्रों में चेंज है। जो हमारा पुराना लखनऊ का इलाका है, जो सबसे पुराना इलाका है जहाँ कॉन्क्रीटाइजेशन कई सालों से कई बहुत पुराना है, वहां पे ये वाटर लेवल 50-50-55-55 मीटर भी पहुंचा हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे चौक के क्षेत्र में, हमारे विकास नगर के क्षेत्र में, महानगर के क्षेत्र में। पर अभी जो रिलेटिवली नया इलाका डेवलप हो रहा है, फॉर एग्जांपल वृंदावन हो गया हमारा, वहां पे मैडम ये लेवल 20 मीटर पे भी है, 19 मीटर पे भी है। जब पानी को जगह मिल रही है तो वो रिचार्ज हो रहा है, जब पानी को जगह नहीं मिल रही तो वो रिचार्ज नहीं हो रहा, और जब वो रिचार्ज नहीं हो रहा तो अल्टीमेटली वाटर लेवल डाउन जा रहा है।
1: ज्यादा गर्मी हमारा बीपी ऊपर नीचे कर देती है, हमें गुस्सा आता है, हम परेशान और स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, इसलिए हम अपने घर में लाते हैं एसी, कूलर, पंखे, और खाने पीने के लिए लाते हैं तरबूज, खरबूजा, आम, लस्सी, फल से, और ये सब कुछ हमें पेड़ों से मिलता है और उन्हें भी स्ट्रेस होता है। गर्मी का मौसम उन पर भी उतना ही असर दिखाता है, और उस पर अगर अंडरग्राउंड वाटर का स्तर अगर नीचे ही चला जाए तो पेड़ों की जड़ों को भी पानी मिलने में दिक्कत होती है।
4: जब गर्मी होती है तो पेड़ों के आकार पर, पत्तियों पर, तने पे, बाहर से जो भी चीज दिखता है पौधे में, उन सब में परिवर्तन होता है और नुकसान होता है। इसके अलावा उनके सेल होती है, सेल के अंदर जितने मेम्ब्रेन होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं जो कि सेलुलर मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। इसके अलावा जो उनके प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, पौधों की ग्रोथ के ऊपर बहुत उसका प्रभाव होता है, वो रुक जाता है। तो इस तरह से पौधों के अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की गतिविधियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं।
2: सर, हमने ये भी सुना है कि स्ट्रेस फिजियोलॉजी जैसी भी कोई चीज होती है।
4: बिल्कुल, ये होती है स्ट्रेस फिजियोलॉजी, और वो जितने भी जीव हैं उनके ऊपर वो स्ट्रेस का प्रभाव पड़ता है। जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाए, तो ऐसे स्ट्रेस में पौधे अपने को बचाने की तो कोशिश करते हैं, प्रकृति ने उनके अंदर ऐसी क्षमताएं डेवलप की हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। और फिजियोलॉजी का मतलब अंदर उनकी कोशिकाओं में तमाम तरह की क्रियाएं चलती रहती हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाती हैं। छोटे जो स्ट्रेसेज होते हैं जो सुबह, दोपहर, शाम और कम लेवल पे, वो पौधा रोज आदि होता है, उसको सह लेता है अपने क्रियाओं को मेंटेन करके। लेकिन जब वो मेंटेन नहीं कर पाता और स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है तब नकारात्मक प्रभाव पड़ना शुरू होता है।
1: जब हमने अपनी बस्तियां बनाई तो हमने नदियों के किनारों को भी नहीं छोड़ा। इस बात का नदियों पर और उनके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं पर क्या असर होता है, ये बता रही हैं प्रवक्ता के पद पर कार्यरत डॉक्टर ऋतु जैन। आप गोमती और गंगा नदी से संबंधित कई प्रोजेक्ट्स पर काफी लंबे समय से कार्य कर रही हैं।
5: जब बस्तियां बसेंगी और बस्तियों के बसने की वजह से हम पेड़ों का कटाव करेंगे, तो जब हम पेड़ों का कटाव करेंगे तो जो मिट्टी का कटाव है वो मृदा कटाव भी होगा, और वो नदी जो होती है वो हमारी नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करती है। अगर नदी के अंदर बेडिंग में इतनी मिट्टी का जमाव और ये सब कटाव नहीं होगा तो वाटर रिचार्ज ऑटोमेटिकली होगा, जिसकी वजह से भूजल स्तर भी हमारा नीचे नहीं गिरे।
2: कि नदियों के किनारे जो रिवरफ्रंट बनाने का जो चलन है, तो क्या उस नदी पर कुछ असर पड़ता है?
5: बिल्कुल, पर्यावरण की

0: जैसे अगर रिवर फ्रंट को देखें, नदियों का एक अपना बहाव होता है। नदी एक तरफ कटाव करती है, एक तरफ जमाव करती है, और जितने भी जीव जंतु होते हैं वो अपने अंडों को इन किनारों पे ही फर्टिलाइजेशन और उसके लिए करते हैं, जिससे जैव विविधता भी बढ़ती है
1: जी।
0: तो अगर हम नदी को रिवर फ्रंट में कन्वर्ट कर देंगे तो नदी में नेचुरल जो तटबंध या लेवीज बनते वो नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से नदी का नेचुरल फ्लो रुक जाएगा। अब जब भी नदी का नेचुरल फ्लो रुकेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि नदी का मार्ग जो है वो बहुत नैरो हो जाएगा और नदी नाले में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे हम कहते हैं कि गोमती हैज बिकम अ डेड रिवर। दूसरा, जब आप रिवर फ्रंट बनाते हैं तो इससे जो नदियों के किनारे पेड़ हैं उनको आप काटते, पेड़ को काटने से मिट्टी की कटाव भी होता है जो नदियों में सिल्टेशन का काम करता है
1: जी।
0: अगर सिल्टेशन लगातार होता रहेगा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, अगेन हमारे एक्वीफर्स नहीं भरेंगे और नदी का स्तर, जो जल का स्तर है नदी हमारी धरती में, वो लगातार कम होता जाएगा। फिर जब हम लोग ये कॉन्क्रिटाइजेशन करते हैं, रिवर फ्रंट बनाते हैं, तो सीमेंट, रसायन, इन सब का यूज करते हैं जो वाटर पोल्यूशन को बढ़ाता है, यह हमारी बायोडाइवर्सिटी को कम करता है और हमारा पूरा एनवायरनमेंट के बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है।
1: कंक्रीट के जो जंगल बन रहे हैं, जो हीट आइलैंड्स बन रहे हैं, उस बारे में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या विचार रखता है, ये जानने के लिए हम अब बात कर रहे हैं रोमा सिन्हा मैम से। ये जो हर तरफ कंक्रीट का जंगल है, आपके पत्रकारिता के अनुभव में आपने इस समस्या को कैसे देखा और क्या समाधान आप सुझाती हैं?
2: देखिए, कंक्रीट का जंगल जो है वो हमें चारों तरफ दिख रहा है और वो वाजिब भी है। कारण ये है कि जब हमारी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि सबको घर रहने के लिए चाहिए। कंक्रीट का जब जंगल दिखता है तो हरियाली जो है वो हाशिए पर दिखाई देती है, और हरियाली हाशिए पर दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ इसका दुष्प्रभाव जल संकट यानी भूजल संकट पर दिखता है। आज हम देखिए, अपनी जरूरत के लिए मकान बना रहे हैं, मकानों को बनाने के लिए हम भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा हम जो अपने इस्तेमाल के लिए रोजमर्रा की जरूरतों के लिए वो भी हम भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, सबमर्सिबल पंप लगे हुए हैं। तो जब हम 24 घंटे पूरे साल इन सबमर्सिबल पंप से पानी गहराई से हम निकाल रहे हैं भूजल भंडारों से, और हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग को एक कवच बना रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बढ़िया एक पुरातन तरीका है, हमें प्रकृति के जल को जो बारिश के रूप में हमें मिलता है उसमें संचित करने का। लेकिन हो क्या रहा है, पानी तो हम दोहन कर रहे हैं पूरे साल, लेकिन हम जो जल संचयन है उसके लिए हम निर्भर कर रहे हैं केवल साल में 20-22 दिन जो हमारे पास वर्षा के हैं। कम से कम हमें इतना करना चाहिए कि जो ओपन स्पेस जो मुहैया हो सकती है, जो उपलब्ध हो सकती है, उससे छेड़छाड़ ना कर सकते। और सरकार ने भी ऐसे नियम बनाए हैं कि जो भी पेवमेंट्स हैं उनको जो है कच्चा रखा जाए, जो हमारी ट्रैफिक आइलैंड्स हैं उन्हें कच्चा रखा जाए, ये बाकायदा शासनादेश है। उसके पीछे शायद मंशा यही थी कि हम जितना ज्यादा पानी, वर्षा जल हम प्राकृतिक स्रोतों से, प्राकृतिक तरीके से, उपायों से जमीन के नीचे हम पैवस्त होने दें, वो हमारे भविष्य के निधि के रूप में इकट्ठा होगा। लेकिन आज देखिए आप, चारों तरफ कंक्रीट के जंगल जहाँ बन रहे हैं, वहीं सारे खुले स्थान, चाहे पार्क हो चाहे पेवमेंट हो, सबको हम टाइल से काट रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हमको झेलना पड़ रहा है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका जो आप देखें तो उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हम जो रेन वाटर यानी जो सबसे शुद्ध पानी हमें मिलता है प्रकृति से, उस पानी का हम संचयन करें। लेकिन इसकी आड़ में क्या कर रहे हैं लोग कि वर्षा जल संचयन के आड़ में जो गंदा पानी है उसको भी हम रिचार्ज करवा रहे हैं। कई जगह आप ऐसा देखेंगे कि तालाबों को बनाया गया, उसको ट्यूबवेल से भरा गया और उसमें बोरिंग की गई, तो यानी ट्यूबवेल से हमने साफ कुदरत ने जो हमें पानी भविष्य के लिए दिया था उसको निकाल के कंटामिनेट किया, दूषित किया, और उसके बाद हम उसको फिर वापस रिचार्ज करवा रहे हैं भूजल गहरे स्रोतों में। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा कड़ाई करने की जरूरत है और लोगों को भी चाहिए कि वो इस बात को समझें कि वो जो भी संचित कर रहे हैं बैंक में, जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अपने पीढ़ियों के लिए, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उनके लिए स्वच्छ जल, स्वच्छ एनवायरमेंट

0: जो है उसके लिए कोशिशें करें।
1: हम जो कर रहे हैं उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है, इस बात पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। तो आइए हम अपने विचारों को भी बदलें और अपने तौर तरीकों को भी बदलें। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: तो दोस्तों, ये सारी बातें जानने के बाद हम समझ ही गए हैं कि हमारे सरोकार क्या कहते हैं, क्या है हमारी जिम्मेदारी। तो समझिए और निभाइए अपनी जिम्मेदारी। फिलहाल मैं शालिनी ले रही हूँ इजाज़त, फिर मिलने का वादा करते हुए दीजिए मुझे इजाज़त इस कार्यक्रम से, आज के सफ़र से। नमस्कार।

0: अभी आप नई उड़ान कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
7: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को है। अब दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार होंगे।
8: एम आकाशवाणी।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्यां उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्तास्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। पद्म पुरस्काराः देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति, यस्मिन् पद्मविभूषणः, पद्मभूषणः, पद्मश्रीः च अन्तर्भवन्ति। अद्य 26,000 वर्षे प्रथम नागरिक निवेश समारोहे राष्ट्रपतिना कलाक्षेत्रे अभूतपूर्व योगदानाय मरणोपरान्तं चलचित्र अभिनेतारं धर्मेन्द्र सिंह देओलं, वायलिन वादकं डॉ एन राजम वर्यं च पद्म विभूषण पुरस्कारौ, 6 पद्म भूषण पुरस्काराः, 58 पद्मश्री पुरस्कारैः सह 66 पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवशिष्टाः पद्म पुरस्काराः पश्चात् नागरिक निवेश समारोहस्य द्वितीये चरणे प्रदीयन्ते। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 131 पद्म पुरस्काराणां घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। पश्चिमेशियायाः वर्तमानस्थित्याम् अद्य नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय संवादं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा डॉ सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे एलपीजी इत्यस्य शोधनागारस्य उत्पादनं प्रतिदिनं 50,000 टन परिमितं यावत् अस्ति।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतीय दूतावासः, वाणिज्य दूतावासश्च भारतीय प्रवासिनां कल्याणाय निरन्तरं सम्पर्करतौ स्तः। श्रीजायसवालः अवदत् यत् मन्त्रालयः गल्फक्षेत्रे बृहत् संख्यायां स्थितस्य समुद्रीय समुदायस्य सर्वविध साहाय्यं प्रददाति। उर्वरक विभागस्य अपर सचिवा अपर्णा शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे उर्वरकानां समग्र भण्डार स्थितिः अपि सुखकरः एव अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षापत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्येतयोः च प्रतिक्रिया याचिता। सहैव प्रकरणेऽस्मिन् दिल्ल्याः न्यायालयेन पुणे नगरस्य भौतिक शास्त्रस्य आचार्यां मनीषा संजय हवलदारं नीट यूजी परीक्षापत्र लीक प्रकरणे केन्द्रीय अन्वेषण संस्थायाः 6 दिनानाम् अभिरक्षायां प्रेषितम्। विशेष न्यायाधीशेन अजय गुप्तावर्येण अभियुक्तया सह अभिरक्षायां प्रश्नोत्तरमुद्दिश्य सीबीआई इत्यस्य आवेदनं स्वीकृतम्। मनीषा इत्येषा मई मासस्य 22 दिनाङ्के निगडिता आसीत्। ट्रांसिट रिमांड इत्यनेन माध्यमेन न्यायालये उपस्थापिता च। सीबीआई इत्यस्य अनुसारं नीट यूजी परीक्षा सामग्रीणाम् अनुवादिका रूपेण कार्यं कुर्वन्ति पुणे नगरे सेठ हीरालाल सराफ प्रशालया सह सम्बद्धा अन्यैः अभियुक्तैः सह अनुवादार्थं भौतिकशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रसारितवती इति आरोपः अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। असम सर्वकारेण अद्य राज्य विधानसभायां

0: पंचो जय हिंद।
1: सरला बहनी,
2: हाँ रियाज भैया,
1: देखो अच्छी जिंदगी के लिए अपने हाथ में जो है पैसा रहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके अगर रोज़गार की बात की जाए तो कुछ ऐसा रोज़गार हुए कि जो उनके एक अच्छी आमदनी का साधन हुए और वह का जो है जो उन भविष्य है वो अच्छा हुए।
2: बिल्कुल रियाज भैया, एकदम सही बात कहे हो कि जो है अगर अच्छी ज़िंदगी जे का है, अच्छा जीवन यापन करे का है, तो हाथ में पूंजी हुआ जरूरी है। और अगर पूंजी के लिए भैया हम सबका मेहनत करब जरूरी है,
1: मेहनत करब जरूरी है, और जो अपन हुनर है वह पर अपन मेहनत करे ज़रूरत है कि वह कैसे निखारा जाए, और जौन हुनर है वह पर ऐसी मेहनत की जाए कि खाली अपने परिवार नहीं बल्कि सार्थकता तो वही में है कि जो उन चार औरों लोगों का जोड़ के उन्हों के जीवन स्तर का ऊंचा उठावा जा सके।
2: रियाज भैया, और देखो जब हम कोनो काम शुरू कर सकथन तो पहले हम शुरू करी उके साथे साथे एक दूसरे का जोड़ी, अगर दो चार मनी और जुड़े, और अगर जो अपन स्किल अपन कौशल है ना, अगर उका हम अपने अंदर से निखार ली, वो अपने प्रतिभा निखार ली, तो वो दिन दूर नहीं कि जो है हम अपना तो खुद आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपना आमदनी अच्छी हो सकते है, साथ ही साथ ही अपन घर परिवार, अपन जो है मोहल्ला और गांव देश के सब भैया बहन के भविष्य सुधर सकते हैं।
1: बिल्कुल सुधर सकते है, इके लिए खाली हम पंचन का प्रयास करे जरूरत नहीं ना, बल्कि सरकार इस तरफ से प्रयास कर रही है कि कैसे अपने जो अपन देशवासी हैं, जो अपने युवा हैं, उनके जीवन स्तर सुधारे के लिए कैसे उनका रोजगार की तरफ मोड़ा जाए, इसके लिए तमाम तरीके की योजना चलावा करत है। वही मैं से अगर बात की जाए मेक इन इंडिया के या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार सृजन कार्यक्रम चल रहा है, ऐसी ऐसी बहुत सारी योजना है, अगर हम पंच वके जानकारी ले के और उके लाभ उठाए ली, ओमा रोजगार अपनाए के जो है कोनो ऐसी इकाई स्थापित कर ली कि जहमा जो है कोनो चीज़ ऐसा बनावा जा सके या उके कोनो सेवा दीन जा सके, तो हम जो है अपनों परिवार निकट चल सकते है और चार औरों लोगों के चल सकते।
2: बिल्कुल रियाज भैया, और जो बात करो कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, वो एक ऐसी योजना है जो ने कि जो है माध्यम से हम सब अपने जो कौशल है उका हम निखार सकते, और भैया हम सब पढ़ाई लिखाई करते, अपन लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई करते, और पढ़ाई सबसे ज्यादा यही के लिए जरूरी है कि अगर हम शिक्षित रहे तब कोनो काम भी बहुत अच्छे से कर सकते।
1: बिल्कुल अच्छे से कर सकी थे, इके लिए जो है जब कोनो भी हम रोजगार चालू करी थे तो हमारा कई तरीके की ऐसी दिक्कतें आवत हैं कि जिनके बारे में हमका नहीं मालूम रहा था। अब पहली समस्या तो यही रहा था कि अपने पास में जब पूंजी नहीं रहा था, जब कोनो भी रोजगार हम चालू करा चाहिए थे, कोनो चीज़ स्थापित करा चाहिए थे, तो सबसे बड़ी अड़चन यही आवत है कि अपने पास में पूंजी नहीं ना, तो उसके लिए सरकार अपने साथ में खड़ी है, तमाम तरीके के ऐसे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवावत है कि वहाँ से आपका जो है ऋण मिल जाता है, और ऋण के साथ साथ में जो है आपका ऊपर उठावे में कि कोनो समस्या ना आवे उसके लिए सब्सिडी भी प्रदान करत है, और उसके साथ साथ में जो है जब आगे चल के जब हम रोजगार स्थापित करी थे तो कहूँ कहूँ ऐसी दिक्कत आ जाती है कि जानकारी की कमी है या जो है बाजार के बारे में अनुभव नहीं ना हमका, तो वह के लिए जो है प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कि हर एक चीज़ के बारीकी सिखाई जाती है कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, कोनो परेशानी आवत है वह कैसे दूर की जा सकता है।
2: रियाज भैया, और देखो जब प्रशिक्षण की बात करो तो पढ़ाई लिखाई अगर हम करें तो बहुत प्रशिक्षण बढ़िया तरीके से ले सकते हैं, और तब ही बड़े अच्छे से हम समझ सकते हैं कि का सिखावा जाता है हम सबका, और प्रशिक्षित होते हैं। और देखो जैसे कंप्यूटर का काम हो जाता है ना, हम सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और कोनो सिलाई कढ़ाई अपने भैया बहनी कर रहे थे गांव में, है ना, तो वह से भी बढ़िया पूंजी कमा सकते हैं, और अगर पढ़े हैं तो कंप्यूटर सीख लिए, कंप्यूटर जब सीखब ना भैया तो पढ़े रह तब तो भैया वह देखो अंग्रेजी भाषा रहा था है हिंदी भाषा रहा, तो वह का जो करे का है तो के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, और वह के खातिर प्रशिक्षण ले ली हम, कुछ दिन सीखे के बाद प्रशिक्षण ले ली और अपन जो है खुद का स्वरोजगार शुरू कर सका था।
1: अच्छा एक चीज और है, बात पढ़ाई की हो रही है तो ये जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं यह हम जो है कबो कबो ऐसा रहा है कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं ना,
2: हाँ
1: तब वो ऐसा नहीं ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं ना तो ये योजना का लाभ ना मिल पाए, यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की जरूरत नहीं ना, लेकिन ये है कि आठवीं पढ़े हैं या दसवीं पढ़े हैं तब हम पंच जो है ई योजना में फार्म भर के जो है अपन इकाई स्थापित करी, सरकार की तरफ से एक प्रशिक्षण ली, वह जो ऋण सुविधा है वह का ली, सब्सिडी ली, वह कले कि अपन विधिवत जो है अपन रोजगार स्थापित करके वह का आगे बढ़ा सकी थे।

0: भैया तो देखो कितनी बढ़िया बात है कि
1: अच्छा
0: जो है
1: एक
0: कम
1: चीज़
0: से
1: और
0: कम।
1: है,
0: हाँ
1: देखो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और जौनी तरफ निकल जाओ अगर तो यही लागत है कि जो है आसमान से आग बरस रही है।
0: भैया बिल्कुल देख रहे हो, अभी जैसे जैसे निकलो घर से सबेरन से इतना तेज घाम होने लगा था ना कि जैसे लगा था मोड़े में एकदम टनक जाए
1: हाँ
0: है। और भैया अगर तनिको भी बचाव ना करो ना तो सिर एकदम पकड़ लेते हैं और जो है अपन शरीर तपे लागत है। तो भैया सबसे ज़रूरी है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में हम सबका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जो है बार बार पानी पीक चाहिए है, हो सके तो भैया जो है बाहर निकलो हो तो बोतल में पानी रखो, तो मैं नींबू डाल के निकलो
1: और
0: है ना।
1: दूसरा चीज़ ये है, निकलो तब भाई जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुए। निकले के समय
0: हाँ
1: या तो सवेरे सवेरे काम निपटा लियो या तो फिर संझक बिरिया निकलो। दोपहर में जो है निकले से बचे की ज़रूरत है, काहे से कि जब हम बाहर निकले थे तो इतना ज़्यादा तपिश है, देखो अब नवतपा भी चालू ही हुआ
0: हाँ
1: है,
0: भैया आज
1: इतना
0: से
1: ज़्यादा लू हर तरफ चल रहा है, तो इनसे बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम निकल रहे हैं तो अपने शरीर का पूरी तरीके से ढक ली, सीधे जो है घाम के संपर्क में ना आई, काहे से कि ऐसे रहता है कि
0: बिल्कुल
1: शरीर में
0: भैया।
1: पानी की कमी हो जाता है और आगे चल के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो जब भी निकली तो अंगोछा ओढ़ कर निकली,
0: सूती कपड़ा
1: हाँ
0: पहने
1: सूती
0: भैया
1: कपड़ा पहना
0: और
1: जाए।
0: जो है खूब पानी पिए, और घरे से भैया दही मट्ठा है तो बढ़िया जीरा नमक डाल के पी के तब निकलें है ना
1: बिल्कुल ये
0: संजय
1: तो है ही
0: भैया।
1: है। अच्छा ये के साथ साथ में जो है जब बात आवत है अपने सेहत के, तो तमाम तरीके का ऐसी बीमारियां हैं कि उनके सामना हम पंचन को हो जाते हैं, तो उसे बचत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ होए ना पावे, अगर हो ही जाते तो इसे कैसे बचा जाए ये हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: देखो भैया जीवन है तो कुछ बीमारियां जाए लाग रहा थे
1: हाँ
0: और जो है कुछ ना कुछ होता है, अगर वह की खातिर बचे का है तो पहले जानकारी भी हो जाए तो ज़्यादा
1: बिल्कुल
0: अच्छा है। और वैसे आज एक जानकारी लेके आए हैं मधुमेह कारण लक्षण और बचाव, ये पे जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार और बातचीत आप करत हो भैया, तो सुना जाए और पंच भैया भी सुने।
1: बिल्कुल पंचों हम सबका यही प्रयास रहा है कि आपन काया निरोगी रहे और सब सुख सुविधा हम पंचन का मिलत रहे, जैसे कि आपन जीवन यापन नीके तीना से बीते। मुला आजकल हम पंचन का जौन हिसाब से सुख सुविधा मिल रही है वही हिसाब से हम लोग सुकुवार हुआ चले जा रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप नई नई बीमारी से हम सबके सामना हो रहा है। वही में से एक बीमारी है मधुमेह, जिसका हम शुगर और डायबिटीज के नाम से भी जानित है। तो ई मधुमेह काव आए, यह के लक्षण कौन कौन हुआ हैं और कैसे बचा जाए, यही विषय पर जानकारी दिए के लिए हमारे साथ में अपने आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ के मेडिसिन विभाग से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ई कार्यक्रम में।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद रियाज जी।
1: डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि ई मधुमेह जगह हम सब शुगर और डायबिटीज के नाम से भी जानित है, आखिर ई है का जैसे कि आपन शरीर इतना कमजोर हो जाते हैं।
2: जी सबसे पहले रियाज जी आपको और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। शुगर जिसको हम लोग मधुमेह भी कहते हैं, इसको हम लोग रक्त में शर्करा बढ़ जाना भी कहते हैं और इसी को
1: जी
2: अंग्रेजी में डायबिटीज भी कहते हैं।
1: जी जी
2: तो यह एक ऐसी उपापचयी प्रक्रियाओं का डिस्टर्बेंस है जिसमें इंसुलिन की कमी की वजह से या इंसुलिन के काम ना करने की वजह से रक्त में शर्करा बहुत समय तक बढ़ी रहती है,
1: जी
2: जिसके
1: जी
2: बहुत से ढेर सारे दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन हम कहते हैं,
1: जी
2: जिसमें हम या तो आंखें खराब हो सकती हैं या फिर किडनी खराब हो सकती है या हमारे शरीर की नसें खराब हो सकती हैं,
1: जी
2: इनको हम बोलते हैं माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन या घातक प्रभाव। और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी इसके शुगर के होते हैं जिसमें ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक हो सकता है।
1: जी
2: तो
1: जी
2: ये सारे दुष्परिणाम इस बीमारी की वजह से हो सकते हैं। तो रिया जी मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि शुगर ही वह बीमारी है जिसकी वजह से सबसे अधिक किडनी खराब होती है पूरे विश्व में। अगर किडनी खराब होने का सबसे बड़ा कोई कारण है तो
1: जी
2: वह
1: जी
2: शुगर है। ब्लाइंडनेस जिसको हम लोग अंधापन भी कह सकते हैं, उसका भी सबसे बड़ा कारण शुगर ही है। और नॉन ट्रॉमेटिक लिम्ब एम्पुटेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि बिना चोट लगे अगर पैर काटने का कोई कारण सबसे बड़ा है तो वह शुगर ही है। और साथ ही साथ जिन लोगों को शुगर है उन्हें हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज होने का चांस जो है जिसको शुगर नहीं उसकी तुलना में 10 गुना ज़्यादा होता है। तो ये शुगर है। और एक चीज़ मैं एक इसी संदर्भ में ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में 2021 वर्ल्ड डायबिटीज़ डाटा के हिसाब से अभी तक 53 करोड़ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो कि 2030 तक 64 करोड़ और 2045 तक करीब 78 करोड़ पूरे विश्व में इस बीमारी के मरीज हो जाएंगे। तो आप जान सकते हैं किस तरह से प्रसार कर रही है बीमारी। पूरे दुनिया में अभी तक सबसे अधिक शुगर के मरीजों की संख्या चाइना में है, जहां पर 140 मिलियन शुगर के रोगी हैं और दूसरे नंबर में विश्व में हमारा देश आता है। हमारे देश में 74 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट इस समय हैं और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, चौथे नंबर पर अमेरिका और पांचवें नंबर पर इंडोनेशिया है।
1: डॉक्टर साहब ये तो

0: हम पंच जान गए कि ई शुगर बीमारी का आए और ई कितनी घातक है।
1: मूल डॉक्टर साहब पहले ही देखा जाता रहा कि जेके घर में बहुत सुख सुविधा मौजूद है या कहा जाए कि जो साधन संपन्न लोग रहते रहे उनका ही पहले होत रही। मूल अब ही देखा जा रहा है कि अमीर गरीब और हर उम्र के लोगन का हो रहा है, तो एक कारण का है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने रियाज जी, वाकई में पहले इसको अमीरों की बीमारियां कहते थे। अमीरों की बीमारियों में बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये चार बीमारी आती थी। इसको कहते थे डिसीज ऑफ रिच पीपल्स, लेकिन आजकल देखने को यह रहा है कि ये बीमारी लगभग सभी ग्रुप के लोगों में हो रही है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जात धर्म का हो, कहीं किसी भी देश का हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज के समय में जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, ये बहुत ज्यादा है। और फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि कम कार्य करने की क्षमता जो है, लोग कम कार्य कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है। और साथ में जो मोटापा है लोगों में बढ़ता जा रहा है, मोटापा बढ़ने की वजह से, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से और अपने खान पान बदल जाने की वजह से आजकल शुगर की बीमारी जो है लगभग सभी वर्ग के लोगों में हो रही है। हमारे देश में पहले हम लोग मोटा अनाज यूज किया करते थे, पहले मोटा अनाज खूब चलता था जिसमें रागी, जौ, बाजरा ये सब खूब लोग खाया करते थे।
0: जी डॉक्टर साहब, आपन सरकार जो है हम किसान पंचन का अभिनव प्रोत्साहित कर रही है कि मोटा अनाज उगावा जाए और एक ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए,
2: क्योंकि इसमें बहुत हाई फाइबर था। तो जब तक हमारे देश में ये मोटे अनाज का लोग प्रयोग करते थे तो उसमें ये बीमारियां इतनी प्रभावी नहीं थी जितना कि अब है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लाइफ स्टाइल लोगों की बदल गई है, खान पान और कार्य करने की दक्षता जो है बदल गई है, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं।
1: डॉक्टर साहब, कैसे जाना जाए कि अमुक व्यक्ति का मधुमेह की बीमारी हो चुकी है या कई लक्षण कौन कौन से हैं?
2: जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लक्षण हम जानेंगे तभी समझ पाएंगे हमें कौन सी बीमारी है जिसके हम ग्रसित हैं। शुगर की बीमारी में जो सबसे पहला लक्षण आता है, अगर किसी व्यक्ति को बार बार उसको प्यास लग रही है ना, उसका मुंह सूख रहा है, उसको बार बार भूख लग रही है, या उसका वजन कम हो रहा है, या बार बार उसको पेशाब लग रही है, या बार बार उसको इन्फेक्शंस हो रहे हैं जो जल्दी सही नहीं हो रहे हैं, जैसे बार बार निमोनिया हो जा रहा है या सर्दी जुकाम हो जा रहा है, या उसको उसके गुप्तांगों में बार बार इन्फेक्शन लग जा रहा है, दांत जैसा हो जा रहा है, खुजली हो रही है, या किसी को टीबी की बीमारी लग जा रही है, तो मेरे ख्याल से ये सारे लक्षण ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि एक बार आपको शुगर अपना चेक करा लेना चाहिए। तो इसी संदर्भ में अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, उसका वजन उसके हाइट के हिसाब से ज्यादा आ रहा है, तो भी वो अपने आप को शुगर के लिए चेक करा सकता है।
1: ये बीमारी कोनो खास उम्र में हुए के ज्यादा संभावना रहा था, कौन ऐसे व्यक्ति हैं कि वे अपन शुगर के जांच जरूर करवा लिए?
2: जी, बिल्कुल सही आपने कहा। पहले तो ये था कि मिडिल एज से लेकर के ओल्डर एज के लोगों में, जो 40-50 साल की ज्यादा की उम्र के लोगों में ये बीमारी पहले हुआ करती थी
1: जी।
2: लेकिन अभी रियाज जी देखने को ये मिल रहा है कि लगभग सभी उम्र के छोटे बच्चों को भी शुगर देखने को मिल सकता है, मिडिल एज के लोगों को भी मिल रहा है और जो ओल्डर एज के लोग हैं उनको भी शुगर हो रहा है। तो कुछ ऐसे विशेष वर्ग हैं जिसमें जो हाई रिस्क पे रहते हैं, जिनको शुगर होने के चांसेस ज्यादा हैं, कौन कौन से लोग ऐसे हैं जिनको टेस्ट कर लेना चाहिए, अपने आप को एक बार रैंडम शुगर जांच कर लेना चाहिए, वो लोग वही हैं जिनके परिवार में, क्या मान लीजिए माता पिता को अगर शुगर है तो उनके बच्चे अपना शुगर एक बार जरूर चेक कराएं। अगर किसी को पहले हार्ट की समस्या हो चुकी है, बीपी भी उसको है, या उसका फैट लेवल जिसको ट्राइग्लिसराइड कहते हैं हम लोग, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर ये 250 से ज्यादा आ रहा है तो उसको भी अपना शुगर एक बार चेक करा लेना चाहिए। कोई स्त्री है, उसको अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम एक होती है जिसमें माहवारी गड़बड़ हो जाती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज कहते हैं हम लोग, अगर वो है, घर में ही रुके हैं, घर में ही काम धंधा करते हैं, बाहर नहीं ज्यादा जा रहे हैं, तो वो भी अपना शुगर चेक करा सकते हैं। साथ ही साथ देखने को ये मिला है, जब भी किसी को शुगर की बीमारी होने वाली होती है या हो रही है तो उसके गर्दन पे काली रेखा जाती है, स्किन पे काली रेखा जाती है, जिसको हम लोग एकेंथोसिस निग्रीकेंस कहते हैं। या कई बार देखने को ऐसा भी मिला है कि स्किन में छोटे छोटे पिंपल्स टाइप के निकल जाते हैं लंबे लंबे, जिसको हम लोग स्किन टैक्स कहते हैं। तो ये इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस मार्कर, अगर ये किसी को है तो इसका मतलब शुगर उसे होने वाला है, तो उसको शुगर की जांच कर लेनी चाहिए। और इसी लाइन में रियाज जी आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर शुगर किसी को होने वाला है या कौन से वो लोग हैं जो रिस्क में हैं, उन्हें टेस्ट कराना चाहिए, तो उन्हें जिनका शुगर के लक्षण आने लगे, जैसे कि अगर बार बार प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, या बहुत थकावट लग जा रही है, हाथ पांव में झंझनाहट हो रहा है, या आंखों से धुंधलापन आ रहा है, या फिर नपुंसकता आ रही है, तो ऐसे लोगों को चेक करा लेना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, अनुवांशिक बीमारी भी एक कहा जा सकता है, जैसे माँ और बाप का है तो बच्चन माँ नहीं जा सकता।
2: बिल्कुल बिल्कुल रियाज जी, अनुवांशिक भी शुगर हो सकता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि शुगर जो होता है ये चार तरह का होता है, जिसमें टाइप 1 शुगर होता है, टाइप 2 शुगर होता है, और प्रेगनेंसी में जो शुगर होता है उसे जीडीएम कहते हैं हम लोग, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, और चौथे प्रकार का जो होता है स्पेशल टाइप ऑफ शुगर होता है। तो इसमें जो टाइप 1 वाला शुगर है ये जेनेटिक होता है, अनुवांशिक होता है, तो ये पीढ़ियों में भी आगे जा सकता है। और जो टाइप 2 वाला शुगर है वो 95% मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक लोगों में होता है, वो उन्हीं लोगों में होता है जो लोग अपने जीवन में इसको एक्वायर करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल या मोटापे की वजह से।

0: एक वाली जो आप श्रेणी बताएं
1: जी
0: कि अगर माँ बाप का है शुगर
1: जी
0: तो
1: जी
0: गर्भवती महिलाओं के लिए कौन संदेश दिया चाहिए, कौन कौन सावधानी बरतें कि हुआ वाला जो बच्चा है
1: जी
0: वह का
1: जी
0: शुगर की बीमारी ना हुए।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गर्भवती महिलाओं के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि अगर वो गर्भ धारण करने के इच्छुक हैं, अपना सारा एक बार टेस्ट करा लें डॉक्टर से मिल करके,
0: जी
1: अपने शुगर की सारी जांचें करा के देख लें कहीं वो शुगर उनको होने वाला तो नहीं है और शुगर का क्या स्थिति है। कई बार ऐसा होता है कि शुगर नहीं है लेकिन वो प्री डायबिटिक श्रेणी में आ गए हैं, शुगर से के पहले की स्टेज में आ गए हैं, तो अपने जो निश्चित टेस्ट हैं डॉक्टर द्वारा बताए गए टेस्ट हैं उसको करा करके कन्फर्म कर लें कि शुगर उनको होने वाला तो नहीं है।
0: एक स्वस्थ व्यक्ति जो है कौन कौन सावधानी बरते कि उनका जो है शुगर ना हो पावे।
1: स्वस्थ व्यक्ति के लिए चूंकि स्वास्थ्य हमारी प्रथम संपत्ति है,
0: जी
1: स्वस्थ रहने के लिए हर उपाय लोग करते हैं, लोग लाखों खर्चा करते हैं, बहुत दूर दराज तक लोग जाते हैं अपने अच्छे स्वास्थ्य को, अच्छे जीवन को पाने के लिए।
0: जी
1: तो चूंकि शुगर अगर एक शब्द में कहा जाए कि एक बीमारी नहीं है, कई बीमारियों का गुच्छा है,
0: जी जी
1: क्योंकि एक बीमारी आई तो कई बीमारियों को घसीट के ले आती है शरीर
0: बिल्कुल
1: के
0: बिल्कुल
1: अंदर। तो अगर हम शुगर पर नियंत्रण करते हैं तो हम कई बीमारियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो शुगर ना हो इसके लिए हमें एक तो फिजिकली हम एक्टिव रहें, हम रेगुलर जो है एक्सरसाइज करते रहें,
0: जी
1: अपना डाइट सही रखें और हम रेगुलर चेकअप भी करके देखते रहें। तो रिया जी हम बता देना चाहते हैं कि जो इसका निवारण है डायबिटीज का, अगर मान लीजिए डायबिटीज आपको हो गई है तब तो फिर आपको इलाज करना ही है,
0: जी जी
1: लेकिन जो इसका इलाज होता है डायबिटीज का, इसमें सबसे पहला इलाज जो हम लोग श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि इसमें सबसे पहला इलाज है कि अपना आप लाइफ स्टाइल चेंज करिए, है ना, अपना खान पान और अपना डेली एक्सरसाइज और योगा इस करें कुछ जिससे आप शुगर की बीमारी के होने से बच सकते हैं। तो खाने में मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप खाना आप खाते हैं तो खाने का एक निर्धारित मात्रा होती है कि कितना खाना खाएं, कौन सा खाना खाएं। खाने में तरह तरह के अवयव हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट 50 से 60% हो, फाइबर 25 से 40 ग्राम हो, फैट जो है 30% हो, और फैट में हम ये बता देना चाहते हैं कि फैट ऐसा फैट हो कि जिसमें चूंकि हम लोग घरों में जो सब्जियां दाल बनाते हैं तो उसमें हम लोग तेल जरूर यूज़ करते हैं
0: जी
1: अपने
0: जी जी
1: सब्जियों में, तो तेल जब भी हम यूज़ करें किसी एक तेल पर ना टिकें,
0: जी
1: हम तेल को
0: अच्छा
1: रोटेशन में रखें। जैसे कि इसमें हम लोग ग्राउंड नट ऑयल के साथ हम मस्टर्ड ऑयल मिला के यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड नट ऑयल के साथ हम कैनोला ऑयल एक आता है उसको हम मिला के यूज कर सकते हैं, या पाल्मोलिन तेल के साथ हम सोयाबीन का तेल यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे तेल हैं जिसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसा फैट है जो हमारे लिए फायदेमंद है।
0: जी डॉक्टर साहब, तमाम ऐसी बीमारियां हुआ थे कि उनका एक कोर्स करे के बाद में, इलाज के एक बाद में वो दवा बंद हो जाता है। मुला शुगर के मामले में देखा जा रहा है कि एक बार चालू हो गई तो वो हमेशा चले करत है, का सही है या कोनो ऐसा उपाय है कि बंद हो सकता आगे चल के।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कई बार जब शुगर की बीमारी की खोज हुई तो उसमें पहले बार कई बार ट्रायल किए गए कि
0: जी
1: कुछ ऐसी दवाएं खोजी जाएं या कुछ ऐसा किया जाए कि शुगर एकदम से ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी ट्रायल में, किसी भी स्टडी में, किसी भी रिसर्च में ऐसा नहीं देखने को मिला है कि कोई ऐसी दवाई हमारे पास हो जिससे हम शुगर को एकदम से जड़ से ख़त्म कर दें। तो शुगर एक बार अगर हो गई है तो जीवन भर के लिए दवा खानी पड़ती है, इसमें अपने आप को जीवन भर सावधान रखना पड़ता है, अपना खान पान, अपना एक्सरसाइज वगैरह हमें जीवन भर सही करके रखना होता है, साथ में डॉक्टर को दिखाते रहें और सही दवाइयाँ खाते रहें। रिया जी एक चीज मैं और भी जो छूट गया था मैं आपको खान पान में बता देना
0: जी
1: चाहता
0: जी
1: हूँ
0: जी
1: कि जब भी खान पान हम अपना सही करें तो उसमें हम प्रोटीन की मात्रा भी 15% तक ही रखें, उससे अधिक ना हो, और नमक की मात्रा 5 ग्राम से कम हो, और जब हमारे खाने में फाइबर की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, फाइबर की मात्रा ज्यादा हो और कैलोरी कम हो। तो फाइबर की मात्रा हम पा सकते हैं रागी से, ज्वार से, बाजरा से, ओट से, या दालें या सब्जियां या फल फ्रूट और फ्लैक्स सीड कहते हैं उसको हम यूज करके, और मेथी वगैरह का यूज ज्यादा करें, इससे फाइबर हमको मिल सकता है। साथ ही साथ किसी तरह का नशा ना करें, अल्कोहल लेते हैं तो उसको फौरन बंद करें, और आजकल लोग कहते हैं कि जो नॉन शुगर स्वीटनर्स आ रहे हैं आजकल जिसमें शुगर नहीं लेकिन मीठा है तो उसको यूज ना करें चाय में, है ना, शुगर फ्री गोली यूज करते हैं तो उसको भी यूज ना करें, तंबाकू और स्मोकिंग करते हैं तो उसको भी बंद करें।
0: डॉक्टर साहब, समय की एक पाबंदी होता है,
1: जी
0: अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि आगे बातचीत बढ़ाई जाए, तो चलत चलत हमने पंचन का कौन संदेश दिया चाहिए।
1: जी जी जी मैं आप सभी श्रोताओं से यह कह देना चाहता हूँ कि मधुमेह को कतई नज़रअंदाज ना करें। यदि आपको पॉलीयूरिया या बार बार पेशाब लग रही है, बार बार प्यास लग रही है, भूख लग रही है, या थकावट लग रही है, नपुंसकता जैसा कोई लक्षण आ रहा है, या दांत खाज खजुली हो रहा है, या आपको लग रहा है कि समय से पहले आपके बाल पक जा रहे हैं, झुर्रियां आ जा रही हैं, बुढ़ापा के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, या कहीं घाव हो गया तो घाव भर नहीं रहा जल्दी, या आपको बार बार सर्दी जुकाम हो जा रहा है, तो आप फौरन डॉक्टर से मिल करके अपना शुगर की जांच जरूर कराएं। आपने शुगर को कंट्रोल कर लिया तो आप अपनी किडनी को बचा लेंगे, आप अपनी आंखों की रोशनी जाने से बचा लेंगे, ब्रेन हेमरेज हार्ट अटैक से बचा लेंगे अपने आप को, और अपना जीवन लंबा कर सकते हैं। तो रियाज जी, शुगर को कंट्रोल करके हम अपने आप को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं और सही सुचारू रूप से स्वस्थ रह करके हम जीवन यापन कर सकते हैं।
0: डॉक्टर सतीश कुमार साहब, आप आकाशवाणी स्टूडियो आयो और मधुमेह कारण लक्षण और बचाव विषय पर इतनी बढ़िया जानकारी दी हो, डॉक्टर साहब बहुत

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच,
0: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
1: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
0: BSA ऑफिस बस्ती,
1: नगर निगम परिषद देवरिया,
0: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा,
1: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर,
0: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
1: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
0: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
1: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन श्रावस्ती,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थ नगर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच,
0: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
1: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
0: DSA ऑफिस बस्ती,
1: नगर निगम परिषद देवरिया,
0: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा,
1: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर,
0: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
1: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
0: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
1: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन श्रावस्ती,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थ नगर।
2: रियाज भैया,
3: हाँ सर,
2: देखो ये संदेश के पहले गौने सुना रहा होगा, खिमटा रहा, कहाँ गई साइरन, और यह का स्वर देन रहा है रेणु शर्मा बहनी, तो इसके लिए उनका धन्यवाद कह दीजिए भैया।
3: बिल्कुल धन्यवाद है। और देखो अब जो अपन खेती पाती के जो काम है वो का देखा बहुत ज़्यादा जरूरी है।
2: बिल्कुल जरूरी है भैया, और यह समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा घाम हो रहा है, तो ये जो समय है कहती मतलब सवेरे या तो काम करो या तो संझा काम करो, लेकिन कि ये बात का ध्यान रखे का है कि अपन जो है खेत पूरी तरह सूखा है भैया,
3: पूरी तरह सूखा है, और खास करके ये जो बीज की जो तैयारी है, यह बीज में जो समय रहा था और जो घाम बहुत ज़्यादा हुआ था, ये मौसम में अपन अगर खेत के हम गहरी जुताई कहे हैं और नहीं कहे हैं तो कई के होगा कुछ दिन तक जब छोड़ दिन जाते तो वहाँ जो कीटाणु रहते हैं या जो खरपतवार रहते हैं वो नष्ट हो जाती हैं और आगे अपन फसल के जो उत्पादन रहते हैं वो प्रभावित नहीं होते।
2: बिल्कुल भैया, जो हानिकारक कीटाणु रहती वो नष्ट हो जाती है, और जो अपने खेत के लिए पोषक तत्व की जरूरत है वही के लिए हम सबका यूज चाहिए, जो फसल अवशेष रहा है तो उसका हम

0: जो है गड्ढम दबाए रन और उका जो है पूरी तरह की खाद बनाए लेना है, तो अब समय आए पे उका अपने खेत में डायरेक्ट जरूरत है ना।
1: बिल्कुल, जो है जो ना आप बतायो कि फसल से कंपोस्ट बनाने वाली बात, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे कहा हुआ था कि जब हम पंच कंपोस्ट बना लिए थे अपने खेत में मौजूद, हमका कहूँ बाहर से लावे की जरूरत नहीं पड़ता है।
0: भैया
1: तो इसे कहा हुआ था कि एक तो अपने जो खेत के जो उन माटी में जो उन पोषक तत्वों की कमी रहा थे वो हम पूरी कर दी थे, और दूसर चीज़ ये है कि ये जो रासायनिक खादन के ऊपर जो निर्भरता रहा थे वो
0: वो
1: कम
0: कम
1: हो
0: हो
1: जाता
0: जाता
1: है,
0: है।
1: और अपन फसल पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण रहा थे।
0: बीमारी से हम सबका दूर रखत
1: बिल्कुल
0: है ना। और अगर बात जो है भैया यही सबका हम सबका ध्यान रखे का है, कहे से अब जो है अपने खरीफ के फसल के लगाव बारी आवे वाली है, तो हम सबका यू चाहिए कि अपने खेत के पूरी तरह हम सब तैयारी कर ली।
1: बिल्कुल तैयारी कर ली, और इसके साथ साथ में अगर हम जागरूक किसान हन तो एक बात और नहीं भूले का है कि सरकार की तरफ से जो नहीं बतावा जा रहा है कि किसान रजिस्ट्री करवाए लीन जाए, तो अगर हम पंच बहिन नहीं करवाए हन तो इका जरूर करवाए ली।
0: रजिस्ट्री करवा लियो। और भैया एक चीज़ और ध्यान रखने का है, वो सबसे ज़रूरी यू है कि अपन खेती पाती अपन हरहा गुरु एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से जुड़े हैं, तो उनकर भी ध्यान हम सबका रखब ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सही बात कही, कहे से कि जो ना अपन हरहा गोरु हैं अपने खेतिन पाती नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार के आर्थिक एक रीढ़ होती समझ लियो, कि अगर अपने
0: भैया
1: हरहा गोरु जो है उनका कुछ हो जाता है तो सीधे जो है अपने आर्थिक स्थिति पर जो है असर पड़ जाता है।
0: और सबसे बड़ी भाई उनका भी समस्या हो जाता है और अपना आर्थिक स्थिति तो डगमगा ही जाता है, तो इसके लिए हम सबका ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनका कोनो बीमारी के लक्षण दिखत है तो जो है चिकित्सक को बुला के उनका हम सबका दिखा देख चाहिए, और कोनो वह तरह का तो समय समय पर टीका लगवा लेक चाहिए। अब जैसे अपने पशु में है एक गला घोटू रोग होता है ना, तो अगर उनके तनिको लक्षण दिखाते तो पहले अगर टीका लगवाएं तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर का दिखा दे। और यह के बारे में भी आज एक जानकारी लेके आए हैं भैया।
1: बिल्कुल, तो जानकारी करवा दी जाए पशुओं में गला घोंटू कारण और निवारण, ये विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी भैया, और इनसे बतकही कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो इनके बातचीत सुना जाए और जाना जाए कि गला घोंटू बीमारी कहाँ हुआ है और इसे कैसे अपने पशुओं का बचाव हो जाए।
0: सुना जा भैया और पंच भी अभी सुने।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं वहाँ पशुओं में कुछ समस्याएं आती हैं, और इन्हीं समस्याओं में एक पशुओं में गला घोंटू है, इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये पशुओं में गला घोंटू है क्या?
3: जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, और सभी हमारे पशुपालक भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। और ये सर, जहाँ तक ये पशुपालन में सबसे पुरानी बीमारी जो मानी जाती है और गाय और भैंसों की बहुत ही जानलेवा बरसात के सीजन की बीमारी गला घोटू
2: जी
3: बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, जिसमें गले में सूजन आ जाती है, बहुत तेज़ बुखार होता है और राल गिरने लगती है। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं,
2: जी
3: और इसमें सबसे खतरनाक स्थिति ये होती है कि कई बार अगर ज़रा सा भी लापरवाही की जाए तो 12 से 24 घंटे में ही पशु की मृत्यु हो जाती है।
2: अच्छा, मौका
3: जी,
2: नहीं मिलता।
3: तो पशुपालक को मौका नहीं मिलता कि वो इलाज कर सके, इसलिए इसका शुरुआत में लक्षण जानना और उससे बचाव करना ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे पशुपालक भाइयों को।
2: तो खास लक्षण कौन कौन से हैं, पशुपालक भाई जाने कैसे, क्योंकि कई लक्षण अन्य बीमारियों से भी मिलते हैं।
3: जी, ज़्यादातर तो ये गायों और भैंसों में ही होती है।
2: जी
3: दूसरी बात यह है कि ये अभी तक सामान्य रूप से जो इसका सीजन हुआ करता था कि बरसात के समय में जब खूब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आर्द्रता बढ़ी रहती है,
2: हाँ
3: उसके साथ साथ जिन पशुओं में कई बार स्ट्रेस की कंडीशन हो जाती है,
2: तनाव।
3: तनाव हो जाता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी, बहुत
2: जी
3: ज़्यादा बारिश हो गई, जानवर कमज़ोर है, और इस तरह का जो पर्यावरणीय तनाव बन पड़ गया,
2: जी
3: तो भी ये अब आजकल बिना बरसात के समय में भी कभी कभी देखने को मिल
2: इसके
3: रही है।
2: लक्षण देखते हैं।
3: जी, इसमें सबसे पहले पशु का बहुत तेज बुखार हो जाता है,
2: अच्छा
3: बुखार लगभग 106 डिग्री तक हो जाएगा,
2: जी
3: गुमसुम खड़ा हो जाएगा पशु, और उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उसके मुंह से राल गिरना शुरू हो जाएगी।
2: जी
3: शुरुआत में कई बार ऐसा होता है कि एक बार बड़ी देर बाद जब मुंह खोलेगा तो ढेर सारी राल गिरेगी, और अगर उसका इलाज समय से ना कर दिया गया तो बुखार बढ़ने और राल आने के साथ साथ ही गले में सूजन शुरू हो जाती है।
2: जी
3: इस गले में सूजन होने में शुरुआत में तो एकदम टेटुआ पर जहाँ से गला शुरू होता है
2: जी
3: वहाँ पर सूजन होती है, लेकिन यह सूजन धीरे धीरे बढ़ते हुए

0: नीचे दोनों टांगों के बीच में, जिसको हमारे पास पालक भाई लोटा कहते हैं,
1: हाँ
0: वहाँ तक आ जाती है।
1: अच्छा
0: ये सूजन काफ़ी गर्म होगी, कड़ी होगी, और जैसे जैसे सूजन की स्थिति बढ़ती है, फिर पशुओं में घड़घड़ाहट, सांस लेने में घड़घड़ाहट होने लगती है।
1: जी
0: इसीलिए इसको कुछ जगहों पर हमारे देश में घुर्रका कहते हैं,
1: हाँ घुरका बोलते हैं
0: जी,
1: अलग
0: क्योंकि
1: अलग।
0: घुरघुराहट होती है गले में,
1: जी
0: जी।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एक जीवाणु जनित बीमारी है,
0: जी
1: तो इसका कारक जीवाणु ही है।
0: जी इसका कारक जीवाणु

0: अलग अलग
1: घुरघुराहट होती है गले में।
0: जी, तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि एक जीवाणु जनित बीमारी है,
1: जी
0: तो इसका कारक जीवाणु ही है।
1: जी इसका कारक जीवाणु है और उसका नाम पास्चुरेला मल्टोसिडा है।
0: हाँ
1: और ये जीवाणु ज़्यादातर जो इसकी ग्रोथ होती है वो ह्यूमिडिटी में, बारिश के समय में, जहाँ पे ज़्यादा जल भराव की स्थिति रहती है वहाँ पर इसकी संख्या बढ़ जाती है।
0: अच्छा
1: और ऐसे में जो हमारे कमज़ोर पशु हैं या जिन पशुओं पर पहले से स्ट्रेस है वो प्रभावित हो जाते हैं।
0: तो एक पशु से दूसरे पशुओं में भी संक्रमण
1: जी
0: होता।
1: एक पशु से दूसरे पशु में बहुत तेज़ी से संक्रमण होता है और उसमें ये संक्रमण ज़्यादातर उस बैक्टीरिया को या जीवाणु को खाने से, सूंघने से। जैसे हमारे पशुपालक भाई कई बार छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं कि बरसात के समय में अगर पशु मरा तो
0: हाँ
1: उसको बाहर ही फेंक दिया उन्होंने,
0: जी
1: या कहीं जल प्रवाहित हो रहा है उसमें फेंक दिया, और उस पशु में बहुत ज़्यादा उस जीवाणु का
0: संक्रमण,
1: कंसंट्रेशन संक्रमण रहता है, उसको कहीं सूंघ लिया पशु ने, उसके अगल बगल का पानी पी लिया, उसकी वजह से
0: या
1: दूसरे
0: चारा
1: पशु
0: खा लिया।
1: चारा खा लिया। जी उसके राल जो गिरा हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा जीवाणु होते हैं, उसको अगर खा लिया दूसरे पशुओं ने तो वो भी संक्रमित हो जाते हैं।
0: या संक्रमित पशु के नाद में कोई दूसरा जानवर खा
1: जी
0: ले।
1: जी जी उसके जस नाद में जो राल गिर रही है उससे उसको संक्रमण फैलने की पूरी संभावना रहती है।
0: तो डॉक्टर साहब, इलाज से बेहतर बचाव है।
1: जी
0: बचाव की बात करें कि पशुओं में गलाघोंटू हो ही ना, इसके कौन कौन से उपाय हैं?
1: बचाव में इसमें सबसे पहले तो जो हमारे देसी उपाय हैं कि पशुओं का इम्यूनिटी बढ़ाई जाए,
0: जी
1: उनके शरीर में तनाव को कम से कम रखा जाएगा,
0: हाँ
1: खुले हवादार स्थान पे उनको बांधा जाए, बहुत ज़्यादा भीगने से, बहुत ज़्यादा धूप से, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले एटमॉस्फेयर से बचाया जाए।
0: जी
1: दूसरा ये कि जैसे हमारे पशुपालक भाइयों को आसानी से नीम, तुलसी ये सब पत्तियाँ मिल जाती हैं,
0: हाँ
1: नीम की पत्तियाँ खूब ऐसे सीजन में जब थोड़ा सा तनाव है पर्यावरण में
0: जी
1: तो वो पशुओं को खिलाया जाए, अच्छा आहार, संतुलित आहार दिया जाए ताकि उनको तनाव की स्थिति से और पशुओं की इस बीमारी से लड़ने की क्षमता बनी रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें टीकाकरण।
0: अच्छा,
1: जी
0: ये बचाओ है।
1: हाँ टीकाकरण बचाव के लिए, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस बीमारी का टीकाकरण प्रत्येक वर्ष मानसून से पहले मई में कराया जाता है।
0: जी
1: अभी हमारे पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालक भाइयों के गाँव घर घर जा करके निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। उसमें सभी पशुपालक भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और साथ में उसको रखें।
0: और 100% जानवरों को टीका लगवाएं।
1: जी 100% टीका लगवाएं, और टीकाकरण के साथ साथ उसमें जो जानकारी ये रखें कि जो शुरुआत की बीमारी है उसी समय पता चल जाए, ताकि अगर हो जाती है किसी को तो इलाज समय पर मिल जाए, नहीं तो अगर रात भर का समय मिल गया तो सुबह फिर पशु के बचने की संभावना कम हो जाती है।
0: डॉक्टर साहब, टीकाकरण जैसे आपने बताया कि बचाव है, और अगर जानवर को लग जाए तो संभावना कम रहती है बीमारी
1: जी
0: की,
1: बहुत कम हो जाती है।
0: तो कौन कौन से जानवर को इसका टीका लगवा सकते हैं?
1: ये सभी पशुओं को जो गाय और भैंस, महीष बंसी पशु हैं,
0: जी
1: इनमें जो मिनिमम 6 माह की उम्र तक के
0: जी
1: बच्चों को नहीं लगाया जाता है, 6 माह की उम्र से ऊपर के सभी पशुओं को ये
0: अगर
1: टीकाकरण किया
0: कोई
1: जा
0: बीमार
1: सकता है।
0: जानवर है या गर्भित
1: बीमार
0: जानवर।
1: पशु को नहीं लगाना चाहिए। गर्भित पशु को तो हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, लगवाते हैं, उसको भी टीकाकरण कराते हैं, क्योंकि बीमारी जो है वो बहुत खतरनाक है और जीवाणु जनित है, इसलिए सभी पशुओं को जो 6 महीना से ऊपर के हैं उनको लगाया जा सकता है।
0: डॉक्टर साहब, ये तो बचाव के उपाय रहे गला घोंटू की। जो अगर मान लीजिए कोई पशु संक्रमित हो गया गला घोंटू से, तो उसके इलाज में और उसके पहले प्राथमिक उपचार में क्या कर सकते हैं,
1: जी
0: कौन से और उपाय करें कि और पशुओं में संक्रमण न फैले?
1: जी सबसे पहले तो जो प्रभावित पशु है उसको अलग कर दें, ताकि उसकी लार से और अन्य चीज़ों से जो भोजन है उसका, उससे संक्रमण न फैले। दूसरा ये है कि उसको हवादार स्थान पर बांधें। पशुपालक भाई हमारे गलती करते हैं कि उनको जैसे ही गला घोटू का पता चलता है या घरघराहट शुरू होती है, बोरा या ये आपका मिर्चा का धुआं करते हैं,
0: जी
1: ये बहुत ही गलत है, इससे और पशु में अंदर सूजन बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बजाय उनको भाप का, या अगर
0: पानी का
1: हाँ
0: भाप,
1: पानी का भाप, उसमें कपूर डाल करके, या उसमें ये आपका
0: मेंथाल
1: मेंथा
0: मिंट,
1: मेंथाल मिंट जी जो पेपरमिंट का तेल रहता है उसको डाल करके अगर सुंघाएं तो उससे बड़ा आराम मिलता है पशु को, जब तक इलाज की स्थिति बन रही है। और उसके साथ ही साथ दूसरा चीज़ ये है कि जितनी जल्दी हो सके, यदि तेज़ बुखार और बहुत ज़्यादा सुस्ती पशु में आ रही है, लार धीरे धीरे शुरू हो रही है, तो तुरंत

0: चिकित्सक को बुला करके आजकल ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं
1: जी
0: सेफ्टिओफर जैसी जो लगा करके तुरंत नियंत्रण में आ जाता है, परंतु इलाज 3 से 5 दिन तक अवश्य कराएं, वो ठीक भी होता रहे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पशु ठीक हुआ और इलाज बंद कर दिया गया 3 दिन से पहले, फिर दोबारा हो गया
1: जी,
0: रिलैप्स कर गया,
1: यानी दोबारा संक्रमण,
0: दोबारा वो फिर से संक्रमण हो गया। तो ये जब तक ठीक होकर के डॉक्टर साहब सलाह ना देने की ना करिए। अच्छा, एक और सलाह इसमें रहती है, कई बार जो हमारे गांव के या आसपास के पुराने लोग जो इलाज से संबंधित रहते हैं
1: जी,
0: वो सलाह देते हैं कि नहीं सूखा भूसा खिलाइएगा, हरा चारा मत, ऐसा ना करें। सूखा भूसा और ज्यादा अंदर खून का प्रवाह
1: तकलीफ
0: बढ़ाता है, तो उसको मुलायम चारा दें, हरा चारा मुलायम साफ सुथरा चारा दें, और पशु को जितना सॉफ्ट डाइट दे सकें, उस समय दलिया वगैरह बना करके भी दे देते हैं लोग, वो भी दिया जाता है, ताकतवर और सॉफ्ट डाइट दी जाए। इसके साथ ही साथ पशुपालन विभाग से हमारे पशु चिकित्सक पशु चिकित्सालयों पर उपलब्ध हैं, उसके अलावा 1962 की सेवा उपलब्ध है,
1: 1962
0: पर फोन करके तुरंत बुलवाएं, नहीं मिलते तो तुरंत डॉक्टर अस्पताल से जा करके ले आवें और हमारे पशु चिकित्सक से इसका इलाज तुरंत कराएं।
1: डॉक्टर साहब, पशुपालक भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे पशुओं में गला घोंटू कारण और निवारण के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके पशुपालन निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9453503508688 94153508688 9453508688
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का पशुओं में गला घोंटू कारण और निवारण के बारे में? डॉक्टर साहब
0: जी, मैं पशुपालन से जुड़े हुए अपने सभी भाइयों बहनों से कहूँगा कि गला घोंटू एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पशुओं को अच्छे से अच्छा चारा दें, समुचित आहार दें, खुली हवा में रखें। यदि किसी कारण से बीमारी होती है तो तुरंत उस पशु को अलग करें, और दुर्भाग्य से यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसको कायदे से दफना दें, ना कि खुला छोड़ दें, जो कि संक्रमण का कारण और बन सकता है। तुरंत बीमारी होते ही पशु चिकित्सक को बुला के चिकित्सा कराएं और टीकाकरण अवश्य कराएं
1: और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें।
0: जी जी,
1: डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, और पशुओं में गला घोंटू है क्या, इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सरला बहनी,
3: हरे अजबिया,
2: देखो पशुओं में गला घोंटू कारण और निवारण विषय पर कितनी बढ़िया जानकारी दी हैं डॉक्टर संतोष कुमार द्विवेदी भैया, इनसे बढ़िया नीके तीनस पूछिन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो ई के लिए इनका दोनों पंचन का बहुत
3: बहुत धन्यवाद।
2: और अब देखो फिर समय है मनोरंजन के, तो एक बढ़िया सा आपने पंचन का गौनी सुनवाई दीन जाए। तो एक पूर्वी गीत है, तोहरी लागी नजरिया, सुनाई रहे अच्छे लाल सोनी भैया, सुना जाए आनंद लीन जाए।
3: सुना जाए भैया।

0: हाँ देखे हैं अच्छे लाल सोनी भैया कि कितना बढ़िया गाने सुनवाई,
1: बिल्कुल भैया,
0: बिल्कुल
1: आनंद
0: आनंद आए
1: आएगा।
0: हुआ। उम्मीद है अपने पंचन का भी पसंद आवा हुए। और देखो अभी जो अपन खेती पाती है वो मौसम के ऊपर आधारित रहा था, तो मौसम की जानकारी रहा था, तो अपने पंच जो है बढ़िया तिने से जो है वो तैयारी कर लिया था।
1: सही कहो भैया, कैसे जो है इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मौसम का अगर हाल पहले पता चल जाए तो बहुत अच्छा रहे हम सबके लिए, तो बता देंगे।
0: हाँ तो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज यानी 25 तारीख से लेकर 27 तारीख तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, और संभाग में जो है तेज़ धूल भरी आंधी जिसकी गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा है चले की संभावना है। और यही स्थिति कमोबेश जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज और कल रहे।
1: अच्छा
0: मूल जो आगे कुछ थोड़ा सा राहत मिले की संभावना है गर्मी से, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से लेकर 31 तारीख तक जो है कुछ स्थानों पर वर्षा और गरज चमक के साथ में

0: छार पड़े की संभावना है। और यही स्थिति जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक बरकरार रहे की उम्मीद है।
1: तो रियाज भैया, ये राहत भरी खबर है कि कम से कम मौसम थोड़ा सा अगर बदले तो बहुत अच्छा रहे। और भैया जो देखो, अब हम लेके आए हैं बाजार भाव।
0: हाँ तो
1: चार
0: सुनाइए।
1: मंडी के बाजार भाव है, लखनऊ, कानपुर, गोंडा, अयोध्या मंडी के। लखनऊ मंडी में गेहूं दड़ा है 2590 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 2585 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में है 2530 रुपये प्रति क्विंटल, अयोध्या में 2585 रुपये प्रति क्विंटल।
0: चाउर के बात की जाए तो लखनऊ मंडी में 3450 रुपया, कानपुर में 3440 रुपया, गोंडा में 3000 रुपया और अयोध्या मंडी में 3050 रुपया प्रति कुंतल।
1: सफेद मटर है 4420 रुपये प्रति क्विंटल लखनऊ मंडी में, कानपुर में 4510 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 4270 रुपये प्रति क्विंटल, अयोध्या में 4250 रुपये प्रति क्विंटल।
0: चना छोटा वाला उके दाम रहा लखनऊ मंडी में 6630 रुपया, कानपुर में 6460 रुपया, गोंडा में 6800 रुपया और अयोध्या मंडी में 6400 रुपया प्रति कुंतल रहा।
1: सरसों काली लखनऊ मंडी में 6700 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 7200 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 6500 रुपये प्रति क्विंटल, अयोध्या में 6500 रुपये प्रति क्विंटल।
0: लखनऊ मंडी में जो आलू उजरकी के दाम रहा लखनऊ मंडी में ई रहा 720 रुपया, कानपुर में 630 रुपया, गोंडा में 750 रुपया और अयोध्या मंडी में 725 रुपया प्रति कुंतल।
1: प्याज के भाव लखनऊ मंडी में 1130 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1250 रुपये प्रति क्विंटल, गोंडा में 1250 रुपये और अयोध्या में 1200 रुपये प्रति क्विंटल।
0: बैंगन के दाम रहा लखनऊ मंडी में 1900 रुपया, कानपुर में 1710 रुपया, गोंडा में 1700 और अयोध्या मंडी में 1470 रुपया प्रति कुंतल।
1: गुड़ पारी लखनऊ मंडी में है 4640 रुपये प्रति क्विंटल और कानपुर में है 4260 रुपये प्रति क्विंटल।
0: तो
1: भैया ये तो रहा बाजार भाव।
0: हाँ, अब अपने पंचन को बता दी जाए कि कल के कार्यक्रम में का सुनी है। तो लोकायतन कार्यक्रम में वार्ता सुनवाई जाए सहकारी समितियों का सशक्तिकरण, इके बारे में जानकारी दे हैं गौरी त्रिवेदी वहनी। और खेती किसानी कार्यक्रम में सुना जाए गन्ने की फसल में समेकित रोग प्रबंधन, और इके बारे में जानकारी दे हैं डॉक्टर दिनेश सिंह भैया और इनसे बतकही करी हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। और देखो अब यही के साथ में घड़ी ये इशारा कर रही है कि अपन जो कार्यक्रम है वो के समय समाप्त हो रहा है। तो पंचन से लीन जाए आज्ञा,
1: जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
5: इतनी भी क्या जल्दी थी।
4: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
6: और ये मेरी गुड़िया के नाम।
7: पर दादी
4: हाँ
7: आपके नाम
8: सब कुछ, मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है, कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
4: शुभ शुभ बोलो
7: क्या
8: आरबीआई कहता है,
9: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
10: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
11: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया

0: ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
2: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
1: शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह, जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट, दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना, दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की

0: सामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
3: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है, और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है, ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
4: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं। जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहां ट्रेनिंग्स दी गई हैं।
1: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो भेंट वार्ताएं। पहली भेंट वार्ता है थायराइड ग्रंथि की समस्याएं। ये भेंट वार्ता विश्व थायराइड दिवस पर विशेष है। इस भेंट वार्ता में प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष यादव से बातचीत कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: हर वर्ष मई माह में विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। थायराइड हमारे गले में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, जिसमें किसी कारणवश अगर कुछ समस्या आ जाए तो पूरा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसी विषय पर आज हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष यादव साहब हैं, जो SGPGI लखनऊ के एंडोक्रीन मेडिसिन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। और आज हम जानेंगे कि थायराइड ग्रंथि से मानव स्वास्थ्य का कितना गहरा संबंध है, थायराइड ग्रंथि हमारे लिए क्या क्या करती है, इसकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है।
2: थायराइड ग्रंथि जो है गले में होती है, वो सामने की तरफ एक बटरफ्लाई के शेप में, यानी एक तितली के शेप में होती है, और इसका मुख्य काम है थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन करना, जिसे हम T3-T4 के नाम से जानते हैं। और यह हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है, हमारे वजन को भी नियंत्रित करती है एक तरह से कह सकते हैं। दूसरा यह है कि ये जो थायराइड हार्मोन होते हैं जो इस ग्रंथि द्वारा निकलते हैं, वो हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हमारे हार्ट रेट को भी कंट्रोल करते हैं। हाँ, इसके बगल में अमूमन चार छोटी छोटी पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा भी होती हैं। तो इनका काम होता है शरीर में जो कैल्शियम है उसको रेगुलेट करना, कैल्शियम कम ज्यादा ना हो और एक नॉर्मल मात्रा में बना रहे, उससे हड्डी को मजबूती प्रदान होती है, यह उसका मुख्य काम है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, थायराइड और पैराथायराइड जो ग्रंथियां होती हैं, ये आपस में एक कोहेसिव ढंग से काम करती हैं कि इनका दोनों का अलग अलग काम?
2: नहीं नहीं, ये आपस में अलग अलग काम करती हैं। इनका कोई आपस में एक दूसरे के साथ कोई रेगुलेशन नहीं होता है।
1: जी डॉक्टर साहब, थायराइड की जो समस्या होती है मुख्य रूप से या तो हाइपर और हाइपो, तो थोड़ा संक्षेप में इसको भी बता दीजिए कि क्या क्या ये समस्याएं हैं और क्या लक्षण होते हैं।
2: थायराइड ग्रंथि में किसी कारणवश अगर कोई बीमारी हो जाती है, कुछ खराबी होती है, तो दो प्रकार की तकलीफ हो सकती है। एक होता है हाइपोथायराइड, इसका मतलब कि जो थायराइड हार्मोन है उसकी कमी होना, जिसमें T3-T4 लो होगा और एक TSH जो है हाई हो जाता है। इसमें आदमी सुस्त रहता है, उसका वजन बढ़ता है, शरीर में थोड़ी सूजन आ जाती है, आवाज थोड़ी बदल जाती है और उसका हार्ट रेट स्लो हो सकता है। दूसरा एक होता है हाइपरथायरॉइडिज्म, जो कि बहुत कम लोगों में देखा जाता है। इसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि T3-T4 बहुत बढ़ जाएगा और TSH एकदम लो हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आदमी का जो पल्स रेट है बहुत बढ़ जाएगा, उसके हाथ वगैरह कांपते हैं और वजन कम होने लगता है। जैसा कि हमने बताया कि जो हाइपोथायराइड है वह बहुत कॉमनली हमारे पॉपुलेशन में होता है, आप कह सकते हैं कि 6-10%। जहां पे आयोडीन की कमी होती है उस क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, जहां आयोडीन की मात्रा सही होती है वहां पे हाइपोथायराइड की कमी कम होती है। और इसका जो टेस्ट है बहुत आसानी से हो जाता है, सब जगह अवेलेबल है और कोई बहुत कॉस्टली भी नहीं होता है। तो ऐसे में हमारे पास कोई जैसे हाइपोथायराइड के सिम्टम्स हैं या उसके लक्षण है तो हमें जांच करा लेनी चाहिए, जिसमें T3-T4 और TSH इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और अगर और जरूरत पड़ती है तो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, लेकिन ये बाद में कराए जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमेशा आयोडीन की बात होती है, आयोडीन क्या काम करता है थायराइड ग्रंथि के लिए?
2: तो जो आयोडीन है यूजली हमारे जो भोजन है उसमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और जो हम नमक लेते हैं वो हमेशा आयोडीन युक्त नमक होता है। और आयोडीन का काम ये होता है कि जो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन वहां से जाता है उसकी मदद से T3-T4 बनता है। और अगर आयोडीन की कमी होती है तो T3-T4 की मात्रा कम हो सकती है और उससे घेंघा रोग भी होने का डर रहता है।
1: ज्यादा समस्या थायराइड की क्या है, हाइपर है या
2: हाइपोथायराइड ज्यादा होता है, और यूजली यह महिलाओं में थोड़ा ज्यादा पाया जाता है, और अक्सर यह देखा है कि प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा हाइपोथायराइड की बीमारी होने का ज्यादा खतरा रहता है, और उम्र जैसे ज्यादा बढ़ती जाती है तो भी हाइपोथायराइड की बीमारी होती है। यह हमारी पॉपुलेशन में आप 6-10% लोगों को हो सकती है।
1: अब अगर थायराइड पर बात हो रही है तो उपचार की बात हो, अगर इस ग्रंथि में किसी प्रकार की विकृति आ गई हो तो उपचार क्या है?
2: उपचार में हाइपोथायराइड पहले हमें तो

0: कन्फर्म कर लेना चाहिए कि हाँ हाइपोथायराइड की समस्या है, और इसका उपचार बहुत ही सिंपल होता है। इसमें दवाएं अवेलेबल हैं, जैसे थायरोक्सिन दवा आती है वो लिया जाता है। सो इस पर निर्भर करता है कि आपको दवा लाइफ लॉन्ग लेनी है या कुछ समय बाद बंद करके हम देख सकते हैं कि हमारा थायराइड हार्मोन अपने आप ठीक हो गया है कि नहीं।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड से कुछ और भी समस्याएं होती हैं जो पूरे हमारे जो हार्मोनल सिस्टम को या एंडोक्रीन सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं? डायबिटीज हुआ या और ओबेसिटी हुआ या कोई ग्रोथ की समस्या
0: थायराइड से, जैसे अगर बच्चों में जैसे बताया कि उनका मेंटल डेवलपमेंट कम हो सकता है, उनकी हाइट कम हो सकती है, बड़ों में थोड़ा अगर हाइपोथायराइड को ट्रीट नहीं किया गया तो वजन बढ़ने का डर होता है, उनको सुस्ती रहेगी, उनका हार्ट रेट वगैरह स्लो हो सकता है, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी होने का डर रहता है। औरतों में एक और चीज पाई गई है, अगर वो हाइपोथायराइड है ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो उनमें इनफर्टिलिटी के भी इशू आते हैं।
1: अगर डॉक्टर साहब थायराइड ग्रंथि में नोड्यूल्स बन जाए, तो जैसे कि आपने बात की दवाओं से कंट्रोल तो हो जाता है, तो क्या दवाओं से कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा या फिर कुछ सर्जिकल भी उपाय होते हैं?
0: तो नोड्यूल ज्यादातर उन्हीं एरिया में पाए जाते हैं जहां आयोडीन की कमी होती है।
1: अच्छा।
0: तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, ज्यादातर नोड्यूल जो है बिनाइन होते हैं।
1: अच्छा।
0: मतलब
1: कैंसरस
0: नहीं होते हैं, और इसको आसानी से जैसे अल्ट्रासाउंड द्वारा या एफएनएससी मतलब एक सुई की जांच के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है,
1: बायोप्सी
0: बायोप्सी या एफएनएससी फाइन नीडल एस्पिरेशन कहते हैं, तो इसके द्वारा उसको कंफर्म किया जा सकता है। अगर नोड्यूल बहुत बड़ा है तो सर्जरी किया जा सकता है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है और कोई नुकसान नहीं कर रहा है तो उसे वेट एंड वॉच भी किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या साझा करना चाहते हैं इस माह जो मई में हम विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं?
0: जो वर्ल्ड हाइपोथायराइड डे है उस पर यही कहना चाहता हूँ कि यह हमारे पॉपुलेशन के अंदर करीब 6-10% लोगों को होती है, और ये बहुत साधारण सी बीमारी है, इसका जांच बहुत आसान है, और अगर बीमारी निकलती भी है तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान होता है। और ट्रीटमेंट के अलावा आदमी को अपने वजन का भी ध्यान देना चाहिए, वह सही मात्रा में आयोडीन नमक वगैरह ले रहा है, इस सबका भी ध्यान देना चाहिए।
1: सर, ये भी जानना चाहेंगे कि 2026 में विश्व थायराइड दिवस की थीम क्या है और किस तरह पब्लिक हेल्थ से जुड़ी है और थायराइड को किस तरह ये एड्रेस करती है?
0: तो 2026 में जो वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जा रहा है उसकी थीम है थायराइड एंड न्यूट्रिशन। इस दिन पर लोगों को अवेयर किया जाता है, और इसका मेन एम ये है कि जैसे न्यूट्रिशन में मनुष्य को एडिक्वेट अमाउंट में आयोडीन लेना चाहिए, उसके अलावा कुछ ट्रेस एलिमेंट भी होते हैं जो थायराइड हार्मोन के बनने में मदद करते हैं, जैसे सेलेनियम और जिंक हुआ। तो अगर एक पौष्टिक भोजन लेंगे तो इसमें ये ट्रेस एलिमेंट पहले से प्रेजेंट रहते हैं और हम थायराइड की बीमारी से बच सकते हैं।
1: संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के एंडोक्रीन मेडिसिन विभाग में क्या थायराइड की अलग से कुछ क्लिनिक है या कुछ डेज हैं जो डेडिकेटेड हैं?
0: हाँ, संजय गांधी में हमारी 2 OPD चलती है, एक डेडिकेटेड डायबिटीज पेशेंट के लिए होती है, दूसरी एंडोक्राइन बीमारियों की होती है, जिसमें हम थायराइड के पेशेंट मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन देखे जाते हैं।
1: अच्छा, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थायराइड जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बात की और इसकी विकृतियों पर प्रकाश डाला, किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसके उपचार के उपाय हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
2: स्वास्थ्य वार्ता के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं एक और भेंट वार्ता, जिसका विषय है चक्कर आने का कारण और कान की समस्या। इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चंद्र से बातचीत कर रहे हैं आशीष चतुर्वेदी।
3: दोस्तों, चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं, पर उसमें से एक कारण होता है कि कोई कान की समस्या आपको है। चक्कर आना और कान की समस्या के बीच संबंध पर आज विस्तार से हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चंद्रा जी, जो KGMU के ENT विभाग में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
4: थैंक यू।
3: डॉक्टर साहब, किन किन कान की समस्याओं से चक्कर आ सकता है?
4: सभी श्रोताओं को इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं 2-3 लाइनों में इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। हमारे शरीर में चक्कर जो है वो 3 चीजों से हम अपने शरीर को बैलेंस करते हैं। एक हमारी आंख होती है, एक कान का अंदरूनी हिस्सा जिसको हम इनर ईयर कहते हैं, तीसरा हमारी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी और बाकी की मांसपेशियां। जब इन तीनों चीजों का बैलेंस आपस में बिगड़ जाता है तब हमें ये चक्कर का अनुभूति होती है। जनरली लोग चक्कर शब्द को कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चक्कर का अर्थ होता है आपने चारों तरफ की जो सराउंडिंग है, जो एनवायरमेंट है, उसका गोल गोल चारों तरफ घूमना या उस व्यक्ति विशेष का उन सब चीजों के रिस्पेक्ट में गोल गोल घूमना। अब कान की बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमारे इनर ईयर और बैलेंसिंग ऑर्गन को भी इफेक्ट करती हैं।

0: और हमें चक्कर आ सकता है जिसमें बैलेंसिंग नर्व होती है जिसको हम वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहते हैं। इनर ईयर में एक ऑर्गन होता है बैलेंस का जिसमें कुछ क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम के जो अपनी जगह से हट जाते हैं, उसको हम BPPV कहते हैं। कुछ कान बहने के कारण भी चक्कर आते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसे हम मीनियस डिजीज कहते हैं जिसमें कम सुनाई देना, चक्कर आना, वॉमिटिंग होना, इन सब के भी सिम्टम्स होते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कान से रिलेटेड भी, हमारी रीढ़ की हड्डी से भी रिलेटेड होते हैं और हमारी आंखों से भी रिलेटेड होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ कम सुनाई भी देता है या कुछ और लक्षण होते हैं अगर चक्कर की समस्या आ रही?
0: कुछ ऐसी बीमारी जैसे मीनियस डिजीज, इसके जितनी बार इसका अटैक होगा, जिस व्यक्ति को ये बीमारी होगी हर बार उसको थोड़ा थोड़ा करके कम सुनाई देने लगेगा। हाँ, सीटी जैसी जो आवाज है इसको हम टिनाइटस कहते हैं।
1: अच्छा।
0: जब हमें बाहर सराउंडिंग की आवाज कम सुनाई देने लगती है तो अंदर का जो ऑर्गन होता है उसकी कुछ आवाजें सुनने की क्षमता कान डेवलप कर लेता है जिसे टिनाइटस कहते हैं और ये कई बीमारियों का एक हिस्सा होता है।
1: डॉक्टर साहब, मान लीजिए कि किसी को शक होता है कि कान की ही समस्या है तो उसको क्या करना चाहिए?
0: मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करूंगा कि जैसे ही उनको चक्कर की अनुभूति फीलिंग अगर आती है तो स्पेशलाइज्ड लोगों से मिलें। यह चक्कर कान का है या यह चक्कर आंखों की वजह से उत्पन्न हो रहा है या इम्बैलेंस चलने की वजह से उत्पन्न हो रहा है, कार्डियक कॉज भी हो सकते हैं, और भी कई सारे ऑर्गन्स की छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो चक्कर के फॉर्म में दिख सकती हैं। तो कभी भी इसके लिए सेल्फ मेडिकेशन, अपने आप दवा लेना, मैं बिल्कुल भी सबको इस चीज के लिए मना करूंगा।
1: डॉक्टर साहब, जांचें क्या होती हैं?
0: जांचों में सबसे महत्वपूर्ण होता है पेशेंट के साथ बैठ करके थोड़ा सा समय निकाल के उससे हिस्ट्री लेना, जिसमें हम लोग ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट का चक्कर कैसे शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, चक्कर के साथ और क्या क्या होता है, चक्कर के समय क्या होता है, चक्कर कितनी देर में ठीक होता है। इन सब चीजों की हमको एक प्रारूप जो हमारा हिस्ट्री टेकिंग फॉर्मेट होता है जब हम उसमें भर लेते हैं समझ में आता है कि अब हमको एक एक करके क्या क्या जांच करनी है ताकि अलग अलग बीमारियों को हम रूल आउट कर सकें।
1: क्या इस तरह की समस्या ओल्ड एज में या सीनियर सिटीजन्स को दिखाई देती है?
0: सीनियर सिटीजन्स में चक्कर आना एक नॉर्मल है। ये फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे बुजुर्ग है, आंख में मोतियाबिंद है, शाम हुई कहीं निकले लड़खड़ा गए, तो ज्यादातर लोगों में शब्दों को बहुत अच्छे से बता नहीं पाते हैं, वो कह नहीं पाते हैं, वो हर चीज का एक ही जवाब होता है, चक्कर आ रहा है। हो सकता है वो इम्बैलेंस हो सकता है उस समय वो एकदम से चले हो और उनकी ब्लड प्रेशर कुछ कम हुआ हो, आंखों के सामने अंधेरा आया, उसको भी लोग चक्कर कहते हैं। तो हर उम्र में चक्कर आ सकता है, बुजुर्गों में तो बहुत सारे कारण होते हैं और एक तरफ से एक एक चीज को हम अपनी जांचों द्वारा एक्सक्लूड करते हैं तब डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है। और कई बार वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है कि एज हो गई है, सारे सिस्टम्स थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो ब्रेन में उनका इंटीग्रेशन ना होने के कारण भी प्रॉपर वे में
1: कोऑर्डिनेशन
0: की वजह से भी।
1: डॉक्टर साहब, एक मेरे मित्र हैं, रियल लाइफ एग्जांपल रखना चाहूंगा अपने श्रोताओं के साथ कि उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल फोन का बहुत यूज करता हूं, इसके कारण जो क्रिस्टल है डॉक्टर ने बताया कि वो डाइल्यूट हो गए या गल गए हैं, तो इसके कारण भी क्या चक्कर आ सकता है?
0: ज्यादा मोबाइल फोन के यूज से BPPV जैसी दिक्कत तो नहीं आती है।
1: अच्छा।
0: यह जो क्रिस्टल्स होते हैं ये हमारे कभी चोट लगने के कारण इनका बैलेंस या जिस जगह पर ये स्थित होते हैं वहां से लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल्स में आ जाते हैं, या ये किसी जर्की मूवमेंट या एकदम सडन मूवमेंट ऑफ नेक से आ जाते हैं,
1: बट
0: एक्यूट कारण ही होते हैं, लेटे हैं करवटली डिसलॉज हो गए अपनी जगह से।
1: डॉक्टर साहब, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है कि अपनी बात को हम आगे बढ़ाएं, तो दो चीजें आपसे पूछना चाहेंगे कि अपने कान की हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें और इस वार्ता में कुछ अगर इम्पोर्टेंट बातें छूट गई हो तो वो हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं से साझा करें।
0: कान का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं या जो नवजात शिशु होते हैं बचपन से ये ध्यान रखें कि बच्चों के कान में तेल ना डाला जाए। बच्चों का कान यदि लगता है गंदा है तो कान नाक गले के डॉक्टर के पास जाकर के ही साफ कराएं, वरना वो पर्दे को चोट मार सकते हैं। तीसरा, आजकल हम लोग हमेशा अपने कान में हेडफोन ईयरबड्स मेजॉरिटी टाइम पे लगा के रखते हैं या मोबाइल पे लंबी लंबी बात करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। जुखाम खांसी होने पर अपने कान को बचाव करना चाहिए, तुरंत दवाई लेना चाहिए, लाउड म्यूजिक जहां पर बज रहा हो वहां से तुरंत बाहर आ जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और हमारे श्रोताओं को आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव ऐसे मिलता रहेगा भविष्य में भी। आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी आप ये भेंटवार्ता सुन रहे थे, चक्कर आने का कारण और कान की समस्या। इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनीष चंद्र से बात कर रहे थे आशीष चतुर्वेदी। अब आज का स्वास्थ्य वार्ता का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मन्ना डे के गाए गीत से। फिल्म आनंद का ये गीत है।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है आपकी कसम और आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे फिल्म हम दोनों में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज रात 8:30 पर एक बार फिर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से लेकर हाजिर होंगे हम, और आज रात 9:30 पर पत्र और ईमेल अनुरोध पर आधारित कार्यक्रम सुनना न भूलिएगा। आपकी पसंद फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे रात 10:00। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।
1: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के इस अंक में आपको सुनवाते हैं कविता पाठ, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विमल किशोर श्रीवास्तव।

अपने भारत माता के प्रति एक जवान की प्रतिज्ञा कि किस प्रकार से वो माँ की रक्षा में लगा रहता है। इस पर एक कविता है, कण कण बन बलिदान चढ़ूं या खंड खंड बट जाऊं मैं, कुल गौरव की मर्यादा पर कोई आँच न लाऊं मैं, सुनवा या तो लौटूंगा मैं तिरंगे के पावन पट में लिपट कर, या सरहद पार विजय केतु को अंबर तक लहराऊं मैं। तेरे आंचल की छाया ने मुझको वज्र बनाया है, केसरिया बाने की खुशबू रोंगटे रोंगटे लाया है, सिंहनाद हूँ मैं।

वो और भी ऊंचा कर जाऊंगा। अंगारों की सेज सजी हो या कांटों का हो पहरा, रंग भक्ति का चढ़ा हृदय पर सिंदूरी और गहरा। माँ नैनों के जल से अपनी ममता को न लजाना तुम, माँ नैनों के जल से अपनी ममता को न लजाना तुम, वीर प्रसूता कहला कर ही गर्व की ज्योत जगाना तुम। जो इंच इंच कट जाऊं तो भी जय भारत शब्द निकलेगा, जो इंच इंच कट जाऊं भी शब्द जय भारत ही निकलेगा। मेरी राख के हर जर्रे से एक नया सूरज निकलेगा। हिमगिरी की उत्तम शिखाएं मेरे प्रण की साक्षी हैं, सिंधु लहर की गर्जन बोले हम युग युग के रक्षी हैं। वतन की माटी मांग रही है शौर्य का चंदन टीका आज, मर्यादा की रक्षा हित ही गूंजेगा अब रणनाद आज। बौनी हो जाती है मौत जहां संकल्प प्रबल होता है, देश प्रेम का पथ ही केवल सबसे अधिक विमल होता है। मैं लौटूंगा बनकर बसंत या अमर ज्योति की एक लहर, तेरी लोरी की थाप सुनूंगा बनकर शीतल शांत पहर। इतिहासों के स्वर्ण पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जाऊंगा, होगा तिरंगा साथ मेरे जब धरा को छोड़ कर जाऊंगा। शपथ है मुझे उस माटी की जिसे शीश नवाता हूँ, प्राणों की आहुति देकर भी राष्ट्र धर्म निभाता हूँ, प्राणों की आहुति देकर भी राष्ट्र धर्म निभाता हूँ। इस कविता में एक संदेश है, कर्म को प्रेरित करती है। कविता प्रारंभ होती है, तुम बैठो यहीं इन सायों में, पुरानी यादों की बाहों में, शायद तुम्हें यकीन है उस पल का जो गर्त में छुपा है आने वाले कल का। तुम करो प्रतीक्षा उस आहट की जो शायद कभी सुनाई दे, या किसी ओझल हुई मंजिल की जो मुड़कर कहीं दिखाई दे। मगर मैं तो चला कि रुकना मुझे गंवारा नहीं, सिर्फ आस के सहारे जीना अब मेरा सहारा नहीं। मुझे काम करना है, मुझे कर्म को जीना है, पसीने की हर बूंद से अपना मुकद्दर सीना है। सपनों के महल ढह जाते हैं अक्सर इंतजार में, सपनों के महल ढल जाते हैं अक्सर इंतजार में, सत्य वही है जो पढ़ा जाए पुरुषार्थ के बाजार में। मुझे विश्वास नहीं उस मौन खामोशी पर जो केवल रुकने का बहाना देती है, मैं उस गति का हिस्सा हूँ जो हर पत्थर को रास्ता बना देती है, मैं उस गति का हिस्सा हूँ जो हर पत्थर को रास्ता बना देती है। तुम बैठो यहीं और बुनते रहो इंतजार के धागे, मैं निकल पड़ा हूँ अपने कर्मों के रथ के आगे। इस कविता में आज़ादी को परिभाषित किया गया है, स्वतंत्रता को, इस स्वतंत्र जीवन में भी किस प्रकार से मनुष्य कैद रह सकता है, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए। कविता के बोल हैं, पिंजड़े से पक्षी को निकाल कर लाया हूँ, पर कहानी यहीं पूरी कहाँ होती। उसके पंखों में अब भी झिझक की धूल है और आँखों में कैद दिनों की परछाई सोती है। वो खुली हवा को छू कर ठिठक जाता है जैसे आज़ादी भी कोई अजनबी डर हो। हर दिशा में फैली संभावनाओं के बीच, हर दिशा में फैली संभावनाओं के बीच उसके भीतर अभी भी पिंजरे का असर हो। लोहे की सलाखों के पीछे छूट गई पर मन के भीतर जंजीरें बाकी हैं। उड़ान का आकाश सामने फैला है पर यादों के बादल अब भी भारी हैं। मैं जानता हूँ पिंजड़ा केवल लोहे का नहीं, वो आदतों डर और सीमाओं का घर होता है। उसे तोड़ना बाहर से आसान है पर भीतर से मिटाना एक लंबा सफ़र होता है। मैं उसके संग बैठकर धूप बांटता हूँ, हर सुबह उसे नया भरोसा देता हूँ कि उड़ना केवल पंखों का हुनर नहीं, मन से भय को विदा करने का रास्ता देता हूँ। धीरे धीरे वो गुनगुनाना सीख रहा है, खामोशी से संवाद करना छोड़ रहा है। हर फड़फड़ाहट में एक नई चाह है, हर कोशिश में जीवन का विस्तार है। इसलिए मैंने ठाना है कि पिंजड़े से पक्षी को तो निकाल लाया ही हूँ, अब उसके मन से पिंजरे को भी मिटाऊंगा। उसे सिर्फ उड़ना नहीं खुले आकाश में जीना सिखाऊंगा। स्वप्नदर्शी मनुष्य का मन, इस पर एक कविता है, त्रिकालदर्शी मन, इसकी पंक्तियां हैं। है क्षितिज सा झिलमिलाता, लड़कपन में खिलखिलाता, बरसात में इंद्र धनुषी मन, पर वक्त की आंधियों में घिरकर कभी टूटा कभी जुड़कर, सीखा हर घड़ी संघर्षी मन। घर की जिम्मेदारियां ढोता, कभी अपनों के लिए रोता, मुश्किलों में भी स्थिर मन, भीड़ में रहकर भी तन्हा, खुद से ही करता है चर्चा, आत्मचिंतन में गढ़ता मन। कालभेदी नाद करता कष्ट में भी प्रमाद करता,

0: में भी प्रमाद करता, ख्वाहिशों में स्वप्नदर्शी मन, सपनों का संसार सजाता, हकीकत से टकरा जाता, फिर भी न रुकता त्रिकालदर्शी मन, त्रिकालदर्शी मन। और मन पर ही अगली कविता है, कविता के बोल हैं, क्यों होता है ऐसा हर बार, क्यों होता है ऐसा हर बार, मन मांगे सुख मिले लाचार, जिसको पाने को मन तड़पे वो मिलकर भी जाए दूर पार, सपनों का सावन आता है फिर सूखा मन रह जाता है, हाथों में जो थी रोशनी वो छूते ही बुझ जाती है, कभी हंसी बनकर मिलती खुशियां, कभी आंसुओं में ढल जाती हैं, मिलने की बेला पल भर की फिर यादों में ही रह जाती है। क्या ये भाग्य का खेल है कोई, या मन की अपनी चाहत है, जो पास रहे वो भा न सके, जो दूर रहे वही राहत है, हर इच्छा बनती है धुन कोई, हर धुन अधूरी रह जाती, शायद यही है जीवन का राग, मिलकर भी दूरी रह जाती, मिलकर भी दूरी रह जाती। ये कविता हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक संदेश है, कविता के बोल हैं कि चलो आओ थोड़ा अल्हड़ बनकर फिर से हुल्लड़ मचाया जाए, थकी हुई इन राहों पर हंसी का दीप जलाया जाए, चलो हवा के संग उड़ चलें, बादलों से बातें कराएं, दिल के बंद दरवाजों को आज खुलकर फिर सजाया जाए, किताबों में बंद जो सपने हैं उन्हें सड़कों पर टहलाया जाए, जो मुस्कान कहीं खो बैठी है उसे होठों तक फिर लाया जाए, थोड़ा शोर मचाएं खुशियों का, थोड़ी शरारत कराएं, रूठी हुई इस जिंदगी को प्यार से फिर मनाया जाए, न कल की चिंता न कल का डर, आज बस दिल की सुन ली जाए, थोड़ा अल्हड़ बनकर आज हर पल को त्योहार मनाया जाए, चलो ठाकों से शाम रंग दें, चांद को भी हंसना सिखा दें, और सितारों की महफिल में अपनी कहानी गुनगुनाएं, थोड़ा अल्हड़ बनकर चलो आज फिर हुल्लड़ मचाया जाए, जीवन के इस भाग दौड़ में बचपन को फिर से बुलाया जाए।
1: अभी अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहे थे श्री विमल किशोर श्रीवास्तव। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: श्रोताओं, अभी आप हिंदी कार्यक्रम सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को 7:45 पर।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में पेश खिदमत है कैलाश जोशी की आवाज़ में चंद गज़लें। सबसे पहले समाअत फरमाइए कैसर उल जाफरी का कलाम कैलाश जोशी की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में समात फरमा रहे हैं चंद गजलें कैलाश जोशी की आवाज में। आइए अब सुनते हैं राहत इंदौरी का कलाम।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कैलाश जोशी की आवाज़ में चंद गज़लें। कलाम थे कैसर उल जाफरी, खुमार बाराबंकी और राहत इंदौरी के। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं श्रेया घोषाल के गायक गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म सिंघम से।

चित्रपट से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं रोग फिल्म का गीत, आवाज़ है राहत फतेह अली खां की।

रोक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज थी के की। इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: हम अपनी श्रोताओं को याद दिला दें कि आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे पत्र और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद, और फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे हम आज रात 10:00। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा, जिसमें विदुषी गिरिजा देवी का राग आभोगी कान्हड़ा में ख्याल गायन आप सुन सकेंगे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या प्रसारित होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2-3 के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियन

0: चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: High international crude prices and
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।

0: boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है.
2: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है. ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है. देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है.
2: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत

0: इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सू से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
2: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor, late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2-3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under-23 Championships in Vietnam.

0: आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजरा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर N राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर R गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ F से शुरू होने वाली 3 चीज़ों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत को उजागर किया है। ये 3 चीज़ें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और ज़र मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्ज़ों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मज़ाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतल बैंक SIDBI के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निजाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीदकारी के काम को तेज रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें SIDBI मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्द अमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही में शामिल थे। गंडोला केबिर कार के निज़ाम में तकनीकी खराबी के बाद ये कार्रवाई की गई। बेस स्टेशन और Phase 1 के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बायस आज कई सयाह वहाँ फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाए मौका पर फौरन पहुँच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाज़ों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PC नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज़, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किए हैं, जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए किसी ज्यादा वसी तजर्बे वाले और खुद मुख्तार इदारे को मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया है। अदालत ने NTA को हिदायत

छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। आप सब सुनना चाहते हैं इश्किया फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां की आवाज़ में।

और कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश, सुनील, खुशबू और आरोही और स्वाति मौर्य की फरमाइश पर। आप सब सुनना चाहते हैं सुखविंदर सिंह का गाया गीत, फिल्म का नाम है रब ने बना दी जोड़ी।

बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसका अनुरोध हमें किया है ग्राम कैथनपुरवा पोस्ट सातनपुरवा जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, शीतल तरंग श्रीवास्तव, शिव बख्श सिंह और गोविंद सिंह ने। आप सब सुनना चाहते हैं खट्टा मीठा फिल्म का गीत लता मंगेशकर।

अगले कार्यक्रम का अनुरोध हमारे इन श्रोताओं ने किया है। देवरी से केआर साहू, भाटापारा से हिमकेश्वर, लेवई से गुलाबदास और दतरेंगी से भागवत वर्मा। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं राहत फतेह अली खां का।

ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियाज ठाकुर और गुड़िया ठाकुर, बाबा कुटी उफरा पाटन से प्रेमू साहू और यमुना साहू। हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं आतिफ असलम का गाया गीत। फिल्म का नाम है बत्ती गुल मीटर चालू।

आतिफ असलम का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू से। इस गीत के साथ ही आज का पत्र और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद अब समाप्त होता है।

हेमंत कुमार का गाया गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म खामोशी से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है पारसमणि और आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

पारस मड़ी फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म दो बदन से। इस गीत को स्वर दिया है आशा भोसले ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है भीगी रात।

आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म गुमराह से। इस गीत को आवाज़ दी है महेंद्र कपूर ने।

आंधी फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विदुषी गिरिजा देवी का राग आभोगी कान्हड़ा में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे विदुषी गिरिजा देवी का राग आभू की कान्हड़ा में ख्याल गायन। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।

0: किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और

0: सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित

0: रीश नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honoured with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive 7-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the 3 Fs. Fuel, fertilizer and forex amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the